0: जो है।
1: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: हरिओम प्रभु जी,
1: जी
0: मेरा सवाल है
1: जी।
0: मैं पहले से सत्संग जाता रहा हूँ लगातार 98 से, मेरे पास भगवान की कृपा है, और क्योंकि मैं आपको सुनता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी एकदम से निराकार की वाणी मेरे को अंदर से कैच होती है जो मेरे गुरु भगवान ने बताया है। अभी मेरी जो समस्या है वो ये है कि मैं इतना गुरु के द्वारा मेरे प्रति इतनी कृपा बरसाई जाती, फिर भी मैं उसी अपने आचरण में परिवर्तन नहीं लाता। तो मेरे को एक दिन विचार आया कि जो ये पुरानी परंपराएं थी जहां पर जन्म से पहले और जन्म के समय और जन्म के बाद गुरु द्वारा ज्ञान दिया जाता था, हम लोग जल्दी चढ़ जाते थे। अभी मेरे को कुछ चीजें कैच होती इन 25 सालों के बाद, तो अगर ये शिक्षा हम लोगों को बचपन से मिलती तो हम शायद आगे बढ़ते।
1: ये तो परम सत्य बात है, इसीलिए चाहे वो राजा का पुत्र हो चाहे प्रजा का पुत्र हो, गुरुकुलों में इसीलिए भेजा जाता था कि उसे शास्त्र ज्ञान होता था। अब अभी कल कुछ बड़े बड़े अधिकारी जन बैठे थे तो उनसे यही प्रार्थना की थी कि हमें बहुत चुभ रहा है इस समय का वातावरण कि हमारी नवीन पीढ़ी जो है उसको ये ज्ञान ही नहीं हो रहा कि मैं पतन के मार्ग में जा रहा हूं, मेरा पतन हो रहा है, मेरा सर्वनाश जो करने वाली विकार की वृत्तियां हैं उनका बढ़ावा मिल रहा है। अब हमारी बात सुने समझे तब तक तो आग लग चुकी होती है, नहीं लग चुकी। अगर उनसे यही प्रार्थना की थी कि अब हमारी तो सामर्थ्य है नहीं, अगर विद्यालयों में जो आप चाहे मतलब गुरुकुल शब्द से कहते हैं, अब गुरुकुल जैसा वातावरण तो नहीं रह गया क्योंकि कोई अपने बच्चों को ऐसे, और वैसी व्यवस्थाएं भी भंग हो चुकी हैं, इतनी आधुनिकता बढ़ चुकी है ना कि उस तरह से सतोगुण में रहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो अब हमको क्या चाहिए, बुद्धिमानी से जैसी परिस्थिति उसमें संभालना चाहिए। तो अगर स्कूलों में एक कोई ऐसा 30 मिनट का 20 मिनट का क्लास लगाया जाए जिसमें हम अपने शास्त्रों की बातें उनके उपयोगी अधिकार के अनुसार, उनको ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा मत दो, हम कह रहे हैं उनको वैराग्य की शिक्षा मत दो, पर वो राग पूर्वक धर्म से जी सके ये तो शिक्षा दे दो कि इस अवस्था तक यदि आप ऐसे रहोगे तो आप बहुत बढ़िया गृहस्थ बन जाओगे, आप ऐसे चलोगे तो बहुत बुद्धि प्रवीण होगी, आप हर विषय में बहुत सुंदर ज्ञानी बन जाएंगे, आप ऐसे स्वस्थ रहेंगे, आप ऐसे धर्मात्मा बन जाएंगे, आप हमारे देश और समाज के उत्तम सेवक बनेंगे। तो इसलिए हमारे अंदर की बात ही जैसे आप बोले ना, वो अंदर की बात, पर उसमें क्या है कि ना अपने पास ऐसी अर्थव्यवस्था है ना अपने पास कोई ऐसा अधिकार है, पर हम चाहते हैं कि हमारा देश का जो स्वरूप है वो सबसे पहले धार्मिक शब्द आता है, भारत एक धार्मिक देश है, ऐसा आता ना, दयावान देश है ये, सत्यवान, ऋषि महात्माओं के द्वारा जहां गंगा यमुना भगवान के विविध अवतार, ये एक अद्वितीय स्थान है। आप आए तो आप प्रश्न कर रहे हैं तो आपसे प्रार्थना कर सकते हैं, क्या कि जैसे अब नए नए बच्चे आते हैं ना और वो अपनी दुर्दशा बताते हैं तो हृदय जल जाता है कि अगर इनको कहीं ब्रह्मचर्य का ज्ञान होता तो हम हितधाम में कई वर्ष पहले ब्रह्मचर्य के विषय की, हे नवीन पीढ़ी के भाइयों आप ध्यान दीजिए, आप जो हस्तमैथुन करते हैं, आप जो गंदे वीडियो देखते हैं, आप जो गंदी आदतें करते हैं, आप देखना आप कैसे पतित हो जाएंगे, और उसके परिणाम हिम्मत करके उनके भगवान की कृपा जो बोल पा कि मेरी इस क्रिया से ऐसी दशा हो गई, ऐसे दसियों बच्चियों ने बताया। अब हम कैसे क्या कर सकते हैं इस पर, हमारे पास तो बात ही है, अगर आप हमारी बात मान लोगे तो ये बात आपको ऊंचाई पे चढ़ा देगी, पर अब उनके कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बात पहुंच ही नहीं रही। अच्छा, टेलीविजन वो टीवी आदि में ऐसे कहानियों का सीरीज क्या कहते हैं, हाँ ऐसी बनाई जा रही है कि संतों के प्रति श्रद्धा नहीं, शास्त्र की प्रति कोई श्रद्धा नहीं, मनमानी गंदे आचरणों का दृश्य दिखाई देता है, नवीन बच्चे देखते हैं वैसे ही मन नवीन अवस्था में बदमाशी करने के लिए प्रेरित करता है, गंदे आचरण के लिए, अब वो तो दिखाई दे रहा है ना और प्रमाणित किया जाता है, ये सब चलता है तो नए बच्चों को लगता है कोई पाप थोड़ी है, कोई अपराध थोड़ी है, कोई शरीर में हानि थोड़ी होगी, ये तो मनोरंजन है, बस वहीं से भ्रष्ट आचरणों को बढ़ावा मिलता है, फिर जवानी आते आते इतनी कमियां इतनी कमजोरियां कि वो गृहस्थ लायक नहीं रह जाते, वो समझ नहीं पा रहे। अब इस पर ये कि आप सब लोग मिल करके कम से कम ना विद्यालय में तो अपने घरों में अपने बच्चों को बैठाल के मित्रवत ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं दे। आप मोबाइल चेक करो, आप उनको समझाओ, आप उनको इतना प्यार दुलार दो कि पिता के साथ तुम्हें दोस्त मानने लगे, वो अपनी हर बात आपसे शेयर करने लगे, जिससे उनका उत्साह आप बढ़ा सके। नहीं तो बहुत हालत खराब है और आगे और भी खराब हो जाएगी। बच्चे बच्चियां तिनके के समान माता पिता घर परिवार को छोड़कर मनमानी आचरण कर रहे हैं, तो इसमें आप लोग भी सहयोग करें। आप लोगों का सहयोग ये कि अपने घर के बच्चों को इतना प्यार दुलार से बात करें कि वो अपनी कमजोरियां आपसे बता सकें, आप उनका निर्णय कर सकें, आप उनको सपोर्ट दें। नहीं नहीं बिल्कुल तुम जो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा सुंदर ब्याह करवाएंगे, बस तुम छुपाना नहीं, हर बात हमसे शेयर करो और हम दोनों मिलकर के ऐसे, तो उनको लगेगा कि यार मेरे पापा मेरे पिताजी मेरे मित्र भी हैं, मैं उनके साथ अपनी बात कर सकता हूं। नहीं तो ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं, किसी के मोबाइल में कुछ वजह से आते रहते हैं गंदी बातों वाले कि आप इससे फोन करो, आप मिलो, आप ऐसी बात करो, तो उसने देखा और उसने बात की और उसके पास वो ब्लैकमेल गए थे, उसके आ गए कि देखो तुम्हारी बात तुम्हारी सब है, इतना रुपया हमें दो नहीं तो हम ये ओपन कर देंगे कि आप हमसे ऐसा ऐसा देखे ऐसा ऐसा बोले। अब वो थोड़ा बुद्धिमान था, उसने अपने पिता से बात की, ये खेल खेल में हमसे ऐसे हो गया, अब आप वो पुलिस से मिले संभल गई। अब वो अगर बच्चा ना कहता, अब वो पैसे चुराता उसको भेजता, अब हर बार तो फिर वो यही सोचता कि इससे तो अच्छा है मर जाए, या फिर वो बहुत ही गंदी हरकतों में उतरता अपने ही घर में, ये चुरा के बेच देना। अब उसको तो किसी तरह अपनी बात ना खुले, ये इस तरह का कोई व्यवहार हो तो बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए कि तुमसे गलती हो गई, कोई बात नहीं हम पूरा सपोर्ट देंगे, हमें कुछ अब छुपाना मत, हमें लगता है थोड़ा सत्संग सुनाना चाहिए, थोड़ी शास्त्रों की बात सुनानी चाहिए। तो हम लोग बताते जब हम बच्चे थे ना तो हमारे परिवार के जन शाम टाइम आरती करके, वहां बिजली तो थी नहीं गांव में, तो दीपक या लालटेन होती थी, जला के रख दी गई, रामायण है भागवत ए, चलो सब बैठो चुपचाप हाथ जोड़ के बैठो और सुनो 20 मिनट 30 मिनट गा गा के बड़े भाई सुला रहे, अर्थ उसका बता रहे, तो उसके संस्कार पढ़ते हैं, ए संतों के चरण धो देखो आए हैं, संतों के पास बैठो, तो उनकी बातें सुनकर के पवित्रता हृदय में आती है। अब ऐसे फिल्म दिखाई जाती है, ऐसे सीरीज दिखाए जाते हैं, है कि वो ड्रग्स बेचने वाले, वो व्यभिचार करने वाले, वो फ्रॉड काम करने वाले, वो बच्चे बच्चियों को बेचने। अब दिमाग में नई पीढ़ी क्या, मतलब सब ड्रामेबाजी है, सब पाखंड, ये सब चोर, ये ऐसी भावना आने लगी ना, अब बताओ संभलेंगे कहां से। अगर राजा भी अपने राज्य को ठीक से चला सकता था तो उसके ऊपर महात्मा होते थे, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ तो वशिष्ठ जी, परम ज्ञानी जनक जी तो सदानंद जी, इंद्र देवराज है तो उनके ऊपर बृहस्पति गुरु, दैत्यराज तो शुक्राचार्य, हर जगह महात्माओं का आधिपत्य रहा है। हाँ क्योंकि आप माना संसार के भोग, लेकिन आप कैसे भोगोगे, आप कैसे चलोगे, ये विधान तो अध्यात्म से ही आपको पता चलेगा ना। अब अध्यात्म का अस्तित्व मिटाया जा रहा है, शास्त्रों के पन्ने फाड़े जा रहे हैं, आओ बैठो हम जैसे कहें वैसे तुम कुछ दिन आचरण करो, अगर आप रो के ना बोलो कि सत्य लिखा है तो हमें बताना। अब तुम गंदे आचरण करोगे मलिन बुद्धि तो तुम्हें शास्त्र समझ में आएंगे, झूठे तो लगेंगे ही क्योंकि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है। तुम सच्चे मार्ग के पथिक बनो, अगर तुम प्रणाम न करने लगो उसी शास्त्र को तो हमें, वो ब्रह्म ऋषियों के द्वारा लिखा हुआ, कोई ऐसे मनोरंजन करने वाले व्यक्तियों के द्वारा थोड़ी लिखा हुआ है। अब संत जन हम मानते हैं कि इस वेश का आश्रय लेकर गंदे आचरण वाले कुछ ऐसे फ्रॉड लोग होते हैं जो अपने को बचाव पक्ष में इस वेश का दुरुपयोग करके मलिनता करते हैं, पर सब नहीं ऐसे, असली नोट का ही नकली होता है, अगर नकली मिला है तो असली उसका होगा। अगर हमको संतों का संग मिले और शास्त्रों का स्वाध्याय करें और हम अच्छी बातें समझें तो कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हम चाहें कि अपने घर में सात्विक वातावरण करें, और कहीं ऐसा अगर विधान हो जाए कि स्कूल में एक क्लास लगने लगे शास्त्रीय पद्धतियों का, कि भाई 20 मिनट आकर के ब्रह्मचर्य के विषय में बोलेंगे, इंद्रिय क्या होती है, मन की क्या चाल होती है, कैसे हम शरीर को स्वस्थ रखें, माता पिता की सेवा का क्या फल होता है, गुरुजनों को प्रणाम करने का क्या फल होता है, सुबह कितने बजे उठने से क्या लाभ मिलता है, और अगर सूर्य उदय हो गया इसके बाद उठने से क्या हानि होती है, तो बच्चों में वो चेतना जागृत हो। अब वो सत्संग की बातें तो कही जा सकती, पर जिसके आचरण में सत्य आचरण नहीं है तो केवल बातें ही बातें रहेंगे, बात में असर नहीं होगा। असर होगा जब स्वयं में वो आचरण में हो।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहां पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 666।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
5: और 9097160602।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
9: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
10: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
9: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
10: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
9: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
10: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
9: संपर्क करें 84710 3992 या 9765 65750।

कैकई ने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया है, ये सुनकर अयोध्या के महलों में विषाद का वातावरण छा गया है। किंतु श्री राम प्रसन्न है, उनका चित उल्लसित है। सब भाइयों को छोड़कर पिता ने उनका ही राज तिलक करने का निश्चय किया था, इस कारण जो विषाद उनके मन में उत्पन्न हुआ था वो अब मिट गया है। वो प्रसन्न मन माता कौशल्या के भवन में पहुंचे। श्री राम ने हाथ जोड़कर माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने गले लगाकर उन पर वस्त्राभूषण न्योछावर किए। वो उस शुभ लग्न की प्रतीक्षा में हैं जब राम का राज तिलक होगा। किंतु पुत्र के मुंह से ये सुनकर कि पिता ने उन्हें वन का राज्य दिया है और वो वन यात्रा के लिए माता का मंगलमय आशीर्वाद लेने आए हैं, माता कौशल्या के हृदय में जैसे वाण चुभ गया, जिसकी चुभन से वो तड़प उठी। पुत्र के वचन अत्यंत कोमल और शीतल थे, किंतु उन्हें सुनकर वो वैसे ही सहम कर सूख गईं, जैसे बरसात का पानी पड़ते ही जवासा सूख जाता है।

वन गमन के लिए विदा लेने आए हुए पुत्र के वचन सुनकर माता कौशल्या स्तब्ध रह गई हैं। आसन्न पुत्र वियोग उनके सम्मुख एक भीषण दुविधा बनकर खड़ा हो गया है। न तो वे श्री राम को अपने पास रख सकती हैं, न ही वन जाने की आज्ञा दे पाती हैं। एक ओर धर्म तथा दूसरी ओर ममता ने ऐसा धर्म संकट उपस्थित कर दिया है जिससे त्राण पाना कठिन है, किंतु विजय कर्तव्य रूपी धर्म की होती है। धैर्य ममता के प्रवाह में अडिग खड़ा होकर कहता है, पिता की आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। राज्य देने के स्थान पर पिता ने वनवास दे दिया, इसका मुझे तनिक भी दुख नहीं है। किंतु भरत, स्वयं महाराज तथा प्रजाजन क्या तुम्हारा वियोग सहन कर सकेंगे? हे तात, यदि केवल पिता की आज्ञा हो तो माता को उनसे अधिक मान और महत्व देकर वन को न जाओ, किंतु यदि माता और पिता दोनों ने वन गमन के लिए कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: मैं बनूंगा।
4: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-029-94-921 पे,
6: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
4: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 AMZ पर।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
10: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करे 87-894-18744।
7: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
6: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
6: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
6: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
8: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल कहे सुनो दिल से।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क 99-393-65-930।
6: आज क्या है

0: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
6: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
6: अरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
6: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
9: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
10: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62002434 03 62002434 03

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
6: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर में भोरे के एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत, परिजनों में मचा कोहराम। गांजा तस्कर के साथ ही कई मामलों में आज भी आधा दर्जन से अधिक लोगों को किया गया गिरफ्तार। और मेधावी छात्रों को जिला पदाधिकारी ने किया सम्मानित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस एवं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तत्वाधान में जिला गंगा समिति एवं नगर परिषद गोपालगंज के संयुक्त रूप से प्राकृतिक से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम करते हुए वृक्षारोपण किया गया। यह कार्यक्रम मिंज स्टेडियम में आयोजित हुआ, जिसमें जिला पदाधिकारी, नगर परिषद के सभापति, उपसभापति, अनुमंडल पदाधिकारी और विशेष कार्य पदाधिकारी सहित तमाम पदाधिकारी गण मौजूद रहे। सभी लोगों ने जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए एक पेड़ माँ के नाम लगाया। साथ ही पर्यावरण को संतुलित करने हेतु जागरूकता से संबंधित कचरा को यत्र तत्र न फेंकना, कचरा पृथकीकरण, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना आदि के मामले में भी लोगों को जागरूक किया गया और शपथ दिलाई गई। इधर व्यवहार न्यायालय परिसर में भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्ष गीता गुप्ता की अध्यक्षता में तमाम न्यायिक पदाधिकारी गणों ने भी वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। न्यायालय परिसर में कई पेड़ लगाए गए। इस दौरान जिला विधिज्ञ संघ के भी तमाम पदाधिकारी गण और प्रतिनिधि गण मौजूद रहे। इसमें पहला पौधा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी मेधा यादव के द्वारा संयुक्त रूप से लगाया गया। साथ ही अन्य पदाधिकारियों भी वृक्षारोपण किया। 5-5 न्यायिक पदाधिकारी गण की समूह द्वारा पौधा रोपण करते हुए लोगों से वृक्षारोपण करने का संदेश दिया गया। इस दौरान प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि पेड़ हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी हैं। पर्यावरण के प्रदूषण को कम करने एवं पर्यावरण के संतुलन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष अधिकाधिक पेड़ लगाने चाहिए, ताकि हमारी पृथ्वी पर तापमान, प्रदूषण और गैस इत्यादि का संतुलन बना रहे। इधर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने वालों के विरुद्ध लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में उचका गांव पुलिस को एक सूचना मिली थी और इसी मामले में फेसबुक पर साहिल खान नामक प्रोफाइल से धार्मिक एवं सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट वायरल की जा रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। अनुसंधान के बाद उक्त फेसबुक आईडी के संचालक साहिल खान पिता कलामुद्दीन मियां साकिन जमसर थाना उचका गांव जिला गोपालगंज को उसके घर से गिरफ्तार किया गया और अब इस आरोपी पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर भोरे थाना क्षेत्र के लामी चौर बाजार के रहने वाले 24 वर्षीय अंकित गुप्ता की कानपुर में सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना की जानकारी जैसे ही परिजनों को हुई तो पूरे परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक वहां टेलर का काम कर रहे थे। इसी दौरान सड़क पर कहीं जा रहे थे, तभी एक पाइप से भरा हुआ ट्रक के चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। घटना के बाद वहां की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा है। इधर जैसे ही परिवार के लोगों को इसकी जानकारी हुई तो पूरे परिवार में कोहरा मच गया। विजयपुर थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान मुसहरी बाजार निवासी नवाब अंसारी को गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी अपनी गुमटी में गांजा जैसा मादक पदार्थ की छोटी छोटी पुड़िया बनाकर बिक्री कर रहा था। पुलिस को जानकारी हुई, पुलिस मौके पर छापेमारी की, जिसके बाद पुलिस का वाहन देखकर आरोपी भागने लगा। पुलिस ने सशस्त्र बल के प्रयोग से दौड़ाकर आरोपी को पकड़ा और उसे पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है और गांजा जैसे सामग्री को जब्त कर इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। NDPS एक्ट में फिलहाल आरोपी पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। आज उत्पाद पुलिस ने भी कई लोगों को शराब के साथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि उत्पाद पुलिस ने जहां कुचायकोट थाना क्षेत्र के पहाड़पुर रोड में DS मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल के पास छापेमारी कर अरविंद मिश्रा को शराब के साथ पकड़ा। यह कुचायकोट के बरनैया बीसा गांव का निवासी है। इसकी मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। आरोपी के पास से 9 पीस शराब की पैकेट मिली है, जिसके बाद अब इसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर उत्पाद पुलिस ने सिधवलिया के बिशुनपुरा में छापेमारी करते हुए कृष्णा कुमार को शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से भी 21 पीस टेट्रा पैक शराब की पैकेट मिली है, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इधर जलालपुर के कुर्म टोला में भी उत्पाद पुलिस ने छापेमारी की और यहां भी 45 पैकेट शराब के साथ जितेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह आरोपी बिशंभरपुर के सिपाया दुबे टोला के बनारस बैठा का पुत्र बताया जा रहा है। इधर बियर, देशी और अंग्रेजी शराब को मिलाकर कुल 274 लीटर से अधिक शराब उत्पाद पुलिस ने गोपालपुर थाना क्षेत्र से बरामद किया है। बताया जा रहा है कि इसमें तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने मतिया गांव के पास से यह शराब की खेप को जब्त किया है और इसमें तस्कर की पहचान करने में जुटी हुई है। आज जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने हिंदुस्तान प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम के दौरान जिले के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जिला पदाधिकारी ने कहा कि विद्यार्थियों की सफलता न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे जिले के लिए गर्व का विषय होता है। उन्होंने छात्रों को निरंतर मेहनत, अनुशासन और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहने का संदेश दिया। इस दौरान जिले के तमाम पदाधिकारीगण भी मौजूद रहे। माझा थाना क्षेत्र के नई बाजार में मोबाइल चोरी के आरोप में एक नाबालिग बच्चे को बांधकर पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि जानकारी मिलने पर थानाध्यक्ष निरंजन कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी एवं पिटाई करने वाले लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की गहन पूछताछ की जा रही है। मोबाइल चोरी के आरोप में इस तरह से नाबालिग को बांधकर पिटाई करने का मामला गंभीर आपराधिक श्रेणी में आता है और ऐसे में आरोपियों पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इधर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर माझा थाना क्षेत्र के भैंसही श्याम नगर में ई रिक्शा से 53 लीटर से अधिक देशी शराब को पकड़ा है। साथ ही पश्चिमी चंपारण के जोगा पट्टी के जगदम्बापुर नौका वसिंदा, जो वर्तमान में साधु चौक वार्ड नंबर 8 में रहता है, लाल बाबू कुमार को गिरफ्तार किया है और दूसरा भैंसही श्याम नगर का गुड्डू कुमार भी इस मामले में पकड़ा गया है। दोनों पर अब पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि ये लोग ई रिक्शा में शराब की तस्करी कर रहे थे। सड़क के किनारे झाड़ी में ई रिक्शा में शराब भर कर छुपा रखे थे। पुलिस को इसकी भनक लग गई और पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ई रिक्शा और शराब को जब्त किया गया है। इधर अनंत सिंह मामले में अदालत ने अभी सभी आरोपियों को राहत दिया है। बताया जा रहा है कि विधायक अनंत सिंह, सिंगर गुंजन सिंह को कोर्ट से फिलहाल राहत बरकरार है। साथ ही गुड्डू राय सहित अन्य 3 लोगों के गिरफ्तारी पर भी रोक लगी है। अगली सुनवाई तक इनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक बरकरार रखी गई। इस मामले में जांच अब क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी CID को सौंपा गया है। अगली सुनवाई 8 जून को अदालत में निर्धारित की गई है। बताया जा रहा है कि 2 मई को सेमराव गांव में हथियार लहराने और अश्लील गानों के प्रदर्शन का एक वीडियो वायरल हुआ था और इसी मामले में मीरगंज थाने में ये सभी लोग आरोपी हैं और अब अदालत में इस हाई प्रोफाइल मुकदमे में सुनवाई चल रही है। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
7: अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
6: विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर में भोरे के एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत, परिजनों में मचा कोहराम। गांजा तस्कर के साथ ही कई मामलों में आज भी आधा दर्जन से अधिक लोगों को किया गया गिरफ्तार। और मेधावी छात्रों को जिला पदाधिकारी ने किया सम्मानित।
7: इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
9: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आंख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
8: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
10: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
11: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
12: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
11: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
12: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
11: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
13: ठक ठक।
14: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
15: अच्छा मिला ही नहीं।
14: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
10: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
14: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
10: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
16: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
17: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
10: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
18: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
10: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9470434468 पे।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अभय। अब हमने यह प्रोग्राम इसलिए शुरू किया था कि लोगों को सेहत के बारे में पता चले और साथ ही उनके सेहत पर होने वाले खर्चे कम हो। तो श्रोताओं, आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान PMJAY की बात करने वाले हैं, जो कि आपके जेब के खर्चे बचाता है। और यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। इसका मकसद है कि हर जरूरतमंद नागरिक को सही और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिले, चाहे वो गांव में रहता हो या शहर में। आयुष्मान भारत के तहत दो बड़ी सुविधाएं दी जाती हैं। पहला, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, और दूसरी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJAY के तहत बड़े अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा। कहने का मतलब है कि अगर किसी को बड़ा ऑपरेशन करवाना पड़े या लंबे इलाज की जरूरत हो तो उसे पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ती। सरकार की तरफ से पूरा खर्च कवर किया जाता है। इस विषय पर और बेहतर जानकारी के लिए हमारे साथ हैं सेहतिया भैया। सेहतिया भैया सेहत संबंधी काम की बातें आसानी से समझाते हैं।
1: RJ और सभी श्रोताओं को भी मेरा धन्यवाद। भाई सच कहूँ तो आयुष्मान PM जन आरोग्य योजना देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। हमारे ही गांव के एक किसान है मनोज जी, उन्हें कुछ महीने पहले हार्ट की सर्जरी करवानी पड़ी। खर्च लगभग 4 लाख रुपए था, जो उनके लिए नामुमकिन था, लेकिन उनके पास आयुष्मान कार्ड था। उन्होंने PM जन आरोग्य योजना की सुविधा का लाभ उठाते हुए इस स्कीम के अंतर्गत सक्रिय प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त सर्जरी करवाई। अब वो बिल्कुल ठीक है और खेत में काम भी करने लगे हैं। अगर आयुष्मान PM जन आरोग्य योजना नहीं होती तो शायद मनोज जी जिंदा नहीं रहते। PM जन आरोग्य योजना खास तौर पर उन परिवारों के लिए होती है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। इसके तहत हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है, वो भी कैशलेस यानी बिना एक पैसा दिए। अब इलाज चाहे सरकारी अस्पताल में हो या किसी सूचीबद्ध या इम्पैनल्ड प्राइवेट अस्पताल में, बस आयुष्मान कार्ड होना चाहिए।
0: वाह भैया, सच में ये तो बहुत बढ़िया योजना है। लेकिन एक बात बताइए कि आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कौन पात्र हैं? मतलब कौन इस योजना का फायदा ले सकते हैं?
1: देखिए, आयुष्मान PM जन आरोग्य योजना खास तौर पर गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बनाई गई है। जिन परिवारों के नाम सामाजिक आर्थिक जनगणना के रिकॉर्ड में हैं या जो मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत आते हैं, वे सीधे इस योजना के पात्र हैं। इसके अलावा जो भवन और निर्माण कार्य में मजदूरी करते हैं, अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 60 साल से ज्यादा उम्र के अकेले बुजुर्ग, सभी इस योजना के दायरे में आते हैं। साथ ही विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, पंजीकृत पत्रकार, 70 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को भी आयुष्मान योजना का लाभ मिल सकता है। 70 साल से अधिक उम्र के लोगों पर तो आय की भी कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए 70 साल से अधिक किसी भी वर्ग के बुजुर्ग हो, वो आयुष्मान व्यय वंदन योजना के तहत सभी सुविधाएं ले सकते हैं।
0: भैया इसका मतलब सरकार ने हर वर्ग का पूरा ध्यान रखा है, चाहे वे मजदूर हो, आशा बहन हो या हमारे बुजुर्ग। लेकिन जरा ये बात बताइए कि PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से आखिर कितने लोगों को फायदा मिल रहा है और ये योजना इतनी खास क्यों मानी जाती है?
1: देखिए, आयुष्मान PM जन आरोग्य योजना कोई साधारण योजना नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। अब तक देश के 12 करोड़ से ज्यादा गरीब और कमजोर परिवार यानी करीब 55 करोड़ लोग इस योजना के तहत कवर किए जा चुके हैं। हर परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है, वो भी कैशलेस यानी बिना एक भी पैसा दिए। आयुष्मान PM जन आरोग्य योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर किसी को बड़ा ऑपरेशन करवाना हो या लंबा इलाज चलाना पड़े तो परिवार को कर्ज नहीं लेना पड़ता। पहले लोग महंगे इलाज के लिए जमीन बेच देते थे या उधार ले लेते थे, लेकिन अब आयुष्मान कार्ड से इलाज तुरंत और बिल्कुल मुफ्त हो जाता है।
0: आपने बिल्कुल सही कहा भैया, अब गरीब परिवार भी बिना चिंता के अच्छे अस्पतालों में इलाज करवा पा रहे हैं। अब ये बताइए कि आयुष्मान PM जन आरोग्य योजना में आखिर क्या क्या इलाज शामिल है, मतलब कौन कौन सी बीमारियों या सुविधाओं का खर्च सरकार उठाती है?
1: लोगों को यह जानना बेहद जरूरी है कि आयुष्मान PM जन आरोग्य योजना लगभग हर बड़ी बीमारी और इलाज को कवर करता है, पर सबसे अहम ये समझना है कि यह योजना इन बीमारियों के लिए है जिसमें हमें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। और तो और, इस योजना के तहत पहले से मौजूद बीमारियां भी शामिल होती हैं, यानी अगर किसी को पहले से ही शुगर, दिल की बीमारी, किडनी की समस्या हो तो उसके बावजूद इस बीमा योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड से इलाज हो सकता है। इसके अलावा योजना में करीब 1949 तरह की प्रक्रियाएं शामिल हैं, जैसे ऑपरेशन, डिलीवरी, कैंसर का इलाज, हार्ट सर्जरी और कई अन्य गंभीर बीमारियां। सबसे अच्छी बात ये है कि अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले का खर्च और भर्ती के बाद 15 दिन तक का खर्च दोनों सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। इनमें दवाइयाँ, टेस्ट, डॉक्टर की परामर्श फी और फॉलो अप विजिट्स का खर्च भी शामिल है।
0: इसका मतलब मरीज को इलाज के पहले और बाद की कोई चिंता नहीं रहती। लेकिन आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आखिर किसे किसे कवर किया जाता है? क्या सिर्फ परिवार का मुखिया या बाकी सदस्य भी इसके तहत आते हैं? और ये इलाज कहाँ और कैसे कराया जाता है?
1: देखिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में पूरा परिवार कवर होता है। मतलब इसमें माँ, पिता, बच्चे, नवजात शिशु, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं सभी को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। पर ध्यान रहे, परिवार के हर सदस्य का अपना अपना अलग अलग आयुष्मान कार्ड बना होना चाहिए। सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही नहीं बल्कि सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी इलाज मुफ्त होता है। आयुष्मान कार्ड दिखाइए और इलाज शुरू। सबसे अच्छी बात है कि अब तक इस योजना का 9 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फायदा उठाया है, यानी करोड़ों परिवार की सेहत अब सरकार की जिम्मेदारी है।
0: भैया, लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? गांव या छोटे कस्बों में तो कई लोग अभी भी नहीं जानते कि आयुष्मान कार्ड बनता कैसे है और इसका इस्तेमाल कहां करें। ऐसे में उन्हें कौन समझाता या मार्गदर्शन करता है?
1: दरअसल आयुष्मान पीएम जन आरोग्य योजना को जमीन पर सही तरीके से लागू करने में हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी भूमिका है। गांव और शहर दोनों जगह आशा बहनें, ANM, स्टाफ नर्स, मेडिकल ऑफिसर और आरोग्य मित्र सब लोगों तक योजना की सही जानकारी पहुंचाते हैं। इनका काम लोगों को बताना है कि आयुष्मान PMJAY क्या है, कौन कौन इस योजना के पात्र हैं और उन्हें सही अस्पतालों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। ये स्वास्थ्य कर्मी गांव-गांव जाकर उन परिवारों को पहचानते हैं जो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, फिर उन्हें कार्ड बनवाने में मदद करते हैं और इलाज के लिए सही जगह तक मार्गदर्शन भी देते हैं।
0: भैया, शायद इसीलिए कहा जाता है कि हमारे स्वास्थ्य कर्मी जैसे आशा बहनें, ANM, CHO और आरोग्य मित्र अपने गांव या मोहल्ले के स्वास्थ्य नायक हैं।
1: सही कहा आपने, आयुष्मान पीएम जन आरोग्य योजना को लोगों तक पहुंचाने में सबसे अहम भूमिका हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की ही होती है। ये लोग सीधे आम जनता से जुड़े होते हैं, घर घर जाकर जानकारी देते हैं, परिवारों से बात करते हैं और उन्हें इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इनका काम सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि लोगों को जीवन रक्षक इलाज से जोड़ना भी है, यानी ये अपने समुदाय के सच्चे स्वास्थ्य नायक बन जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये क्या करते हैं, तो जवाब है कि स्वास्थ्य कर्मी गाँव की बैठकों में या घर घर भ्रमण के दौरान लोगों को बहुत ही सरल भाषा में आयुष्मान पीएम जन आरोग्य योजना के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी योजना के बारे में जानकारी दे रहा हूं जो गरीब और मेहनत कश परिवारों की जिंदगी बदल रहा है। उस योजना का नाम है आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। फिर वे समझाते हैं कि ये योजना पूरे परिवार का इलाज कवर करती है, पहले से मौजूद बीमारियों का भी इलाज करती है और अस्पताल से छुट्टी के बाद 15 दिन तक का खर्च भी देती है। सबसे बड़ी बात है कि परिवार को कर्ज नहीं लेना पड़ता, न ही जमीन बेचनी पड़ती है, क्योंकि हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सरकार देती है।
0: भैया, ये आशा बहने और आरोग्य मित्र ही हैं जो गांव के लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं, उन्हें बताते हैं कि कैसे कार्ड बनवाना है और इलाज कहाँ मिलेगा। सच में ये लोग हमारे समाज के असली हीरो हैं जो हर घर की सेहत की रक्षा कर रहे हैं। भैया, आजकल मैं ई कवच ऐप का नाम बहुत सुन रहा हूँ, क्या ये ऐप भी इस योजना से जुड़ा हुआ है और इसमें आशा बहनों और ANM की क्या भूमिका होती है?
1: देखिए, जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सरकार भी स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बना रही है। इसी दिशा में ई कवच ऐप एक बहुत उपयोगी कदम है। इस ऐप के जरिए आशा और ANM बहने अपने क्षेत्र के सभी आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाभार्थियों का पूरा डेटा दर्ज करती है, यानी जो भी परिवार योजना के तहत आता है उसका नाम, कार्ड स्टेटस और कार्ड नंबर सब कुछ ई कवच एप्लीकेशन में भरा जाता है। इससे सरकार को यह पता चलता है कि किस क्षेत्र में कितने लोग योजना का लाभ ले रहे हैं। आशा और ANM इस योजना की रीढ़ हैं। इनका काम है लोगों को आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जानकारी देना, ऐसे परिवारों की पहचान जो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, और उन्हें सही अस्पताल तक मार्गदर्शन करना। जब मरीज अस्पताल से छुट्टी पाए तो उनका देखभाल और फॉलो अप में मदद करना, साथ ही अगर किसी को कोई सवाल या परेशानी हो तो

0: योजना जैसी योजना ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों को नई उम्मीद दी है। मुफ्त में इलाज, सम्मानजनक सेवा और डिजिटल सुविधा तक आम लोगों की पहुंच बनी है। श्रोताओं, अब सेहत सही लाभ कई के इस एपिसोड को समाप्त करने की इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े ऑनलाइन एप्लीकेशन के इस्तेमाल के बारे में और जानेंगे इस योजना से महिलाओं और बच्चों को क्या क्या लाभ मिल रहे हैं। तब तक के लिए अपने सेहत का ध्यान रखिए, पर जाने से पहले अपनी सेहत की शपथ लेना ना भूलें। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। दीजिए मुझे जाने की इजाजत, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
1: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
3: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
3: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
3: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
6: सुनिए सुनिए सुनिए,
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
7: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
8: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
9: ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आएं नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।

0: भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
0: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
0: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
0: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
0: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
1: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-72-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
0: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
0: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710-3092 या 90765-65750।

0: और अब श्रोताओं, समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए मुकेश और तन्वी को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
1: Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhata Hindi News Bulletin followed by Morning News in English at 8:15 AM. Thanks for tuning in. Have a superb day.
0: Namaskar.
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
5: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
4: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
5: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
4: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
6: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूट से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
4: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
7: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
4: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
8: With Nepal, we have an expansive agenda.
9: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
8: Partnership that we have with Nepal.
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
10: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
11: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
10: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
12: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
13: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
4: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
14: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इसराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इसराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
4: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोईकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमरीका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन पर्प्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट स्टेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
4: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
15: आकाशवाणी
16: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
17: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
18: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
17: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
18: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
17: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
18: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
17: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
19: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
20: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
21: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
20: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
21: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
20: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
22: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
23: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
24: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
20: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
24: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
22: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9186664498 पे।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: ठक ठक
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।

0: सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता: जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
3: क्यों, क्या हुआ है?
2: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
3: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
2: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
4: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय।

0: कुमार,
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
2: कॉल करे 87-894-18744।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86-034-48652 पे।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: किस बात से डर रहा है यार, एज डिफरेंस? हर लड़की है ना अपने होने वाले में फादर फिगर ढूंढती है। फिगर उसके पास है, फादर तू है।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8211 87952। नियम और शर्तें लागू।
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
5: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
5: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
7: नन्ना मुन्ना लाही हूं, देश का सिपाही हूं।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हां कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
9: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
10: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
9: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
10: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
9: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
10: जानकारी है तो कॉल करें 6252 62112 पे।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
7: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता,
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
7: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
5: और 90971602।

0: दृष्टि से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। राज्य सरकार ने ग्रामीण योजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए डिजिटल एकीकृत पोर्टल शुरू किया। राजस्व विभाग भी कार्रवाई की और मधुबनी, दरभंगा, अररिया और सुपौल जिले में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार 7.8% की दर से बढ़ रही है। दमन में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था की इस गति पर हर भारतीय को गर्व का अनुभव हो रहा है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक संकट के दौर में भी भारत मजबूती से खड़ा है। इसका श्रेय देश की 140 करोड़ नागरिकों की सामूहिक प्रयास को जाता है। उन्होंने भरोसा दिया कि देश सुधार, प्रदर्शन और बदलाव के रास्ते पर संकल्प के साथ आगे बढ़ता रहेगा।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को ऐतिहासिक उपलब्धियों वाला बताया है। श्री कुशवाहा ने कहा कि इन 12 वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम तय किए हैं। उन्होंने विपक्ष पर देश की उपलब्धियों को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया। इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्षों का शासनकाल देश में विश्वास, विकास और जन कल्याण का समय रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भाजपा 12 साल बेमिसाल अभियान चलाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। एक रिपोर्ट।
2: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7,00,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,50,000 से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: प्रदेश में ग्रामीण विकास विभाग की सभी योजनाओं की अब ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्रीकृत ग्रामीण योजना अनुश्रवण और क्रियाशीलता प्रवेक्षण प्रणाली CGRM पोर्टल का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस एकीकृत व्यवस्था से लोगों को राज्य की योजनाओं की पूरी जानकारी एक स्थान पर मिलेगी। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत पोर्टल पर दर्ज करा सकेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने में आसानी होगी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने भ्रष्टाचार, अनियमितता, कर्तव्यहीनता और विभागीय निर्देशों की अवहेलना के मामले में राजस्व सह कानून को अधिकारी सोनी कुमारी को बर्खास्त कर दिया है, जबकि 8 अन्य कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र गठित करने और विभागीय कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 32 राजस्व अधिकारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। नीट परीक्षा को लेकर बिहार सरकार पूरी तरह सख्त है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों को केंद्रों पर जाने के लिए सरकारी बसों में किराया नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 जून को 35 जिलों के 331 केंद्रों पर होने वाली परीक्षा की तैयारी की जा रही है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षकों को परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा, प्रश्न पत्रों की गोपनीयता और असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बिहार, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में जनसांख्यिकीय बदलाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। त्रिपुरा में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा में मौजूदा खामियों को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें सीमा पार से नकली नोट, मानव तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगानी होगी। गृहमंत्री ने कहा कि देश में घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि जेईई एडवांस्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के डेटा लीक और निजता उल्लंघन के संबंध में कई भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत खबरें सामने आई हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने स्पष्टीकरण जारी किया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित जानकारी भ्रामक है और गलत सूचना फैलाने का प्रयास है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि जेईई एडवांस्ड परीक्षा के दौरान कोई भी संवेदनशील जानकारी लीक नहीं हुई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। उत्तरी भागों में बारिश हो रही है और कई स्थानों पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हमारे दरभंगा, अररिया, मधुबनी और सुपौल संवाददाता ने जानकारी दी है कि आज सुबह हल्की बारिश हुई है जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इधर राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की गई है और इससे गर्मी से राहत मिल सकती है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तापमान में परिवर्तन की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के कुछ स्थानों पर, जबकि शेष भाग के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में गर्मी की स्थिति बनी हुई है। लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर लू की स्थिति भी बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटना मौसम विज्ञान केंद्र को देश भर में वज्रपात और तूफान पर अध्ययन करने के लिए अधिसूचित किया गया है। केंद्र के निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि पटना केंद्र को वज्रपात, आंधी, तूफान और मौसम प्रणालियों के अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार और पूर्वी भारत उन क्षेत्रों में शामिल है जहां प्री मानसून और आंधी तथा वज्रपात की घटनाएं बार बार होती हैं। भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला सेतु पर कल से वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने बताया कि अभी केवल एक लेन पर अधिकतम 10 टन भार वाले वाहनों को ही परिचालन की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि बेली ब्रिज पर वाहनों के परिचालन का ट्रायल रन पूरी तरह सफल रहा है।
2: 7 जून के करीब 11 बजे से स्कूल को हम लोग शुरू करेंगे। पुल का एक लेन यानी लगभग 5 मीटर चौड़ा लेन हमारा चालू होगा जिसमें कि छोटी गाड़ियों का परिचालन को हम लोग शुरू करेंगे और परिचालन में लगभग 10 टन तक की जो गाड़ियां होंगी उन गाड़ियों 10 टन तक जो परिवहन होगा उसको हम लोग अलाउ करेंगे।
0: राज्य में 12 घंटे बिजली कंपनियों की ऑनलाइन सेवाएं बंद रहेंगी। आज शाम 5 बजे से कल सुबह 5 बजे तक ये बंदी लागू रहेगी। नेटवर्क मेंटेनेंस के कारण NBPDCL और SBPDCL के अनुसार ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। कंपनी ने लोगों से जरूरी बिल भुगतान और रिचार्ज पहले ही करने की अपील की है। पटना एम्स में कार्यरत कनीय प्रशासनिक अधिकारी अश्विनी कुमार सिंह को पुलिस ने एक महिला कर्मचारी और उसकी पुत्री से छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पटना साइबर पुलिस ने पटना विश्वविद्यालय की एक अवकाश प्राप्त प्रोफेसर से 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी के आरोप में पश्चिम बंगाल से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। निगरानी की विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के आरोप में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के कनीय अभियंता धरनीधर राय को 4 वर्ष सश्रम कारावास के साथ 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन ने जनता दरबार में 68 मामलों की सुनवाई की। उन्होंने अधिकारियों को सभी मामलों के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए हैं। शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड क्षेत्र के नबीनगर ककरार में हथियारबंद अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी से 18 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए। सीवान जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक विवेक कुमार को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। पटना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उद्योग विभाग के सचिव ने उन्हें ये सम्मान दिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव पर लिखा है, भाजपा और जदयू के 8 MLC प्रत्याशी घोषित, जदयू ने 3 अति पिछड़ा तो भाजपा ने 2 को दिया मौका। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, राज्य के 50 लाख घरों में सरकार लगाएगी मुफ्त सौर ऊर्जा यंत्र। दैनिक भास्कर लिखता है, मीनाक्षी मदन राय पटना उच्च न्यायालय की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी, 12 जुलाई को होंगी रिटायर्ड। प्रभात खबर ने लिखा है, खानसर पर FIR दर्ज, कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। राज्य सरकार ने ग्रामीण योजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए डिजिटल एकीकृत पोर्टल शुरू किया। राजस्व विभाग ने कर्तव्य में लापरवाही और अनियमितता के आरोप में 9 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। और मधुबनी, दरभंगा, अररिया और सुपौल जिले में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
6: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
5: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
7: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: सुनिए,
10: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
9: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
10: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
9: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
11: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। तो दोस्तों, हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको कॉल करना होगा हर रविवार 12 बजे से हमारे स्टूडियो के नंबर 8029-94921 8029-94921 पर। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं रेडियो रिमझिम के इस रोमांचकारी खेल के रूल्स को। इस हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे 10 प्रश्न, हर प्रश्न के होंगे 3 ऑप्शन, जिसमें से होगा एक सही जवाब और आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। यदि आप 10 सेकंड में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप इस खेल से बाहर हो जाएंगे। 10 प्रश्न के सही जवाब देने वाले प्रतिभागी को मिलेगा रेडियो रिमझिम के तरफ से एक एक्साइटिंग गिफ्ट और हमारे स्टूडियो में आने का मौका। तो दोस्तों, आपको अपने तरफ से इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके मोबाइल में पर्याप्त बैलेंस हो। साथ ही हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के दौरान शांत जगह से कॉल करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी से सहायता ना ले और इंटरनेट पर जवाब सर्च ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट को और लेते हैं पहले प्रतिभागी का कॉल।
12: हेलो।
13: हेलो
12: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट।
13: जी मैडम।
12: जी नाम बताइए अपना और कहाँ से?
13: रंजीत कुमार बोलकर नवादा से।
12: जी कैसे हैं रंजीत जी?
13: मैं ठीक है, आपने बताइए।
12: हम भी बढ़िया है। पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
13: अभी तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। इंटरव्यू सारे कैसे?
12: तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
13: मेरे पिताजी का नाम श्री जग महतो और मेरी माता जी का नाम श्रीमती इंदु देवी।
12: तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
13: जी मैडम।
12: जी तो रंजीत जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया जाता है? नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए सुनहरी क्रांति, बी इंद्रधनुष क्रांति और सी रजत क्रांति। आपका समय शुरू होता है अब।
13: क्या
12: क्वेश्चन या ऑप्शन?
13: क्वेश्चन बोलिएगा।
12: नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया जाता है?
13: जी
12: जी, ऑप्शन ए सुनहरी क्रांति, बी इंद्रधनुष क्रांति और सी रजत क्रांति।
13: ऑप्शन बी इंद्रधनुष क्रांति।
12: श्योर है?
13: हाँ श्योर है।
12: लॉक कर दें?
13: जी
12: जी। तो चलिए रंजीत जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी इंद्रधनुष क्रांति को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
13: जी मैडम।
12: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? ऑप्शन ए इटली।
13: कौन ज्वालामुखी?
12: एल मिस्टी।
13: एल मिस्टी,
12: हाँ
13: बोलिए।
12: ऑप्शन ए इटली, बी पेरू, सी कोलंबिया। आपका समय शुरू होता है अब।
13: पेरू की के लिए।
12: श्योर है?
13: हाँ श्योर है।
12: तो चलिए रंजीत जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
13: जी मैडम।
12: आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 14, बी 7 से कम और सी 7 से अधिक। आपका समय शुरू होता है अब।
13: ऑप्शन बी 7 से कम।
12: श्योर है?
13: हाँ श्योर है।
12: लॉक करो?
13: जी।
12: ओके, तो चलिए आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 7 से कम को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
13: जी मैडम।
12: जी, आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, किस वर्ष में विवेकानंद की मृत्यु हो गई थी? किस वर्ष में विवेकानंद की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन ए 1885, बी 1904 और सी 1902। आपका समय शुरू होता है अब।
13: श्योर
12: है?
13: हाँ श्योर है।
12: लॉक करो?
13: जी।
12: ओके, तो चलिए रंजीत जी, आपके चौथे प्रश्न के उत्तर ऑप्शन सी 1902 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल सही है। तैयार है आप पांचवें प्रश्न के लिए?
13: जी मैडम।
12: जी, आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 में कहां हुई? G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 में कहां हुई? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी ब्राजीलिया और सी पेरिस। आपका समय शुरू होता है अब।
13: मैं ऑप्शन नंबर बी पूछ लीजिए।
12: ब्राजीलिया।
13: हेलो
12: जी, ब्राजीलिया को
13: 2025 का पूछ रहे हैं?
12: जी 2025 का पूछ रहे हैं।
13: नई दिल्ली पूछ लीजिए।
12: हाँ
13: नई दिल्ली।
12: क्यों रहे हैं?
13: हाँ क्यों रहे हैं।
12: चलिए तो रंजीत जी, आपके पांचवा प्रश्न के उत्तर ऑप्शन ए नई दिल्ली को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ब्राजीलिया। हेलो कॉन्टेस्ट में कॉल किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो
13: हेलो
12: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
13: जी
12: जी, नाम बताइए अपना और कहाँ से?
13: मैं मुकेश कुमार।
12: मुकेश कुमार
13: जी,
12: कहाँ से बात कर रहे हैं मुकेश?
13: लछवार।
12: लछवार, क्या करते हैं आप?
13: करते तो कंपटीशन नहीं है।
12: अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
13: ग्रेजुएट।
12: ग्रेजुएशन फाइनल है?
13: यस।
12: उसके बाद पढ़ाई चल रही है कि बंद है?
13: आगे तैयारी और पीजी में एडमिशन है।
12: अच्छा, तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
13: मम्मी का नाम जानकी देवी, पापा का नाम राम प्रकाश मंदिर।
12: जी, तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
13: यस।
12: और इससे पहले आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं?
13: मैं पहली बार कॉल किया, सोच रहे थे कई दिनों से सुनते ही आज कॉल कर।
12: अच्छा, तो इसका मतलब आप सुनते हैं?
13: हाँ सुनते तो हाँ, इसका जो है प्रसारण लाइव होता है।
12: जी जी, इसका प्रसारण लाइव नहीं होता है, रिकॉर्डिंग कार्यक्रम चलता है।
13: रिकॉर्डिंग जो है वो किया जाता है ना, प्रसारित किया जाता है।
12: तो पहला प्रश्न ले।
13: यस
12: जी,

0: तो मुकेश जी आपसे पहला प्रश्न ये है, नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया जाता है? नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए सुनहरी क्रांति, बी इंद्रधनुष क्रांति और सी रजत क्रांति। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी।
0: ऑप्शन?
1: ऑप्शन बी
0: इंद्रधनुष क्रांति।
1: यस।
0: श्योर है?
1: श्योर कि नहीं, लग के सारे चलिए।
0: तो लॉक करूं?
1: यस।
0: ठीक है, तो चलिए मुकेश जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी इंद्रधनुष क्रांति को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए? ओके okay. आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? ऑप्शन ए इटली, बी पेरू और सी कोलंबिया। आपका समय शुरू होता है अब।
1: फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिए मैम।
0: एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है?
1: एल मिस्टी
0: जी।
1: ऑप्शन बोलिए।
0: ऑप्शन ए इटली, बी पेरू, सी कोलंबिया।
1: कोलंबिया को लॉक किया जाए।
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं,
0: तो लॉक कर दो।
1: यस।
0: ओके, तो चलिए मुकेश जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी कोलंबिया को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा पेरू, ना कि कोलंबिया। ओके, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
8: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
10: तो अब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
11: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
10: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
11: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
10: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
11: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
12: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
10: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड गोपालगंज।
13: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
14: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
13: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
14: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
13: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
15: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
16: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
15: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
16: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
15: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
16: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
17: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
18: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
19: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
20: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
19: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
20: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
19: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
20: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
19: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
20: कॉल करे 7075763600 या 7075742400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94921 8029-94921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: हेलो।
21: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
21: थैंक यू मैम।
0: जी नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
21: नाम सलोनी कुमारी बंजारी भवन गोपालगंज।
0: जी कैसी हैं सलोनी जी।
21: ठीक हूँ मैम।
0: जी तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है बता दीजिए।
21: BA।
0: BA
21: हाँ।
0: ओके, अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
21: मम्मी का नाम है सविता देवी और पापा जी का नाम है सुंदर लाल का।
0: जी तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
21: आ लीजिए।
0: जी तो सलोनी जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया जाता है? नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए सुनहरी क्रांति, बी इंद्रधनुष क्रांति और सी रजत क्रांति। आपका समय शुरू होता है अब। बी इंद्रधनुष क्रांति।
1: हाँ
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है पर लग रहा यही होगा।
0: ओके तो चलिए सलोनी जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी इंद्रधनुष क्रांति को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, एलमिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? एलमिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? ऑप्शन ए इटली, बी पेरू, सी कोलंबिया। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम क्वेश्चन फिर से बोलिएगा।
0: हाँ
1: क्वेश्चन फिर से बोलिएगा।
0: एलमिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है?
1: ऑप्शन
0: ऑप्शन ए इटली, बी पेरू, सी कोलंबिया।
1: पेरू।
0: श्योर है?
1: मैं श्योर तो नहीं हूँ।
0: तो लॉक करो?
1: हाँ लॉक करिए।
0: ओके तो चलिए सलोनी जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी पेरू को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: ओके आज से आपका तीसरा प्रश्न ये है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? ऑप्शन ए 1969, बी 1971 और सी 1972। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम क्वेश्चन फिर से बोलिए ना।
0: मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? ऑप्शन ए 1969, बी 1971

0: नमस्ते मैम।
1: फ्रॉम हेलो फ्यूज कॉन्टेस्ट में नमस्ते,
0: रंजन बोल रहे हैं आजमापुर से।
1: जी कैसे हैं रंजन जी?
0: ठीक है आप?
1: मैं भी बढ़िया हूँ। तो क्या करते हैं रंजन जी आप?
0: बस पढ़ाई करते हैं, बीएड कंप्लीट है।
1: जी बीएड कंप्लीट है, तो आगे टीचर की तैयारी है?
0: टीचर के साथ कोई गवर्नमेंट जॉब पर।
1: अच्छा अच्छा, बढ़िया है। तो तैयारी कैसे चल रही है आपकी?
0: फिलहाल तो सही चल रहा है।
1: जी तो मम्मी पापा का नाम बता दीजिए अपने।
0: पिताजी का नाम इंद्र यादव और मम्मी का नाम है लाल।
1: जी तो लिया जाए पहला प्रश्न आपका आज का।
0: जी

0: तो चलिए रंजन जी, आपका आज का पहला प्रश्न ये है, भारत से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 9। आपका समय शुरू है अब।
1: ये 8 को फिक्स कीजिए।
0: श्योर है? लॉक कर दो?
1: जी।
0: तो चलिए रंजन जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 8 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन ए लेक नाशेर, बी लेक करीबा और सी लेक वोल्टा। आपका समय शुरू होता है अब। आवाज कट रही है आपकी? बी लेक करीबा। आप थोड़े नेटवर्क वाले एरिया में जाइए। ए लेक
1: नाशेर।
0: श्योर है आप?
1: नहीं श्योर तो नहीं।
0: तो लॉक कर दें?
1: हाँ कर दीजिए।
0: चलिए तो रंजन जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए लेक नाशेर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा लेक वोल्टा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
5: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
6: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
5: तो देर मत कीजिए,
6: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।
9: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
10: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल।

0: गई।
1: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
0: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
0: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
0: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देख रेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजन के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
6: नमस्कार।
7: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगसिंग के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
6: जी, मैं कमरान नसीब, टकरी सुल्तान से।
7: जी, कैसे हैं कमरान जी? कुछ प्रॉब्लम था जिस वजह से नहीं आ रहे थे।
6: तो मैं आज सोचा कि देखूं आज आई है कि नसीब हुई, और बच्चे चौबीस बहुत दिन से बंद है, तो मैंने सोचा कि देखो चेक करूं आई है कि नहीं आई है।
7: तो बढ़िया किया, कॉल लग भी गया और मैं आई भी हूँ, बात भी हो रही है।
6: जी जी, नहीं अब मैं बहुत इंतजार कर रहा था, कहाँ चले गई भाई, नहीं जा रही है, क्या बात हो गया?
7: जी कुछ फिलहाल आपसे भी के बीच फिर से हाजिर हो चुकी हूँ।
6: राम राम भाई, हाजिर का जरूरत है।
7: जी जी, तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है कमरान जी आपकी?
6: मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है।
7: ग्रेजुएशन के बाद कुछ पढ़ रहे हैं या फिर ठप है?
6: नहीं ठप नहीं है, चल रहा है, ट्रेनिंग वगैरह चल रहा है।
7: अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो अम्मी अबू का नाम बता दीजिए अपने।
6: मोहम्मद रशीद एंड रबिया खातून।
7: तो लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
6: जी
7: जी,

0: कमरान जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, भारत के संविधान को लागू कब किया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950 और सी 26 नवंबर 1949। आपका समय शुरू होता है अब।
1: छब्बीस जनवरी 1950
0: क्यों है?
1: संविधान का लागू ना
0: जी,
1: संविधान का लागू शायद नवंबर में हुआ था, 26 नवंबर 1949
0: जी। ओके, तो चलिए कमरान जी, आपके पहले प्रश्न का ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर जो है वो गलत है। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को।
1: मैं सही करके गलत कर दिया?
0: नहीं है। हेलो, प्लीज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो,
2: हाँ जी, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो प्लीज कॉन्टेस्ट में।
2: जी, आपको भी सुने जी, नमस्कार
0: जी। लाल बहादुर बात कर रहे हैं
2: जी? जी मैम
0: जी, कैसे हैं लाल बहादुर जी?
2: ठीक है मैम
0: जी।
2: और सब सुनाइए,
0: सब बढ़िया है?
2: आप तो समुद्र की तरफ पता ना कहाँ घूम गई थी, सामने देख भी जाता है।
0: यहाँ कुछ गई थी शाम, जिसके वजह से गायब हो गए थे। अभी जो भी समस्या था वो खत्म हो गया है काफी हद तक, तो फिर आ गए आप सभी के बीच।
2: चलिए अच्छी बात है, घरेलू काम जो है अपना तो करना ही पड़ता है
0: जी। अब ये दुनिया है और समय है, कब क्या होने वाला है किसी को नहीं पता।
2: जब पता ही हो जाता तो गॉड भगवान नहीं हो जाता इसमें।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किया है, तो तैयार हैं आप?
2: हाँ मैम
0: जी। तो उससे पहले आप ये बता दीजिए कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है?
2: प्लस वन इंटर।
0: उसके अलावा आप क्या करते हैं?
2: खेती बाड़ी करते हैं, स्वास्थ्य वगैरह से जुड़े हुए हैं।
0: मम्मी पापा का नाम बता दीजिए अपना।
2: पिताजी का नाम यतन प्रसाद और माता का नाम शिवरात्रि देवी
0: जी। तो तैयार है, लिया जाए प्रश्न पहला आपसे?
2: हाँ जी, लिया जाए
0: जी। चलिए,

0: तो लाल बहादुर जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है
1: जी,
0: विद्वान शब्द का सही विलोम क्या है? विद्वान शब्द का सही विलोम क्या है? ऑप्शन ए ज्ञानी, बी मूर्ख, सी शिक्षक। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ज्ञानी।
0: विद्वान का सही शब्द होगा ज्ञानी। श्योर हैं आप?
1: जी।
0: बोल रहे हैं कि आप श्योर हैं?
1: हाँ जी, हाँ हाँ।
0: तो लॉक कर दूं?
1: जी
0: जी। तो चलिए लाल बहादुर जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर विद्वान का विलोम शब्द जो कि आपने बताया है ज्ञानी को, लॉक करते हैं?
1: जी
0: जी। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा मूर्ख, ना कि ज्ञानी।
1: मूर्ख
0: जी। हेलो, फ्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किया आपका, बहुत शुक्रिया।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
3: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-921 8029-94-921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो इंजन के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। जी, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: मेरा नाम मोहम्मद कानवाल है, मेरा गांव पड़ता है आसम के पास, जलवा मठिया।
0: जी, नाम एक बार फिर से बताइए।
1: मेरा नाम है मोहम्मद शहनवाज।
0: मोहम्मद शहनवाज
1: जी।
0: जी, क्या करते हैं शहनवाज जी?
1: हम पढ़ाई करते हैं।
0: किस क्लास में पढ़ते हैं?
1: हम अभी 7 में पढ़ते हैं।
0: किसमें?
1: 7 में।
0: 7 में पढ़ाई कैसी चल रही है?
1: अच्छी चल रही है।
0: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में पहली बार कॉल किए हैं?
1: जी
0: जी। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का प्रसारण सुनते हैं आप?
1: जी सुनते हैं।
0: बढ़िया है। फिर अपने अम्मी अबू का नाम बता दीजिए।
1: मेरे अम्मी का नाम है रुखसार बेगम, मेरे अबू का नाम है मोहम्मद कमाल।
0: जी, तो शहनवाज जी आगे क्या करना है कुछ सोचा है आपने पढ़ाई करके?
1: जी अभी नहीं सोचा है, पढ़ाई कर रहे हैं।
0: ओके, तो लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
1: जी
0: जी,

0: तो शहनवाज जी, आपका पहला प्रश्न ये है आपसे कि विद्वान शब्द का सही विलोम क्या है? विद्वान शब्द का सही विलोम क्या है? ऑप्शन ए ज्ञानी, बी मूर्ख और सी शिक्षक। आपका समय शुरू होता है अब।
1: थोड़ा एक बार और क्वेश्चन बोल दीजिए। घर में चलने तो नहीं आता।
0: विद्वान शब्द का सही विलोम क्या है? ऑप्शन बी।
1: जी ऑप्शन दे दीजिए।
0: ऑप्शन ए ज्ञानी, बी मूर्ख, सी शिक्षक। आपका समय समाप्त हो रहा है।
1: ऑप्शन ए। ऑप्शन
0: बी।
1: हाँ ऑप्शन ए
0: ज्ञानी।
1: जी
0: चोर है।
1: जी
0: लॉक कर दो।
1: जी
0: चलिए, तो चलिए शहनवाज जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए ज्ञानी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा मूर्ख, ना कि ज्ञानी। हेलो, क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो
2: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। जी नाम बताइए अपना।
2: मैं सिमरन कुमारी।
0: नाम क्या बताया आपने, एक बार फिर बताइए।
2: सिमरन कुमारी।
0: सिमरन कुमारी,
2: हाँ।
0: कहाँ से बात कर रही हैं सिमरन जी?
2: भाई सही। क्या
0: भाई सही? जी क्या करती हैं सिमरन जी आप?
2: बीए सेकंड ईयर में पढ़ती हूँ।
0: अच्छा, और पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
2: अच्छी चल रही है।
0: तो आगे क्या करना है, कुछ सोचा है आपने?
2: हाँ, पुलिस की तैयारी करते हैं।
0: तो तैयारी शुरू है कि अभी करना है?
2: शुरू है।
0: अच्छा, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में पहली बार कॉल कर रही हैं?
2: हाँ पहली बार कॉल की।
0: जी इसका कार्यक्रम सुनती हैं आप?
2: हाँ।
0: तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए सिमरन जी।
2: पापा का नाम है दीना शर्मा, मम्मी का नाम है निर्मला देवी।
0: ओके, तो शुरू किया जाए आज का खेल आपके साथ हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का।
2: यस
0: जी,

0: तो सिंदन जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी महात्मा गांधी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: लाल बहादुर शास्त्री।
0: श्योर हैं आप?
1: हाँ।
0: लॉक करो? ओके। तो चलिए सुनन जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए? आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए है सहारा मरुस्थल, बी है थार मरुस्थल और सी है गोभी मरुस्थल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: थार मरुस्थल।
0: श्योर है?
1: कंफर्म नहीं।
0: तो लॉक करो? ओके। तो चलिए सिंदन जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी थार मरुस्थल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर जो है बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा सहारा मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत का बड़ा है, भारत में, और विश्व का मरुस्थल जो है वो सहारा है। हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट संडे फिर कोशिश करिए।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
8: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
8: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
10: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
11: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
12: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
13: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
14: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
12: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
14: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
12: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
15: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजन के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-921 8029-94-921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
16: हेलो
0: जी, नाम बता दीजिए अपना।
16: जी नमस्ते, मेरा नाम अनुराधा गुप्ता है।
0: जी नमस्ते, कैसी हैं अनुराधा जी?
16: ठीक है, आप बताइए।
0: मैं भी बढ़िया हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
16: हम थाने से बोल रहे हैं।
0: जी जी, तो क्या करती हैं अनुराधा जी?
16: जी पढ़ते थे, अभी कुछ नहीं कर रहे, घर पे बैठे हैं।
0: जी पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
16: जी अभी ग्रेजुएशन अब कर रहे हैं, मतलब घर से ही।
0: अच्छा, घर से ही कर रही है ग्रेजुएशन। तो अभी फर्स्ट ईयर चल रहा है या फिर उससे आगे? फर्स्ट ईयर है। पढ़ाई कैसी चल रही है?
16: बढ़िया चल रही है।
0: या उसके अलावा और कुछ तैयारी कर रही है? बस पढ़ाई चल रही है।
16: जी
0: किस चीज का तैयारी कर रही है?
16: अभी तैयारी नहीं, अभी ग्रेजुएशन फाइनल हो जाए देखा जाएगा।
0: अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया है। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में इससे पहले कॉल किए हैं आप?
16: जी एक बार किए हैं।
0: अच्छा अच्छा, अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
16: जी मम्मी का नाम है धर्मशीला देवी और पापा का नाम प्रभुनाथ गुप्ता।
0: जी तो लिया जाए आपका पहला प्रश्न आपसे।
16: हेलो
0: जी, पहला प्रश्न लिया जाए आपका।
16: जी जी जी जी
0: जी,

0: तो दादाजी आपका पहला प्रश्न ये है, नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए घायल होना, बी अपमानित होना और सी बीमार होना। आपका समय शुरू होता है अब।
1: एक बार और क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा।
0: नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा?
1: जी
0: ऑप्शन ए घायल होना, बी अपमानित होना और सी बीमार होना।
1: अपमानित होना, बी ऑप्शन।
0: श्योर है आप?
1: जी।
0: लॉक कर दूं?
1: जी
0: जी। तो चलिए राजा जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी अपमानित होना को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, मनुष्य के शरीर में रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? मनुष्य के शरीर में रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, बी प्लाज्मा और सी प्लेटलेट। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन।
0: श्योर है?
1: श्योर नहीं है।
0: लॉक करूं?
1: जी लॉक कीजिए।
0: चलिए तो चलिए दादा जी, आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी
0: जी। तो आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन ए मगरमच्छ, बी गंगा डॉल्फिन और सी कछुआ। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी
0: गंगा डॉल्फिन।
1: जी।
0: श्योर है?
1: श्योर नहीं है, लगाई थी।
0: चलिए तो चलिए दादा जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी लॉक करते हैं गंगा डॉल्फिन को, ऑप्शन बी। और आपको बताएं कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल सही है। तो चौथा प्रश्न लिया जाए आपसे?
1: जी
0: जी। आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, भारत से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 7, बी 8 और सी 9। आपका समय शुरू होता है अब।
1: नौ।
0: श्योर है?
1: हाँ।
0: लॉक कर दूं?
1: जी।
0: चलिए तो अनुराधा जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 9 को लॉक करते हैं। और आपको बताया कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा 8। लोक क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद, अगले संडे फिर कोशिश करिएगा।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम।
2: तो दोस्तों, ये रहा हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट का आज का एपिसोड। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर और बने हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के विनर। और हमें दीजिए अब जाने की इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। सुनते रहिए रेडियो रिंजुम 90.4 FM। नमस्कार।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
3: और 9097160602।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
7: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
8: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहे नू, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होई नू।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।
5: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
4: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
3: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
4: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
3: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
4: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
3: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
4: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
4: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
3: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करें 87-894-18-744।
9: साहेबान, कदरदान, मेहरबान, अजिल फार्म के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।
10: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
11: अब भी वक्त है, निकल लो भाई लोग, नहीं तो कल सुबह अफसोस होगा।
10: ये शोखी, ये अदाएं, ये बांकपन, इनकी कीमत भला दुनिया तय कर सकती है क्या?
11: अच्छा चल इतना बता, तीनों का मिला के पैकेज में कुछ कम करती है क्या?
10: बरखुदार, हुस्न का मजाक ना उड़ा, कहीं हुस्न के हाथों तेरा मजाक ना बन जाए। मन चला है, खूबसूरत है, मगर लड़का है तू, तुझे लड़कों और मर्दों में फर्क कौन समझाए?

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
4: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
5: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।

0: तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल हना।
1: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे।
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
5: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
6: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
7: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
8: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
7: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
9: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
7: कॉल करें 85070-32042 पे।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
5: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
5: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
5: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
7: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
5: और 90974602।

0: हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो एम झीम 90.4 FM पे समय 9:19 हो रहा हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि हर रोज की तरह पुराने गाने की फरमाइश करना है ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। ऐसा ना हो कि आप नए गाने की फरमाइश करें और नए गाने के चक्कर में आपकी फरमाइश पूरी ना हो पाए और आप इंतज़ार करते रह जाएं। और यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए, तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। और पहला मैसेज लिखा गया है कि हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सुनो भैया, सबको बोल दीजिएगा और मुझे एक सॉन्ग सुना दीजिए जो कि है चांद से पर्दा ना कीजिए, कहीं चुरा ना ले चेहरा का नूर। मैं शिव सागर दीवाना जम्मू एंड कश्मीर से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और हमारे एक श्रोतागण हैं जो कॉल कर रहे हैं, तो कॉल नहीं करना है, इसमें टेक्स्ट मैसेज करना है। टेक्स्ट मैसेज वाले कार्यक्रम में यदि आप मैसेज करते हैं तो बिल्कुल इस कार्यक्रम में आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी। फिलहाल हम आगे मैसेज देखें। यहाँ पे मैसेज पहुँचा, हाय सोनू बाबू कैसे हैं, हम भी ठीक हैं। तो बिल्कुल बढ़िया, हम भी हैं और आप सभी के बीच उपस्थित हैं। और आगे कहते हैं कि हमें एक गाना सुना दें, फिल्म एक मुट्ठी आसमान, किशोर और आशा जी की आवाज़ों में। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। वीरेंद्र गुप्ता भैया के करिया रक्सौल नेपाल बॉर्डर से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो हाय नमस्ते नमस्कार कैसे हैं सोनू भाई आप और मैं, रोहित देहरादून से, और मैं भी आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूं। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, मैं भी बढ़िया हूं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हम बिकेश गांव त्रिलोकपुर से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है बिकेश जी। और गाने के फरमाइशें तो पूरा करने की कोशिश है और आप बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि नाम अंकुश कुमार, पता गोपालगंज, गाना सांसों की माला जपते जपते। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाइशें तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सर मैं सनी राज पटेल। तो बिल्कुल सनी राज पटेल जी, आज आपकी फरमाइश बिल्कुल पूरा किया जाएगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और चलिए आपकी मैसेज तो हमने रीड कर ही दिया है और आगे मैसेज पहुंच रहे हैं, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। थोड़ा सा सब्र कर ले अंकुश जी और बने रहे हमारे साथ। फिलहाल हम गाने प्ले करते हैं और गाने की फरमाइश इंजॉय करते हैं हम सभी शिव सागर दीवाना जी, और सुनते हैं इनके पसंद के गाने।
1: ठीक है, मैं गाता हूँ।

सभी प्यारे सॉन्ग की फरमाइश, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि बहुत बहुत धन्यवाद सुनो भैया गाना बजाने के लिए। चलिए आपको भी धन्यवाद है, और आगे एंजॉय करते रहिए और सुनते रहें रेडियो 94.4 FM।

अभी प्यारे गाने रेडियो एमसीएम 94 एफएम पे, और आगे कई मैसेज पहुंचे और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है। लिखा गया है कि नमस्ते सर, संजय शर्मा हरियरपुर शांति चौक से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में संजय जी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि प्लीज़ सर प्ले कर दीजिएगा मेरे सॉन्ग में संजय राज पटेल, तो बिल्कुल आपके भी गाने हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि फिल्म मिर्जा साहिबा सॉन्ग हाथ सीने पे जो रख दो करार ना जाए। और मैसेज करते हैं शगीर अंसारी जी फ्रॉम तेजपुर असम से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया कि अस्सलाम वालेकुम, क्या खैरियत है, आज हम दोनों साथ में जुड़ गए हैं और हमारा भी वेलकम कीजिए शबीना एंड शब्बा फ्रॉम दुलुलिया से, तो बिल्कुल आप दोनों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे कहते हैं कि होठों पे उल्फत के फसाने नहीं आते, होठों पे उल्फत के फसाने नहीं आते, जो बीत गए फिर वो जमाने नहीं आते, दोस्त ही होते हैं दोस्त के हमदर्द, कोई फरिश्ते यहाँ साथ निभाने नहीं आते, बिल्कुल। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि अस्सलाम वालेकुम, मैं गजाला विदेशी टोला से और मुझे गाना सुनना है, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने की फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश। और आगे बढ़ते हैं, आगे कई मैसेज आते जा रहे हैं तो मैसेज को रुकते हैं और गाने को प्ले करते हैं। और अगले गाने की फरमाइश यहाँ पर पहुँचा हुआ है खेकर यारोकसोल नेपाल बॉर्डर से वीरेंद्र गुप्ता भैया जी की तरफ से, और गाने की फरमाइश करते हैं, गाने का बोल देते हैं प्यार कभी कम न करना सनम, डेडिकेट मैडम जी रोशनी हीना हाजरा आशा निशा ब्यूटी गुड़िया शब्बा शाहजहाँ नीतू निशा खुशी शफाक सबीता सबीना सलोनी और खास आपको। तो चलिए हम भी आप सभी के बीच तो हर गाने में उपस्थित रहते हैं, इस गाने को भी इंजॉय किया जाएगा, मन लगा के और ध्यान से सुना जाएगा कि क्या कहता है गाना।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7146-164।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
9: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
9: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
8: क्यों, क्या हुआ है?
7: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
8: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
7: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रिमझिम 94 एफएम पे सोशल लाइफ में फरमाइश का। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक्स सोनू बाबू, आपको धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि दिल की दिल से दूरी नहीं होती, खास कोई मजबूरी नहीं होती, मिलने की तमन्ना तो बहुत है लेकिन हर तमन्ना पूरी नहीं होती। सभी दोस्तों को हम भी जुड़ गए हैं दिलीप राम अपने गांव शिहोरवार से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे कहते हैं कि नज़ारे मिले तो प्यार हो जाता है, पलके उठे तो इजहार हो जाता है, ना जाने क्या कशिश है चाहत में कि कोई अनजान भी हमारी ज़िंदगी का हकदार हो जाता है। सुनो भाई नमस्कार सब, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो हाय सर जी, नमस्कार सर जी, कैसे हैं सर जी? मैं प्रीति रैदास विलेज लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार से, और आज मुझे सॉन्ग सुनना है सॉन्ग न लाखों आशिक मर जाते हैं मेरी एक मुस्कान पे, फ्रॉम द मूवी होगी प्यार की जीत, जल्दी नहीं प्ले कीजिएगा। तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मैं भी जुड़ गया हूं, तो बिल्कुल आप भी बने रहे हमारे साथ। और इस मैसेज को करते हैं परवेज आलम जी और नवादा से जुड़े हुए हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगले गाने के फरमाइशी का हमारे श्रोतागण है, कई दिनों से परेशान है और आज सप्ताह का अंतिम दिन है और इन्होंने नए गाने के फरमाइश कई दिन से कर रहे हैं, और आप दूसरे गाने के फरमाइश करें, बिल्कुल हम आपकी फरमाइश पूरी करेंगे सनीराज पटेल जी। और आगे हम बढ़ते हुए अगली गाने के फरमाइश प्ले करते हैं फ़िलहाल और इन्जॉय करते हैं इस गाने के साथ। और अगले गाने की फरमाइश यहाँ पे हम प्ले करते हैं, गाने के फरमाइश करते हैं विकेश जी गांव त्रिलोकपुर से, और गाने का बोल देते हैं दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते ही कदम रुक जाते हैं। चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी।

का भी प्यारा सॉन्ग रेडियो एमजी 90.4 एफएम पे सुन रहे हैं आप सब। और आगे गाने की फरमाइश और कई मैसेज पहुंचे हुए हैं और आगे लिखा गया है कि थैंक्स, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और मैसेज पहुंचाने वाले लिखते हैं कि चांद से तो नहीं लेकिन सूरज से पर्दा ज़रूर कीजिए, नहीं तो सच में वो चेहरे का नूर चुरा लेंगे। वेरी नाइस सॉन्ग, दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। मिसेस करती हैं शबीना खातून। और आगे मिसेस और अगली गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है सुरेश मिस्त्री जी किए हुए हैं और गाने की फरमाइश करते हैं मेरे देश में पवन चले पुरवैया देशभक्ति। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं, इंजॉय करते हैं हम सभी।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
4: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
6: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
7: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
6: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
6: संपर्क 99393-65930।

थोड़ा सा ब्रेक हो गया खात्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एम छिम 94.4 FM पे। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और आगे मैसेज करती हैं, लिखा गया है कि हेलो हाय नमस्ते नमस्कार सर जी, मैं सुधा कुमारी बतरदे से, क्या हाल है बताइए। तो बिल्कुल बढ़िया है और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है गुड नाइट सनो भैया, जय माता दी, आपको भी गुड नाइट। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है सनी राज जी पटेल, गाने को चेंज करते हुए मैसेज करते हैं और कहते हैं कि कसम है तेरी मैं तेरा दूल्हा बनूंगा। तो चलिए तैयार हो जाइए और आपके गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आप सभी के साथ रेडियो रेम झिम 94.4 FM पे।

0: प्रकाश साहब।
1: यस सर।
0: ये जो आप फोटो खींच रहे हैं इसके पैसे कौन देगा?
1: आप ही देंगे सर।
0: तो फिर मेहमानों की फोटो खींचते रहेंगे।
2: एंजॉय कर रहे हैं आप सब और कार्यक्रम SMS फरमाइश के साथ बने हुए हैं और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि थैंक यू सर, आपको धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है लिखा गया है कि दिल को कैद करके मुस्कुराया ना करो, रोशनी की खातिर दिल जलाया ना करो, क्यों करते हो दिल पे इतना सितम, अगर याद नहीं करते तो याद आया ना करो। मैसेज करती हैं शबीना खातून और आगे मैसेज इनके तरफ से लिखा गया है कि ओ मेरे सोना तुम मेरे होना, सुपर एंड लाजवाब सॉन्ग एंड बाय टू ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगली गाने की फरमाइश यहाँ पे, और अगली गाने की फरमाइश करते हैं शगीर अंसारी जी तेजपुर आसाम से, तो इनके गाने हम प्ले करेंगे और इनके गाने को प्ले करते हुए इंजॉय करेंगे। गाने को डेडिकेट करते हैं दिलीप राम नरेश और कमरान हजरा शाहजहाँ को डेडिकेट करते हैं। तो चलिए आप भी इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो रमझिम 90.4 FM पे।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714 86164।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
7: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
7: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल कमला राय कॉलेज रोड इंडियन गैस एजेंसी के बगल में गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने डॉक्टर कॉलोनी गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
8: टॉप भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
9: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुत देखनी है पर कोनो जचल है ना।
8: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में,
10: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री कमल श्री सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
11: जी हाँ, कमल श्री कमल श्री कमल श्री सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
12: आप सब और अभी हम सभी शकीर अंसारी जी के गाने को सुन रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, सोच रहा है इसमें इस फरमाइश का, और यहाँ पे आगे गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे और इस गाने की फरमाइश करते हैं अंकुश जी। तो इनके तरफ से गाने की फरमाइश किया गया है कि सांसों के माला जपते जपते, और

आप सब और सोशल एसएमएस फरमाइश का, और यहाँ पे समय जो है समाप्ति के बहुत करीब है। तो अंतिम गाने प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे, और अंतिम गाने की फरमाइश यहाँ पे पहुँचा हुआ है, और इस गाने के फरमाइश करते हैं संजय शर्मा जी हरिहरपुर शांति चौक से, और गाने का बोल देते हैं कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बादे, अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। तो इनके गाने हम प्ले करेंगे, और साथ ही कई मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए हैं, और जो गाने की फरमाइश हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं आगे मैसेज पहुँचा हुआ है हाय। तो अंत में आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, अंतिम गाने के साथ एंजॉय करें दीप्ति कुमारी घर दतिया से। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक्स, आपको धन्यवाद है रेडियो रमछम सुनने के लिए, और आगे सुनते रहें एंजॉय करते हैं, और जो भी श्रोतागण छोड़ जा रहे हैं नाराज नहीं होना, समय जो है पूरा हो गया जिसके कारण इस कार्यक्रम में कई श्रोतागण की फरमाइश हम पूरी नहीं कर पा रहे। सो अगले सप्ताह कोशिश रहेगा कि जो भी मैसेज पहले पहुँचे उस मैसेज को शामिल करते हुए गाने के फरमाइश हम पूरी करें, और हाँ ध्यान रखना है कि बस आप लोग पुराने गाने के फरमाइश करेंगे, ऐसा ना हो कि नए गाने के फरमाइश कर दें और जब हम गाने प्ले करने जाएं तो आप के गाने देखते हुए गाने को फरमाइश को रोक दिया जाए। तो फिलहाल ऐसा नहीं करना है, कार्यक्रम के अनुसार जुड़ना है और गाने को इंजॉय करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, सुनते रहे रेडियो 94.4 FM, जो मैसेज कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 90971602।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AM-Z पर।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
6: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
6: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा, मिला ही नहीं
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब

0: 3888-9470 या 9198-8869-73।
1: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
10: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
10: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: हमारे कृष्णकांत जी बेसिकली सोम सरोवर से हैं।
1: अच्छा अच्छा, वही जहाँ के अंगूर बहुत मशहूर हैं।
2: जी जी, जी।
0: हाँ। और हमारी भाभी जी भोपाल की हैं।
1: अरे हमारे बच्चों का ननिहाल भी भोपाल के

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
4: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
5: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
6: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
5: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101-87952। नियम और शर्तें लागू।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
9: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
10: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: जान, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।
4: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
3: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
3: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
3: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 पे।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करें 6252 62112 पे।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-930।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक कंप्यूटर एजुकेशन।

0: रक्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटते क्यों हो? उसे

0: से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
1: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
2: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
1: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
1: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
7: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज
6: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बानी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा? आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: मेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और

0: एक्सट्रीम 125R अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: बटुक साहब ने एक छोटी सी पार्टी रखी है
3: ऐसी जगह।
4: अरे झुमका भी मैं भूल गई, जाने जा तेरे लिए।
5: थोड़ी देर नीचे चलते ना, बटुक अंकल बुरा मान जाएंगे। चलिए ना।
4: अरे

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
2: क्यों, क्या हुआ है?
1: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
2: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
1: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए,
3: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 993।
4: होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबंदा में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
5: मेट्रो के लिए 60 न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
4: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जल टमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
6: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
4: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारायकाल में अगले दो दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
7: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
4: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से

और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। ऑस्ट्रेलिया सैयर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
2: कॉल करें 87894 18744।
8: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ, AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
2: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
5: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
7: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714861.
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
9: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
10: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
11: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
12: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत तनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क 99-393-65-930।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
4: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा में, NH-27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH-27, गोपालगंज।
4: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-72-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
4: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
5: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
4: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
5: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
6: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
5: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
6: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
5: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
6: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003, 62042434003।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
8: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
9: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
8: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
8: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
9: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
8: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
9: कॉल करें 70705763100 या 70705042100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

头，快使用我干脆，快使用我干啥？大声，大声，别开心。

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। मैं एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल की सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
6: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
7: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
6: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
7: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
7: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करे 87894 18744।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779786164। गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ 1-2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11001।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारीलाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारीलाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारीलाल विजय कुमार।
6: मुरारीलाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
2: कॉल करें 87-894-18744।
9: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
6: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग,
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
6: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 88252-14946।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
4: जी हाँ, कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
0: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।

0: बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
0: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99-54-94-93
5: और 90-97-61-60-02।

इस संसार भगवान के बनावल एगो अद्भुत रचना बा, जौना में तरह तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधा, नदी पहाड़, ये सब भगवान के बनावल बा। इमें मनुष्य जमन शरीर बा, ये सब जूनी से सब प्राणी से सुंदर प्राणी बाई मनुष्य प्राणी। भगवान के कैसन रचना बा भैया, केहू सुखले में रहता, केहू जीवन भर पानी में आपन रह करके जीवन बितावता। एगो भक्त भगवान से कहले कि हे प्रभु, हमनी राउर कर्जदार बनी। कहले कैसे,

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान लिया।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
9: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
10: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
9: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
10: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
11: Now pick it up,
12: hello.
11: Now pick your phone up,
12: hello.
11: Pick it up, hello.
12: Now
11: pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
2: जी मैम, मुझे गाना सुनना है।
1: जी, गाना सुनाएंगे, नाम बता दे अपना।
2: मुंबई से बोल रहा हूँ, मुझे गाना सुनना है।
1: ओके, और कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
2: मुझे गाना सुनना है जुदा अपने दिल भर को होने लगी है मोहब्बत।
1: अच्छा, और ये गाना आपको किसको सुनाना है?
2: और रोबीना जी, दीप्ति जी, हीना जी, गुड़िया जी, सज्जा जी, शबनम जी और अरिशा, सभी को सुनवाना चाहता हूँ।
1: ओके, चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू मैम।

0: हेलो
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: मैं राजू बोल रहा हूँ
0: जी।
1: हम तो एक गाना सुनना है।
0: और आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी हम लुधियाना से बोल रहे हैं।
0: अच्छा, कैसे हैं आप?
1: हम ठीक है, आप अपना बताइए।
0: मैं भी ठीक हूँ। फिर बताएं क्या हो रहा है?
1: बस काम हो रहा है, सिलाई कर रहे हैं यहाँ पे।
0: बढ़िया है।
1: आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं 5 बजे से।
0: जी जी
1: हाँ, 7 बजे तक।
0: फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी?
1: मेरा एक फरमाइश है, कोई राजू प्यार न करियो, दिल छूट गया था।
0: अच्छा जी, फिर ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
1: जी एक मेरा मंजीत दोस्त है, उसको सुनाना चाहते हैं और आपको सुनाना चाहते हैं। आप जो इतना रेडियो सुन रहा है सबको सुनाना चाहते
0: हैं। ओके ठीक है, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
5: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
6: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
5: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
7: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88 291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88 291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में?
2: क्यों, क्या हुआ है?
1: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
2: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
1: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
3: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
8: Now pick it up, pick it up.
9: Hello.
8: Now pick your phone up.
9: Hello.
8: Pick it up, pick it up.
9: Hello.
8: Now pick your phone up.
9: Hello.
10: Jab phone gende bajte hai to kehte hai hello.
11: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80 029 94 11। जी हाँ, 80 029 94 11। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो,
13: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
12: नमस्ते मैडम।
13: नमस्ते,
12: और बताइए
13: कैसे हैं आप?
12: बहुत बढ़िया, आप ना सुनाइए।
13: मेरा भी ठीक है, क्या हो रहा है अभी?
12: अभी तो पूछ रहे हैं, आपके पास फोन लगा रहे।
13: अच्छा, फिर बताएं गाना कौन सा सुनना है आपको?
12: गाना सुनना है वो पवन सिंह का।
13: जी, सॉन्ग बता दें।
12: सॉन्ग का नाम है धनी हो सब धन सहारे निभाते।
13: और ये गाना आप किसी को सुनाना चाहते हैं?
12: तो जितना रेडियो रिमझिम सुनने वाले बंदे हैं सबको, और साथ में आप भी।
13: जी
12: जी,
13: ओके, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: जी, बहुत आपको नमस्कार।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: पंचायत से।
0: अच्छा, कैसे हैं आप?
1: ठीक है, आपका प्रोग्राम सुने बहुत अच्छा लगा, जो आपकी आवाज बुलंद है।
0: जी धन्यवाद। और सब बताएं क्या हो रहा है?
1: अभी तो लेकर आ रहे थोड़ी टाइम में, थोड़ा देखते हैं, लग रहा है कि
0: तबीयत ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, थोड़ी थोड़ा।
0: अच्छा जी, क्या फरमाइश है आपकी?
1: स्वास्थ्य अभियान का जाना, मुझे स्वास्थ्य अभियान
0: क्या
1: स्वास्थ्य अभियान का सफाई कर्मचारी का।
0: जी जी, किसी को सुनाना चाहते हैं?
1: जितना भी लगे हैं, मुझे स्वास्थ्य अभियान से भारत वर्ष में इनको चाड़े को चेयरमैन के पश्चात यूनियन स्वास्थ्य और जितना ग्रामीण क्षेत्र से लगे और आपको।
0: ओके, फिर जाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ठीक है।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करें 87 8 94 18 7 44।
7: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
0: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
0: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने NH 27 बंजारी गोपालगंज।
0: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
8: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
10: Now pick it up, pick it up, pick it up.
11: Hello.
10: Now pick your phone up.
12: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: नमस्कार।
14: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
13: इसके लिए दिल से धन्यवाद है आपको, मैं बहुत अच्छा हूँ। अपना मेरे घर परिवार में रेडियो रंजन पूरा परिवार कैसे हैं आप लोग?
14: हम सब बढ़िया हैं। नाम बता दे अपना।
13: रामविलास प्रसाद कुशवाहा, कृष्णपुर बगहा, पूर्वी चंपारण से।
14: ओके,
13: तुम कैसा है उधर?
14: मौसम बढ़िया है अभी फिलहाल उधर।
13: जी, यहाँ पर भी सुबह में बारिश हुई है, मौसम बहुत सुहाना बना हुआ है इधर भी।
14: जी चलिए तो बढ़िया है।
13: जी
14: थैंक। क्या फरमाइश है आपकी?
13: फिल्म का नाम है जीना तेरी गली में, भोजपुरी सॉन्ग है और गाने का बोल है तू दीवानी है उतराजा।
14: अच्छा, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
13: जी सबसे पहले तो आपको सुनाना चाहता हूँ और दोस्त होंगे संजय, साजी, दीपक कुमार, दादी, रामचंद्र, मुखर्जी, मोहम्मद सलार जी, कंसराज जादू जी, अंचल कुमार जी, पारसनाथ कुशवाहा जी, नगीना प्रसाद कुशवाहा जी, धनलाल प्रसाद कुशवाहा जी, राजा बाबू, उस विकास अभय कुमार, सुदीश कुमार, अजय कुमार, आयुष कुमार, मौलू प्रसाद कुशवाहा जी, रविन्द्र प्रसाद कुशवाहा जी और गोपालगंज जिले के संतरा कुशवाहा जी, काजल जी, गुड़िया जी, नेहा जी, मुस्कान जी, उदिता जी, सुजीता जी, सुजमोहा जी, नवीन सिंह जी, जितेंद्र जख्मी जी, दिलीप राम जी, राम कुमार पांडे जी और अभी रेडियो रेंजिंग सुन रहे सभी श्रोता बंधु को सुनाना चाहता हूँ।
14: ओके फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रेंजिंग में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
13: जी। धन्यवाद।

0: हेलो
1: रेडियो रिमझिम
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: धन्यवाद बहन। और बहन जी आप कैसे हैं अभी?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: जी बहन जी हम भी बहुत बढ़िया है, स्वस्थ हैं, मस्त है और व्यस्त है बहन जी।
0: ओके, क्या नाम है आपका?
1: जी मैं ग्राम जुनवानी स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुरित रमेश साहू बोल रहा हूँ बहन जी।
0: ओके, और सब बढ़िया है ना?
1: और सब बढ़िया है बहन जी। इन दिनों क्या है, मैं खेती बाड़ी करता हूँ बहन जी, किसान हूँ।
0: ओके,
1: और इन दिनों मक्का की कटाई चल रही है बहन जी, और धान की कटाई भी हो रही है, और गेहूँ धान की कटाई, गेहूँ और चने की कटाई पहले से हो गई है।
0: हाँ, फिर बताएं आपको कौन सा गाना सुनना है?
1: जी बहन जी गाना सुनने से पहले बहन जी आप कौन बोल रही है? आपकी आवाज जो है बहुत ही मधुर, मनमोहक, मीठी, प्यारी और लाजवाब पेश कर सकती है बहन जी।
0: जी मेरा नाम भारती है और मैं रेडियो रिमझिम से बोल रही हूँ।
1: हाँ तो भारती जी आपके लिए दो पंक्ति है, दो लाइन की पंक्ति है, अगर इजाजत हो तो बोलूं।
0: जी बोलिए।
1: जी जिंदगी एक सफर है, जिंदगी एक सफर है, सफर सभी की चलती रहे। जिंदगी एक कारवा है, कारवा सभी की चलती रहे। जिंदगी एक झरोखा है, झरोखा जो है नदियों की तरह कल कल कल कल छल छल छल छल करके बहती रहे। और रेडियो रिमझिम में आवाज की दुनिया के बुलंद सितारे, प्यारी बहना भारती जी की आवाज जो है स्वर लहरी में, स्वर धारा में हमेशा बहती रहे। और हेलो रिमझिम का यह कारवां का सफर हमेशा चलती रहे, हमेशा चलती रहे, हमेशा चलती रहे बहन जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद बहन जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहन जी, तो मैं कुछ बोल दिया बहन जी।
0: जी
1: और आपके कुछ प्रशंसक श्रोता भाई बहन हैं बहन जी, इजाजत हो तो दो चार लोगों का नाम ले लूं बहन जी।
0: जी बोलिए।
1: जी हमारे सागर मध्य प्रदेश से हमारे प्रोफेसर चंद्रेश गौहर जी साहब है, जालौन उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव जी है, हमारे विजेंद्र भाई विश्वकर्मा जी है, दुल्हापुर यूपी से मुकेश कुमार कश्यप जी है बहन जी, और हमारे भारत बेगम वार्ड से भारत राम पटौती जी है, साकरा सोमनी से नारायण लाल साहू जी है, गणेश धाम परचुली से जितेंद्र दास मानिकपुरी जी है बहन जी, कन्या दमोह बालाघाट से हमारे आदरणीय झुरुआ राम साहू गुरु जी है, और डोंगरिया मलाखंड से मुन्ना लाल पाटले जी है बहन जी।
0: जी
1: और आर्यन रेडियो की बहुत ही प्यारी उद्घोषिका आरजे उद्घोषिका आप ही की तरह
0: जी,
1: हमारी बहना पूनम गौतम जी है, अगर आप भी सुनते होंगे बहन जी तो आप उसको जानते होंगे।
0: जी जी
1: है ना, तो बहन जी और इन दिनों गर्मी बहुत चरम पर है बहन जी।
0: जी गर्मी तो है,
1: और हो सके तो पशु पक्षियों के लिए अपने घर के सामने
0: जी, जी
1: पानी पानी भर के रखना चाहिए, ताकि वो बेजुबान जानवर जो है बहन जी वो उस पानी को वो पी करके अपना शीतलता प्रदान कर सके।
0: जी बिल्कुल।
1: और अपना सेहत का ख्याल अवश्य रखे बहन जी, क्योंकि जान है तो जहान।
0: जी बिल्कुल। फिर बताएं आपको कौन सा गाना सुनना है?
1: अब गीत तो ऐसा है बहन जी, एक मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गाना है बहन जी, है यार सुन यारी मेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी।
0: और ये गाना आप किसी को सुनाना चाहते हैं?
1: ये गाना तो सबसे पहले तो हमारी प्यारी बहन आरजे उद्घोषिका बहन भारती जी को हम डेडिकेट करना चाहेंगे, साथ ही साथ हमारे जितने भी अभी लिसनर श्रोता मित्रों का नाम लिया हूँ उनको भी डेडिकेट करना चाहेंगे, और साथ ही साथ हमारे एफएम रिमझिम के जितने भी सुनने वाले तमाम श्रोता मित्र हैं
0: जी,
1: भाई बहन है, उनको हम डेडिकेट करना चाहेंगे बहन जी, और साथ ही साथ हमारे रेडियो रिमझिम के जितने भी आर्य उद्घोषक भाई बहन है
0: ओके,
1: उनको भी हम डेडिकेट करना चाहेंगे भारती बहन जी।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
0: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
0: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
0: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
4: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403, 6200042403।
8: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
9: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
8: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत तनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
7: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
10: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
11: मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं भी बनूंगा।
12: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
10: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे,
12: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
10: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
13: Now pick it up,
14: hello.
13: Now pick your phone up,
14: hello.
13: Pick it up,
14: hello.
13: Now pick your phone up.
15: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
17: नमस्कार मैडम, मैं ललन पासवान बोल रहा हूँ।
16: जी जी।
14: बताएं क्या फरमाइश है आपकी।
16: क्रांति फिल्म का सुनना है गाना मुझे।
14: जी
16: क्रांति फिल्म का सुनना मुझे गाना। आपके बरस से मुझे भर दे रानी।
14: अच्छा और ये गाना आप किसी को सुनाना चाहते हैं?
16: जी मैं सभी श्रोताओं को सुनाना चाहता हूँ और आपको भी।
14: ओके तो ठीक है गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रिंगिंग में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सबके बरस।
1: हेलो
2: हेलो मैडम,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
2: हाँ हेलो मैडम,
1: क्या नाम है आपका?
2: प्रीति।
1: और आप कहाँ से हैं?
2: कोन्हा मोड़।
1: फिर बताएं कैसी हैं आप?
2: ठीक हैं, आप बताइए।
1: मैं भी ठीक हूँ। क्या हो रहा है अभी?
2: सोई हूँ। आपके पास कॉल लगने का इंतजार कर रही थी, सोमवार को, फिर बुधवार को, एकदम दिन याद करके रखी हूँ कि हाँ आपसे बात करना है।
1: फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी, बता दें।
2: आहो राजा।
1: ओके, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
2: आपको, सिर्फ आपको।
1: बिल्कुल, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रंजी में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क 99393965930।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे। सुनिए सुनिए सुनिए,
11: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
9: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
11: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
9: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो।
14: हेलो मैडम, नमस्कार।
13: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
14: जी, आपको भी साथ में बहुत बहुत शुक्रिया आप गाना सुनवाने की। आज पहला दिन है कि आपका हम प्रोग्राम सुने हैं रेडियो पे।
13: जी
14: हाँ, बहुत अच्छा लगा। हाँ, लास्ट में आप जो है अदनान सामी का जो कव्वाली एक सुनवाई है।
13: जी जी,
14: भर दो झोली है ना। और वो जो आप टोन में जो आप टोन में बोलती हो ना।
13: हाँ,
14: वो बहुत हमको भाता है, इतना अच्छा भाता है कि अब समय हो चुका है, ब्रेक का टाइम खत्म हो चुका है, ये आप बोलती हो ना, वो अच्छा लगता है। मैं अपने टाइम से हाजिर हूँ। हमको अच्छा लगा सुन के, है ना। हमको बहुत अच्छा लगा है आपको प्रोग्राम जो बना के आप डाली है रेडियो पे, सुना रही है आप।
13: हाँ,
14: बहुत अच्छा लगा है।
13: बहुत बहुत धन्यवाद।
14: हम मन्नान बोल रहे हैं कपूरथला से
13: जी।
14: आज कौन सा गाना सुनाइएगा मैडम?
13: बता दें आप कौन सा गाना सुनेंगे?
14: वो गाना सुना दिए झूठ बोले कौवा काटे
13: जी, बिल्कुल सुना देंगे। बताएं ये गाना किसको सुनाना चाहते हैं?
14: पहले तो मैडम आपको है ना, और एक बाबू नाम का है उनको सुनाना है, और एक बेनजीर है उनको सुनाना है, साबुन को सुनाना है।
13: और सब बढ़िया है ना? आप ठीक है ना?
14: हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बढ़िया है, आपकी दुआ से बहुत कुछ अच्छा है। अफल का बारी है बकरीद का हम लोग का
13: जी,
14: और उसी का तैयारी चल रहा है।
13: फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
14: ठीक है, थैंक यू।
15: झूठ

0: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, कैसी हैं आप?
1: अच्छा, मेरा बताए कैसे हैं? कुछ
0: मैं भी ठीक हूँ। फिर बताएं क्या हो रहा है? खाना
1: नहीं, आपका इंतजार हो रहा है, सब रिकॉर्डिंग चालू हो गया।
0: हो गया? ओके,
1: जी मैडम जी, बंजारा
0: और बताएं क्या फरमाइश है आपकी?
1: फिल्म का कभी आएगा मेरे बंजारा।
0: ओके, और ये गाना आप किसको डेडिकेट करना चाहती हैं?
1: सबसे पहले आपको जितना रेडियो आप देना है सब दोस्तों के साथ।
0: ओके ओके, ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रंग में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी मैडम जी, नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करें 87894 18744।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
6: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
10: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
10: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
11: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
12: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ, विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-097-06-575।
13: Now pick it up,
14: hello.
13: Now pick your phone up,
14: hello.
13: Pick it up,
14: hello.
13: Now pick your phone up,
14: hello.
15: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello.
16: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: हेलो,
18: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
17: जी नमस्कार।
18: नमस्कार
17: जी मैडम जी, क्या हाल है?
18: मेरा बढ़िया, आप अपना बताएं।
17: हम लोग का तो ठीक ही है
18: जी। क्या फरमाइश है आपकी, बताएं।
17: दिल है बेटा मूवी का गाना है
18: जी।
17: क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन,

0: और सबसे पहले सुनाना चाहता हूँ आपको, जितने रेडियो रेंजी में सभी लोग सुनेंगे
1: जी जी,
0: और हम लोग धनाओं से एक साथ मास्टर भी सुनेंगे, और हम लोग जितने रेडियो रोशन तिरंग में काम करते हैं, टेरर का काम हम लोग सभी लोग सुनते हैं। नौसाद भाई है, गिलानी भाई है, समीम हजाम है, साहिद मुखिया है, ये लोग सभी लोग सुनेंगे।
1: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस।
1: थैंक यू। कैसी हैं?
0: अच्छे हैं, आप अपना बताएं।
1: हम भी अच्छा, हम सीमान से बोल रहे हैं, नीलम।
0: अच्छा जी, तो बताएं फिर क्या हो रहा है?
1: कुछ नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही बैठे हुए हैं।
0: कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: हमको गाना सुनना है वो नहीं है, नया मेहमान जुड़े वाला का गाना नहीं है, करीना पांडे का नया मेहमान जुड़े वाला का
0: जी
1: वही वाला सुनना है।
0: और ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
1: आप सभी को, जितने लोग रेडियो रिंगन सुन रहे हैं उन सब।
0: ओके,
1: मैं हाथ तुम को सुनाना चाहती हूँ।
0: जी, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रिंगन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डिरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6052-62-112 पे।
6: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
7: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
8: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
11: Now pick it up, now pick your phone up. Pick it up,
12: hello.
11: Now pick your phone up.
13: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो।
15: हेलो, नमस्ते मैडम।
14: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
15: मैं मैडम हीरा सानी बोल रहा हूँ, संबलपुर ओडिशा से।
14: जी, कैसे हैं आप?
15: ठीक है मैडम, इधर अभी बहुत गर्मी चल रहा है।
14: अच्छा जी, गर्मी उधर है?
15: बहुत गर्मी है आपके तरफ, गोपालगंज में तो गर्मी नहीं होता होगा।
14: गर्मी होता है लेकिन अभी फिलहाल मौसम ठीक है।
15: अच्छा अच्छा, इधर तो बहुत 45 डिग्री होता है गर्मी।
14: हाँ, इधर भी बढ़ता है लेकिन अभी ठीक है।
15: ठीक है मैडम, तो
14: फिर बताएं गाना कौन सा सुनना है आपको?
15: दो आंखें 12 हाथ फिल्म का।
14: जी
15: हाँ, लता मंगेशकर का गाना है, तैया झूठों का 12 सरताज निकला।
14: अच्छा, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
15: अरे अपने दोस्तों लोगों को।
14: अच्छा, हाँ हाँ सुन रहे हैं।
15: मेरे दोस्त लोगों को भी सुनाना चाहता हूँ, और ये मेरा दोस्त है आपका गोपालगंज में ही है, अरविंद जायसवाल।
14: जी
15: हाँ, अरविंद जायसवाल, और यही सचिन तिवारी। ठीक है मैडम, और कहिए।
14: और सब बढ़िया, आप अपना बताएं।
15: बस यही चल रहा है, धंधा पानी मंदा है, अभी गर्मी का मौसम है मैडम
14: जी।
15: हाँ मेरा इलेक्ट्रिक का दुकान है।
14: हाँ
15: चल रहा है।
14: हाँ
15: ऐसे इधर बसर चल रहा है।
14: चलेगा अच्छे से चलेगा।
15: हाँ और मैडम हाँ ये कब सुनवाएंगे ये गीत?
14: रिकॉर्डिंग चालू है, थोड़े वक्त के बाद चला देंगे।
15: ठीक है मैडम ठीक है।
14: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
15: धन्यवाद धन्यवाद।

0: वेलकम हेलो माई चॉइस में।
1: मैं रमेश गुप्ता बिरला खा से बोल रहा हूँ।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बड़ा धूप लगल बा, बड़ा घाम भइल बा, छिया पसल बड़ी जा।
0: अच्छा जी, धूप भइल बा बहुत ज्यादा,
1: बड़ा घाम भइल बा। हवा बहते नीक है, छिया बैठल बनी है। गीत सुने के बा
0: जी बताए, कौन सा गाना सुने?
1: दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ।
0: अच्छा, और ये गाना क्यों सुना एक बार?
1: गाना सुनवाएंगे हाफिज अंसारी को
0: जी,
1: और साइकिल दुकान संदापुर सतीश जी को।
0: जी जी
1: जी, इन्हीं लोगों को।
0: ओके, फिर गाना प्ले करते नहीं, सुनत रहे इसके साथ। रेडियो में कॉल करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर।

0: बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
7: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
8: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
9: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87 894 18 744।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
10: Now pick it up,
11: hello.
10: Now pick your phone up,
11: hello.
10: Pick it up,
11: hello.
10: Now pick your phone up,
11: hello.
12: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
13: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80 029 94 911। जी हाँ, 80 029 94 911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो,
15: नमस्कार भारती जी, दिल से धन्यवाद।
14: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
15: आपको दिल से धन्यवाद मैम।
14: जी शुक्रिया,
15: बहुत दिनों से इंतजार था, आप सब सोचा चला दिए।
14: जी
15: और सब सुनाइए।
14: और सब बढ़िया, आप अपना बताइए।
15: बस हम भी काम पे हैं।
14: जी
15: टाइम हुआ तो रुक गए, रुक के एक बार कॉल लगाए तो दूसरा कॉल लगी है ना।
14: जी
15: और सब कैसा है मौसम?
14: मौसम अभी फिलहाल ठीक है।
15: बारिश
14: हुई क्या? मौसम कैसा है
15: इधर? तो बहुत गर्मी है, बहुत धूप निकल रही है। और नाश्ता पानी हो गया?
14: जी मेरा हो गया है, आपका?
15: हमारा तो 9 बजे ड्यूटी है ना, तो नाश्ता करके हम तो आते हैं।
14: अच्छा
15: अब चाय के टाइम हुआ, चाय का होगा।
14: ओके फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी?
15: आज सीमा सरगम के सीमा गुप्ता का है सॉन्ग।
14: जी
15: मारही के बांधे तो मार देना जान से, नजरिया के बांध से।
14: जी
15: सीमा गुप्ता का है।
14: हाँ हाँ
15: हाँ तो वही बजा दीजिए।
14: और ये गाना आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं?
15: पूरे सारे लिसनर जितने सुनने वाले हैं सब सुन लेंगे, हम तो पुराना लिसनर है ना।
14: हाँ जी
15: बहुत दिनों से इंतजार था कि कब भारती जी का थोड़ा शो सुने कैसा है। तो कल सुने हैं तो हाँ मैं बोला कि हाँ ठीक है ठीक है चलिए।
14: ठीक है फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
15: हाँ जी।

0: हेलो
1: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: करिश्मा कुमारी।
0: और कहाँ से हैं आप?
1: तीर्थ नारायण से
0: जी। कैसी हैं आप?
1: बढ़िया है, आपने बताइए।
0: मेरा भी ठीक है। फिर बताएं क्या हो रहा है?
1: कुछ भी नहीं, आपको कॉल लगा रहा है।
0: खाना हो गया?
1: हाँ, आपका हो गया
0: जी। फिर बताएं आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: हमको नीलकमल सिंह के बाद में गीत सुनना है।
0: और कौन सा सॉन्ग?
1: कोई भी बजा दीजिए।
0: आप अपनी पसंद नहीं बताएंगी?
1: व्यवसाय बजा दीजिए।
0: अच्छा, और ये गाना आप किसी को सुनाना चाहती हैं?
1: हाँ, सबसे पहले आपको, और जितना सुन रहे हैं लव रेडियो मुझको, आप मेरे गणेश जी सुनेंगे यार हम सुनेंगे।
0: ओके, चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू दीदी।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7146-164।
3: प्रसाद क्लिनिक,
4: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
3: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
4: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
1: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
2: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
1: तो देर मत कीजिए,
2: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
7: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
8: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
7: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
9: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
7: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
9: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99-55-94-94-53
7: और 90-97-61-60-02।
10: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
11: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
12: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।

0: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करत नी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने कॉलेज रोड गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्ते लागू।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
8: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88 291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88 291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

0: करना।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
4: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
3: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
4: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
3: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
4: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
5: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
3: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: सुनिए सुनिए सुनिए,
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
7: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
8: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जेजी शरण, MD फिजिशियन, अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको, जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज। और डॉक्टर जेजी शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
9: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
10: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
8: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
9: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
8: RR मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
9: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
8: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
9: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
8: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
9: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
8: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
9: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
10: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
11: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
8: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
9: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
8: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
8: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
9: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
8: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
9: कॉल करें 70705763100 या 70705042100, या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
12: हो गया बेटा, आ जाओ।

0: इतना बुरा।
1: अरे अभी तक ऐसे ही बैठी हो, कपड़े नहीं बदले? चलो जाएगा।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710-30992 या 97-65-65-750।
7: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
8: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
7: यहाँ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
7: संपर्क 99-393-65-930।
9: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
10: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
9: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
10: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
9: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
11: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
12: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
11: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
12: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डिरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
11: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
12: जानकारी है तो कॉल करें 62052-61112 पे।

0: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: ठक ठक।
0: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
1: अच्छा मिला ही नहीं।
0: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
0: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक की। एनडीए के घटक दल लोजपा रामविलास ने विधान परिषद चुनाव के लिए कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को बनाया उम्मीदवार। दिल्ली की एक अदालत ने साहिबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी करार दिया। और बिहार के वैभव सूर्यवंशी भारतीय सीनियर T20 क्रिकेट टीम में शामिल, टीम इंडिया के सबसे युवा क्रिकेटर बने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.5

0: कल भाजपा ने 4 और जदयू ने 4 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की थी। इधर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाए जाने को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि नामांकन में अभी समय बाकी है, इसलिए लोगों को इंतजार करना चाहिए।
1: अभी क्यों परेशानी है हड़बड़ी में? आप इंतजार कीजिए, परसों नॉमिनेशन होना है ना, नामांकन तो परसों है ना, अंतिम दिन। आज नामांकन समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए आपके सवाल के जवाब के लिए इंतजार।
0: गौरतलब है कि बिहार विधान परिषद के 9 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव जबकि 1 सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून तक निर्धारित है। उम्मीदवार 11 जून तक नामांकन वापस ले सकते हैं। इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन शाम को मतों की गिनती होगी। दिल्ली की राउज रेवेन्यू अदालत ने मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में उनकी पत्नी रेणु सिंह समेत अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। यह मामला 31 दिसंबर 2018 को न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई फायरिंग से जुड़ा है। दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित एक फार्म हाउस में पार्टी में हर्ष फायरिंग के दौरान डॉक्टर अर्चना गुप्ता के सिर में गोली लगी थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। फायरिंग का आरोप राजू कुमार सिंह पर लगा था। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। मंत्रालय के अनुसार अभियान के तहत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 7,00,000 किसान लाभान्वित हुए। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और 8,850 से अधिक व्यवहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। बिहार के वैभव सूर्यवंशी को भारतीय सीनियर टी20 क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। वैभव भारतीय टीम में चुने गए सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने 15 साल 71 दिन की उम्र में भारतीय टीम में जगह बनाई है। वैभव को जून जुलाई में आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले टी20 सीरीज के साथ साथ एशियन गेम्स के लिए चुना गया है। आइए जानते हैं वैभव सूर्यवंशी के क्रिकेट कैरियर के बारे में।
2: समस्तीपुर के ताजपुर से निकलकर भारतीय क्रिकेट के फलक पर सबसे चमकीले सितारे के रूप में उभरने वाले वैभव सूर्यवंशी ने केवल 12 वर्ष की उम्र में रणजी ट्रॉफी में पदार्पण किया था। यूथ टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केवल 58 गेंद में शतक जड़कर उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी। आईपीएल 2026 वैभव के क्रिकेट करियर का गोल्डन टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ। इस सीजन में उन्होंने सबसे अधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप का अवार्ड जीता। साथ ही वैभव ने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, सुपर स्ट्राइकर और सबसे ज्यादा छक्के लगाने का अवार्ड भी अपने नाम किया। आईपीएल से ठीक पहले आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 में वैभव खिताबी जीत के नायक रहे। वैभव सूर्यवंशी का कैरियर इस समय भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक दौर में है। उन्होंने टी20 क्रिकेट में आक्रामक बल्लेबाजी का ऐसा उदाहरण पेश किया है जो पहले कभी नहीं देखा गया। अब पूरी दुनिया की नजरें सीनियर इंटरक्रिकेट में उनके डेब्यू पर टिकी है। समाचार कक्ष से संजय सिंह।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम में शामिल होने पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रमंडल यूथ चेस चैंपियनशिप अंडर 18 के विजेता रेयान मोहम्मद को 22,50,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। श्री चौधरी ने रेयान अहमद को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजगीर में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को इस वर्ष के अंत तक पूरा करने का निर्देश दिया है। पटना में खेल विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने मोइनुल्लक स्टेडियम के पुनर्विकास काम में तेजी लाने को कहा। श्री चौधरी ने जिला, प्रखंड और पंचायत

स्तर पर खेल अवसंरचना के विकास और खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत युवा संगम के छठे चरण में राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित 50 छात्र छात्राओं को पंजाब के शैक्षणिक और सांस्कृतिक दौरे के लिए रवाना किया गया। IIT पटना में आयोजित फ्लैग ऑफ समारोह में गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने छात्रों को रवाना किया। श्री कुमार ने कहा कि यह कार्यक्रम विविधता में एकता का संदेश देता है।
1: हमारे बिहार के 50 छात्र छात्राएं चयनित होकर पंजाब में जा रहे हैं। हमारे बिहार की संस्कृति और पंजाब की संस्कृति को एकजुट करने की भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का ये मिशन है। एक राज्य से दूसरे राज्य के छात्र आपस में अन्य राज्यों में जाकर वहाँ अपने राज्यों का साझा करें।
0: इस अवसर पर IIT पटना के निदेशक TN सिंह ने कहा कि युवा संगम राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।
2: एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर बिहार के 50 के करीब विद्यार्थी छात्र और छात्राएं यहाँ से पंजाब की यात्रा पे निकल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत सारे विद्यार्थी पहली बार पंजाब जा रहे हैं, तो उनको ये अवसर मिलेगा कि वो देख पाए, समझ पाए और जो किताबों में पढ़े हैं उससे अंतर पाए कि क्या अंतर है। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि लोग कहते हैं कि या तो भ्रमण करिए तब ज्ञान होता है या बहुत ज्यादा पढ़िए तब ज्ञान होता है।
0: CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। प्रदेश के कई हिस्सों में देर रात मूसलाधार बारिश हुई है। पूर्वी चंपारण के पताही में सबसे अधिक 74.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं पूर्णिया के रुपौली में 71.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पटना, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, भागलपुर और कटिहार समेत कई जिलों में भी बारिश हुई है। बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मुंगेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के लड़ैयाटार थाना क्षेत्र के चतकुटिया गांव में वज्रपात की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की चेतावनी जारी की है।
3: राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों के कुछ स्थानों पर, दक्षिण बिहार एवं उत्तर मध्य भाग के जिलों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: सुपौल जिले के भीमपुर थाना क्षेत्र में चलाए गए वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने एक चार पहिया वाहन से 240 लीटर शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं शेखपुरा जिले के सिराड़ी थाना क्षेत्र से पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक तस्कर को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया। दूसरी तरफ अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब और प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर नगर परिषद के मुख्य पार्षद प्रभु शंकर के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उन पर नामांकन पत्र में जानकारी छुपाने का आरोप है। बेगूसराय के सिमरिया गंगा घाट पर स्नान के दौरान डूबने से एक ही परिवार के दो महिलाओं की मौत हो गई। दोनों दरभंगा जिले की रहने वाली थीं। पश्चिम चंपारण जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुष्टा पटजिरवा पंचायत में कंडक नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। शेखपुरा जिले के सदर प्रखंड के 5 गांवों मंदना, कृपा बिखा, अमानतपुर, सोहदी और विमान का चयन मुकदमा मुक्त गांव के तहत किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने इस संबंध में राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को प्रस्ताव भेजा है। मधुबनी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित मेगा कृषि ऋण आउटरीच कैंप में 200 से अधिक लाभुकों के बीच 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का ऋण वितरित किया गया। परिवहन विभाग द्वारा कैमूर में पिंक सिटी बस सेवा की शुरुआत की गई। जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह ने दो पिंक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत मुंगेर जिले के विभिन्न गांवों में किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक की। एनडीए के घटक दल लोजपा रामविलास ने विधान परिषद चुनाव के लिए कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को बनाया उम्मीदवार। दिल्ली की एक अदालत ने साहिबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी करार दिया। और बिहार के वैभव सूर्यवंशी भारतीय सीनियर T20 क्रिकेट टीम में शामिल टीम इंडिया के सबसे युवा क्रिकेटर बने। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: अचानक दौरा पड़ा और सारा माहौल अंग्रेजी में ट्रांसलेट होने लगा। प्योर अंग्रेजी।
5: ओह सीरियस, वेरी सीरियस। नर्स दिखलाइए।
4: नर्स घर पर है।
5: व्हाट?
4: आई मीन बीवी घर पर है। दरअसल डॉक्टर दौरा मुझे नहीं, मेरी बीवी को पड़ा है। शी हैज बिकम वायलेंट टू एवरीबॉडी। काटने को दौड़ रही है।
5: भौंकती भी है?
4: फिलहाल नहीं, हो सकता आगे चलकर पंजे भी मारने लगे। जल्दी कीजिए डॉक्टर प्लीज, मैं सिर्फ निहायत खतरनाक हालत में अपनी सिस्टर के भरोसे छोड़कर आया हूँ।
5: ठहरिए ठहरिए, केस हिस्ट्री हो गई। आप केस की ज्योग्राफी भी बताइए। जी हाँ, बहुत जरूरी है।
4: आप चलिए तो डॉक्टर, मैं ज्योग्राफी क्या केस की इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स तक बता दूंगा। प्लीज डॉक्टर,
5: केस हाथ में लेने से पहले उसकी ज्योग्राफी जानना निहायत जरूरी है मिस्टर कुमार। इससे औजार साथ ले चलने में काफी मदद मिलेगी।
4: आप डॉक्टर नहीं है, कारपेंटर है। प्लीज डॉक्टर, औजार हथियार छोड़िए, मुझे बीवी की अलमारी नहीं बनवानी, इलाज कराना है।
5: ज्योग्राफी बहुत जरूरी है।
4: तो यूं समझ लीजिए डॉक्टर कि कपड़े तब्दील करके मेरी बीवी ने हाई हील सैंडल पहना।
5: करेक्ट।
4: जिसकी हील का एंगल 22.5 डिग्री NW है। फिर उसने कोट पहना जिसके बटनों का रेडियस 2.25 सेंटीमीटर है। हमें पहले घर से 1 किलोमीटर साउथ वेस्ट मंदिर जाना था, फिर सड़क से 47 डिग्री कर्व लेकर बाजार जाना था जो समंदर की सतह से 1200 फीट ऊपर स्थित है और जहाँ पसीना भरी हवाएं चाड़े में भी चलती हैं। और कुछ?
5: शाबाश शाबाश, कहते चलो। हाँ, कहते चलो।
4: अभी मैं घर के दरवाजे को ताला लगा ही रहा था।
5: हाँ, हाँ।
4: कि अचानक मेरी सीधी सादी घरेलू टाइप की बीवी पर दौरा पड़ा और वो कमबख्त सब कुछ अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने लगी। बोली,
6: हम कैबरे देखने चल रहे हैं ना?
4: और क्या? क्या कैबरे? रामकली, ये तुम क्या और फॉल बक रही हो?
6: देखो स्वीट हार्ट, जब से हम हॉलीवुड से लौटे हैं तब से इतने बिजी रहे कि कैबरिया डिनर पर भी नहीं जा सके। मैं अपने शूटिंग प्रोग्राम में बिजी रही और तुम शिकार।
4: अरे ये तुझे क्या हो गया रामकली, तेरे बाप दादे कभी फिल्म कंपनी में नहीं रहे और ना ही मैंने कभी शिकार के नाम पर खटमल तक मारा है।
7: भैया ये मेरी भाभी को क्या हो गया? भैया
4: समझ में नहीं,
7: अभी अच्छी भली चौकी में साग छौंक रही थी, अचानक क्या हो गया?
4: अरे लगता है साग छौंकते वक्त कड़वे तेल की गैस चढ़ गई इसके दिमाग को। लौटा रामकली, हिंदी में लौटा।
6: Shut up, you brute.
4: जो?
6: ये लड़की कौन है? Your girlfriend.
4: अरे तेरा सत्यानाश है रामकली, ये तो क्या बोल रही है? अरे तेरी ननद है, ननद है, मेरी सगी बहन नानू।
6: ओ लवी, इंग्लिश में समझाओ ना। हम तुम्हारा डैम ननद फनंद कुछ नहीं समझते। कम ऑन स्वीटी।
7: बाप रे, भैया ये भाभी को कैसा दौरा पड़ा है?
4: अब देर करना ठीक नहीं है नू, नहीं तो डिक्शनरी खत्म होते तक ये चल बसेगी। ठीक, तू इसे संभाल, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। दौरा भी जारी है डॉक्टर।
5: मिसेस कुमार, मिसेस कुमार नमस्ते।
6: ओ हेलो डॉक, हाउ आर यू? ठीक से कब लौटे?
4: क्या
6: याद है ना कि न्यूयॉर्क में तुम डॉक्टरी शुरू करने से पहले भेड़े चराया करते थे?
5: भेड़े न्यूयॉर्क? बाप रे बाप, वेरी सीरियस।
6: तुम हमको भूल गए डॉक, तुम हॉलीवुड आए थे ना, हमारा तुम्हारा लव अफेयर भी चला था, फिर कुछ दिनों के लिए तुम पागल हो गए थे। हरी पत्तियां घास खा लेते।
5: लव अफेयर? बाबा रे, मेरी वाइफ सुन ले तो कितमास कर जाए। हम पागल हो गए थे, घास खाते थे। मिस्टर कुमार, शी इज वेरी सीरियस।
6: आओ डॉक्टर, हम ट्विस्ट करें। आओ भी, बरसों बाद मिले हैं। याद है ना, तुम यूएनओ की बिल्डिंग के सामने रहते थे।
5: क्या कहा?
6: मैं भी वही थी।
8: अरे साहब झूठ बोल रही है डॉक्टर, यूएनओ नहीं, ये उन्नाव की रहने वाली है। इसका बाप आज भी कचहरी में नकल नवीस है।
5: करेक्ट।
8: ये आज जमाते पड़ी है। सही कह रहा हूँ डॉक्टर?
6: आई से यू शट अप डॉक्टर। डॉक्टर मेरी पिछड़ी हुई मोहब्बत है। कम ऑन, लेट्स सेलिब्रेट डार्लिंग। डॉक के लिए जरा शैंपेन तो लाना।
8: अभी लाता हूं।
6: रेमी केली की शूटिंग आज कैंसल।
5: रेमी केली? सारा केस इंग्लिश में है। मिस्टर कुमार, मैं खुद नर्वस हुआ जा रहा हूँ। पानी प्लीज।
8: डॉक्टर, इसका नाम रेमी केली नहीं, रामकली है।
5: यस,
8: डरो मत डॉक्टर, अपने औजार निकालो। मेरी रामकली लौटा, इतने दिमाग पर कैसी बिना सोडे की चढ़ी है। इसे देखो डॉग, प्लीज।
6: आओ ना डॉग, लेट्स ट्विस्ट, कम ऑन।
5: मर गया
8: डॉक्टर,
5: ये तो मेरी तरफ बढ़ रही है। मैं चलता हूँ। इसके सिर पर ठंडा पानी डालो और कपड़े भी इसके ढीले कर दो। और हाँ, तो हवा आने को खिड़की खोल दो।
8: आपके औजारों में थैला नहीं रहते डॉक्टर,
5: दवा खाने में पहुंचा
8: दीजिए। ओफो, क्या करूं, ये अनु भी डर के मारे ना जाने कहां चली गई। देख मान जा रामकली, है देख, बोनस के सारे पैसे ले ले, कोट सैंडल शॉल सब उतार दे।
5: हाँ हाँ, शाबाश है। अब लेट जा, आराम कर, है मैं खिड़की खोल देता हूँ। शाबाश।
6: सुनो।
5: हाँ, कैबरे चलेंगे, शैंपेन भी लाता हूँ।
6: क्या कैबरे? शैंपेन? हाय राम, तुम दारू भी पीने लगे?
5: क्या
6: बोनस मिलते ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या? हराम, हनुमान जी मेरी रक्षा करो, ये न क्या हो गया।
5: लौटाई लौटाई रामकली, देख अब तो तू ठीक है ना, है? तुझे क्या हो गया था रामकली?
6: मुझे क्या हो गया था, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ।
5: ठीक,
6: यूं ही जरा सा सिर चकराने लगा था चूल्हे की गर्मी से। अरे, हम लोग बाजार जा रहे थे ना। अनु भी कहाँ है? चलो ना जल्दी, नहीं तो सारी दुकानें बंद हो जाएंगी।
5: चलो, अनु और पप्पू पड़ोस में होंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है, तू अच्छी हो गई। देख पहले मंदिर चलेंगे, हैं? ये कोट पहन ले। ठीक, आओ चले, ताला चाबी उठा।
6: डार्लिंग माय लवली कुमार।
8: रामकली, फिर चली गई रामकली। अरे ये तू कैसा डबल रोल कर रही है, अच्छी बली हो गई थी, अभी फिर ट्रांसलेशन करने लगी।
6: सुनो हनी, आज हम क्लब में डिनर में क्या लेंगे?
8: पांच जूते और हुक्के का पानी। मैं कहता हूँ रामकली, ये कौन सी करंट रह रहकर तुझ में दौड़ जाती है।
6: कम ऑन, लेट्स वॉल्स।
8: मर गया।
9: दम मारो दम, भूतनाथ बोले बम बम बम। आ गए स्वामी, ओझा धर पटक आ गए। भूत चुड़ैल पेट आत्मा का पूर्ण पलायन। बोल बोल डंकनी, तू किधर से आई है?
8: आपकी तारीफ।
9: जितनी भी करो कम है। बम बम बम जय काली, बकरा बजाए ताली। मंगाओ लाल मिर्चें, सफेद कौवे की चोंच। अरे पुराना जूता अभी छींकने लगेगी।
6: डार्लिंग, हाउ इज दिस चिंपैंजी? हमारी नई फिल्म का एक्स्ट्रा है क्या? ओह, इट्स अ फाइन मेकअप।
9: प्यार मोहब्बत मठा रही है बच्चा। सफेद कौवे की चोंच का धुआं देते हैं अभी। जा कन्या जा, सामग्री ले आओ।
7: भैया, ये पिछली गली की ओझा है।
9: हाँ,
7: वर्मा आंटी ने भेजा है। भाभी के सिर से चुड़ैल पाल। मैं अभी मरती
9: हूँ। दम मारो दम, बैठ जा पालती मार कर। भोले ना तभी तेरी अंग्रेजी उतार देते हैं। ओम नुम नुम नुम नुम नुम, बिना पासपोर्ट भागती नजर आएगी।
6: छोड़ो भी डालिंग इस मंकी को, कम ऑन। हम पॉप म्यूजिक का एलपी रिकॉर्ड सुने। आओ ना।
9: समझ गया बच्चा, समझ गया। बम बम बम बम बम बम बम, अंग्रेजी गायिका की चॉयल मालूम होती है।
5: हे भगवान,
4: हिंदी गाने गाती तो रेडियो का ही खर्च बच जाता। ओझा जी, ये हिंदी में कन्वर्ट नहीं हो सकती।
9: घबराओ मत बच्चा, अभी ध्रुपद धमाल भी सुनाएगी। माई से तानपुरे की भस्म थमाऊंगा, मिर्च की धुनी दो।
10: You rascal, मैं तेरी चुटिया का एक लोड़ा दूंगी। जा जा, हमारा गन तो लाना। I will shoot him.
4: क्या हो रहा है?
9: बना घंटे शक्तियाँ हो रही हैं। मारो मत। मैं भी कहूँगी। और भगलोन का बच्चा नहीं बनाता
10: हूँ। Oh, shut up.
4: तुम्हें तो हो।
9: इस पर मेरी प्रेतिक आया बच्चा। अंग्रेजी ढंग से उतार नहीं होगी। मैं गमछा धोती उतार कर छूट पहन कर आता हूँ।
4: क्या करूं, कहां जाऊं? रामकली लौटा।
6: कम ऑन डार्लिंग, हाँ अपनी कार में घूमने चले।
4: ओ मत भूल रामकली की अपनी साइकिल भी पंचर पड़ी है। ये कार कहां से तेरे सिर पर सवार हो गई?
7: भैया ओझा जी कहते हैं कि विदेशी चुड़ैल है।
4: अरे विदेशी कहां से आई, अपने घर में सब कुछ देसी है, देसी घी को छोड़कर। ठहरनु मैं सोचता। अनु मिल गया।
7: क्या मिल गया भैया?
4: मिल गया अनु, मिल गया। तू झटपट हिम्मत करके इसका कोट उतार दे। शाबाश, पकड़। मैं भी तेरी मदद करता हूँ। खींच आतिन घसीट। देख उमने लगी। रामकली।
6: अरे अनु बीबी, हम लोग अभी यही हैं, मंदिर में गए। आखिर बात क्या है?
4: मैं गैराज से कार निकालने जा रहा हूँ।
6: हराम अनु बीबी, ये तेरे भैया को क्या हो गया? कैसे बैग की बातें कर रहे हैं? मर गई, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ कोई।
7: मगर भाभी, भूत तो तुम्हारे सर चढ़कर बोल रहा था।
6: भूत? हाँ, कैसा भूत?
4: कैसा भूत? डार्लिंग, डियर, स्वीट हनी, इस कोट का भूत। कम पैसों में ये फॉरेन का पुराना माल फुटपाथ से खरीद लाया, सोचा करीब के चाड़े कट जाएंगे। मुझे क्या मालूम था कि पुराने कोट की गर्मी इस कदर चढ़ जाएगी कि एक ही छलांग में ये हॉलीवुड जा पहुंचेगी। ओ डियर, लेट्स वॉल।
7: चुप भी रहो जी, शर्म है, सब बेच खाइए क्या? अन्नू बीबी का तो कुछ लिहाज करो।
6: मैं क्या करूँ, आज पहली बार ये कोट पहना। और
7: भैया, इस कोट को कहीं दूर फेंकाओ, मेरी अच्छी भली देसी भाभी विदेशी चोंच में बोलने लगती है।
4: चलो अच्छा हुआ, नई नई बातें तो मालूम हो गई। डॉक्टर रतन सिंह पहले भेड़ चराते थे, 6 महीने पागल भी रहे, हरी पत्तियां और घास चरते रहे। क्या बात कही है।
6: हायरा मैं मर गई, मैंने ये सब कुछ रतन सिंह डॉक्टर से कहा।
4: मैंने कहा?
6: मैं माफी मांगने जा रही हूँ, मेरे बाबूजी के बड़े अच्छे दोस्त है।
7: मैं कहती हूँ भैया, तुम ये कोट फौरन फेंकाओ, नहीं तो अगली बार भाभी सारे मोहल्ले को घास चरा देगी।
4: अनु, ये कोट इसी घर में रहेगा। ये ले, मैंने इसे बात से काफी ऊंचा टांग दिया है, इससे हमें फायदा है।
7: सो कैसी भैया?
4: अरे सीधी सी बात है, हमारा पप्पू इंग्लिश में जरा वीक है, मास्टर का खर्च कम हो गया। तेरी भाभी को कोट पहना दिया करेंगे बस, वो पप्पू के टीचर तक को इंग्लिश पढ़ा दिया करेंगे। इस कोट के सहारे मेरी इंग्लिश ड्राफ्टिंग भी सुधर जाएगी।
6: मैं कहती हूँ तो तुम जो भी रहोगे।

0: रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
4: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
6: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
4: तो देर मत कीजिए,
6: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
11: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ, विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
12: दुनिया जहान में हम बात करेंगे, क्या हमें चांद पर मिनरल्स खोजने चाहिए? स्वागत है आपका दुनिया जहान में, मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश, दुनिया की

0: नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम ने एक बड़ा मील का पत्थर पार कर लिया है। इससे मनुष्यों को दोबारा चांद पर और आगे मंगल ग्रह तक ले जाने की मंजिल नजदीक आ सकती है। नासा के इस अभियान का मकसद 1960 के दशक में अपोलो अभियान को दोहराना नहीं था, बल्कि इस बार अमेरिका चांद पर स्थायी अड्डा बनाने की योजना बना रहा है। चीन भी 2030 तक चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने की योजना बना रहा है। इस दिशा में उसने एक बड़ा कदम उठाते हुए चांद के सुदूर हिस्से पर एक रोबोट को उतारने में सफलता हासिल कर ली है। अंतरिक्ष की इस रेस में कई देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य केवल शोध कार्य नहीं है, चांद पर ऐसे कई संसाधन हैं जिनकी मदद से मनुष्य अंतरिक्ष में जिंदा रह सकता है और जिनका धरती पर भी बड़ा इस्तेमाल हो सकता है। चांद की सतह पर दुर्लभ हीलियम-3 उपलब्ध है, जिसके इस्तेमाल से भविष्य में परमाणु ऊर्जा बनाई जा सकती है। इसलिए हम यही जानने की कोशिश करेंगे, क्या हमें चांद पर मिनरल्स खोजने चाहिए।
1: पार्ट 1, चांद का वरदान।
0: हमारे पहले एक्सपर्ट डॉक्टर डिलन मैकेसेल नॉर्वेजियन जियोटेक्निकल इंस्टीट्यूट में प्रिंसिपल जियोफिजिसिस्ट हैं। उनकी राय है कि चांद धरती के सबसे करीब एक ऐसी जगह है जहां से पृथ्वी पर जीवन के फलने फूलने के लिए कई संसाधन मिल सकते हैं। वहीं चांद ब्रह्मांड के अरबों वर्षों के प्रभाव का रिकॉर्ड भी है।
2: अंतरिक्ष से गिरने वाले उल्कापिंड और पत्थर चांद पर जलकर भस्म नहीं होते, बल्कि उसकी सतह पर टकराकर बिखर जाते हैं। चांद की जमीन पर कई रासायनिक तत्व हैं, मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और सिलिकेट, जिनके इस्तेमाल से एल्यूमिनियम और टाइटेनियम जैसे कई धातु बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा वहां कई ऐसे दुर्लभ खनिज हैं जिनका आधुनिक टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है।
0: इन दुर्लभ खनिजों या रेयर अर्थ मटेरियल में हीलियम-3 भी शामिल है, जिसकी ओर दुनिया की नजरें टिकी हैं।
2: हीलियम-3 सामान्य हीलियम से कुछ भिन्न होता है। इसका इस्तेमाल शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटरों को ठंडा रखने के अलावा कई चीजों के उत्पादन में भी होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका इस्तेमाल स्वच्छ परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए भी हो सकता है, जिसमें दुनिया की बड़ी रुचि है।
0: इस दुर्लभ संसाधन को हासिल करने के लिए रेस तो शुरू हो गई है, लेकिन क्या चांद पर इतना हीलियम है कि इन प्रयासों को जायज ठहराया जा सके? डॉक्टर डिलन कहते हैं कि चांद की सतह की जो तस्वीरें मिली हैं, वो इतनी साफ नहीं है कि वहां मौजूद हीलियम की मात्रा का सही सही अनुमान लगाया जा सके। इसके लिए वहां मशीनें और उपकरण ले जाकर जानकारी इकट्ठी करनी होगी। पर क्या चांद के संसाधनों के बल पर वहां मनुष्य जिंदा रह सकता है? डॉक्टर डिलन कहते हैं कि इसके लिए वहां पृथ्वी से पानी, ऑक्सीजन और खाद्य सामग्री ले जानी पड़ेगी, जो काफी महंगी प्रक्रिया है। साथ ही वहां बस्ती बसाने के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करना होगा। दरअसल चांद का जो हिस्सा हमेशा अंधकार में रहता है, उस क्षेत्र में बर्फ है, लेकिन उसमें अन्य खनिज घुले हुए हैं। हालांकि उसके भी इस्तेमाल की संभावनाएं हैं।
3: From a resource perspective, if we can access water in the form of ice,
2: इस बर्फ से इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग किया जा सकता है, और इसके बाद इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इस्तेमाल रॉकेट के लिए ईंधन बनाने में हो सकता है।
0: चांद पर उपलब्ध टाइटेनियम और ईंधन के अन्य स्रोतों की मौजूदगी के इस्तेमाल से वहां से मंगल ग्रह की ओर उड़ान भरने या अंतरिक्ष में दूर तक पहुंचने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर या अड्डे बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये चिंता का विषय भी है।
1: पार्ट 2, नाजुक सीमा।
0: हमारे दूसरे एक्सपर्ट डॉक्टर जस्टिन हॉलकॉम्ब अमेरिका की कैंसास यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिकल सर्वे में असिस्टेंट रिसर्च प्रोफेसर हैं। वो अंतरिक्ष की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने वाली एक इंटरनेशनल कमेटी के सदस्य भी हैं। वो कहते हैं कि फिलहाल अंतरिक्ष की रेस के दो मकसद हैं।
4: There's actually another space race happening. Should the moon be used for?
5: कई देश और निजी कंपनियां इस रेस में शामिल हैं। उनका एक उद्देश्य वैज्ञानिक शोध है और दूसरा चांद के संसाधनों से आर्थिक लाभ कमाना। इसके बीच संतुलन तो बनाया जा सकता है, लेकिन मुझे चिंता है कि इसमें वैज्ञानिक शोध पिछड़ जाएगा और आर्थिक दोहन की गतिविधियाँ हावी हो जाएंगी।
0: चांद की सतह में ब्रह्मांड के अरबों साल पुराने सबूत दबे हैं। इसलिए सवाल ये है कि क्या हमें चांद की सतह का संरक्षण करके उन सबूतों का अध्ययन करना चाहिए ताकि हम सौर मंडल को बेहतर तरीके से समझ सकें। अगर वहाँ खनन होता है तो कई सबूत हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। वो याद दिलाते हैं कि आर्कटिक और अंटार्कटिका में ध्रुवीय क्षेत्रों के अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रयोगशालाएं लगाई गई हैं और रिसर्च भी की गई है, लेकिन चांद और अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए इस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझी नीतियों पर कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। इस रेस में कई देश और सैकड़ों कंपनियां शामिल हैं, पर सवाल है कि इस पर नियंत्रण या प्रभाव किसका है।
3: Normally, immediately, I'd say government, but part of the intricacy of
5: आमतौर पर हम कहेंगे कि देश की सरकारों का, लेकिन स्पेस रेस की सच्चाई ये है कि अब इसमें शामिल निजी कंपनियों की शक्ति और प्रभाव पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। मिसाल के तौर पर चीन नहीं बल्कि 5 कंपनियां 2,00,000 से ज्यादा सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ने की योजना बना रही हैं। चांद पर खोज और संसाधनों के दोहन के अभियान को वही आगे बढ़ा रही हैं।
0: एक मुद्दा और भी है, चांद अब मानवीय गतिविधियों के इतिहास का एक रिकॉर्ड भी बन चुका है। अमेरिका के अपोलो मिशन के उतरने की जगह के अलावा वहां कई अंतरिक्ष उपकरण पीछे छूट गए हैं। अंतरिक्ष यात्री वहां कई चीजें पीछे छोड़ आए हैं, क्या उनका संरक्षण भी जरूरी नहीं है? डॉक्टर जस्टिन कहते हैं कि हमने अफ्रीका से दूसरे देशों में लोगों के स्थानांतरण और गतिविधियों के सबूत संजो कर रखे हैं क्योंकि वो हमारे इतिहास का हिस्सा हैं। उसी तरह चांद पर छूटे उपकरण, रोवर के पहियों के निशान, वहां की सतह पर की गई ड्रिलिंग और दूसरी चीजें मनुष्य की अंतरिक्ष और चांद पर खोज के लिए उठाए गए कदमों के सबूत हैं, जिन्हें संजोया जाना जरूरी है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अगर चांद पर बड़े स्तर पर खनन शुरू हुआ तो उसके पर्यावरण पर क्या असर होगा?
3: Is there a concern that our rapid interest in moon mining can lead to a destruction?
5: निश्चित ही ये चिंता का विषय है। हम देख रहे हैं कि पृथ्वी पर खनन की गतिविधियां बेलगाम होती चली गई हैं। अभी तक इस बात का आकलन नहीं किया गया है कि वहां पर बड़े स्तर पर खनन के क्या परिणाम हो सकते हैं। इसका आकलन और अध्ययन किए बिना चांद पर खनन नहीं किया जाना चाहिए। इन चिंताओं का समाधान होने तक खनन की गतिविधियों को धीमा रखा जाना चाहिए, मगर कंपनियों को वैज्ञानिक शोध और जानकारी की कोई खास परवाह नहीं है।
1: पार्ट 3, स्पेस डिप्लोमेसी।
0: हमारे तीसरे एक्सपर्ट प्रोफेसर थॉमस जरबुकन ज्यूरिख स्थित स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ETH स्पेस विभाग के निदेशक हैं, साथ ही अंतरिक्ष उद्योग से जुड़ी कई निजी कंपनियों के बोर्ड मेंबर भी हैं। उनकी राय है कि सर्वमान्य नियमों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अभाव में अंतरिक्ष के मामलों में टकराव पैदा होना निश्चित है।
6: The Cold War comes to mind in the Apollo programs that were really a demonstration.
7: ये स्थिति हमें शीत युद्ध के दौर की याद दिलाती है, जब अपोलो अभियान के माध्यम से अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे पर हथियार ताने बिना अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन कर रहे थे। अब हालात बदल गए हैं, अब बड़ी ताकतें चांद पर पहुंचकर केवल अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं करना चाहती बल्कि वहां स्थायी तौर पर टिकना चाहती है। अगर हम चांद से स्वच्छ ऊर्जा के लिए आवश्यक संसाधन पृथ्वी पर लाने में कामयाब हो गए तो बाजार का कायापलट हो जाएगा, धन कमाने के लिए स्रोत और आर्थिक विकास के लिए नए रास्ते खुलेंगे।
0: प्रोफेसर थॉमस के मुताबिक अंतरिक्ष में खोज और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका सबसे आगे है, लेकिन कई दूसरे देश भी इस क्षेत्र में काफी तरक्की कर चुके हैं।
6: चाइना, which is largely state and government focused,
7: चीन की सरकार, सेना और वहाँ की निजी कंपनियां इस क्षेत्र में आगे निकलने के लिए कई कदम उठा रही है। वहीं भारत ने भी इस दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। भारत ने चांद पर रोवर उतारा है और अंतरिक्ष में रॉकेट प्रक्षेपण की बड़ी काबिलियत हासिल कर ली है। जापान और यूरोप ने भी इस क्षेत्र में काफी तरक्की की है।
0: अंतरिक्ष अभियानों के लिए केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा काफी नहीं है बल्कि बड़े पैमाने पर आर्थिक निवेश और राजनीतिक इच्छा शक्ति भी जरूरी है। जिन देशों के पास ये है वो इस रेस में आगे निकल रहे हैं। प्रोफेसर थॉमस इसकी मिसाल देते हुए कहते हैं कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में अमेरिका ने तय किया था कि नासा निजी कंपनियों को अंतरिक्ष अभियान में शामिल करे, उन्हें तकनीकी मदद दे। बाद में ओबामा और ट्रंप ने भी ये नीति जारी रखी जिसके चलते वहाँ कई निजी कंपनियां इस क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाने लगी हैं। कई मायने में ये औपनिवेशिक अभियानों के दौर की याद भी दिलाता है। जब सरकारें निजी कंपनियों के साथ मिलकर भारत, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका समेत कई क्षेत्रों में आर्थिक दोहन के लिए अपनी कॉलोनी बनाने में जुट गई थी। मगर इस बार अनिश्चितता अधिक है, क्योंकि किसी को साफ तौर से नहीं मालूम कि वहां कितनी मात्रा में संसाधन है और उन्हें धरती पर लाना कितना किफायती होगा।
6: The moon has become much more interesting for militaries.
7: सेनाओं के लिए चांद के संसाधन महत्वपूर्ण हो गए हैं। चांद पर एक दर्जन से अधिक स्थानों पर खनन हो सकता है। इन संसाधनों से कई देशों और उनकी सेना की ताकत बढ़ सकती है, इसीलिए वो हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं।
1: पार्ट 4, अंतरिक्ष में वकील।
0: हमारी चौथी एक्सपर्ट डॉक्टर तान्या मैसन जॉन नेदरलैंड्स की लंदन यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एयर एंड स्पेस लॉ की उपनिदेशक है। वो याद दिलाती है कि संयुक्त राष्ट्र की कई संधियों के तहत लगभग 50-60 सालों में अंतरिक्ष में खोज और उसके इस्तेमाल की गतिविधियां शांतिपूर्ण तरीके से चलती रही हैं। इनमें आउटर स्पेस ट्रीटी या बाहरी अंतरिक्ष संधि प्रमुख है।
6: The outer space treaty is, we call it sometimes the constitution of outer space.
8: 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी को हम बाहरी अंतरिक्ष का संविधान भी कहते हैं। ये पहली संधि थी जिसके तहत देशों द्वारा आउटर स्पेस के इस्तेमाल और खोज को नियंत्रित किया जाता रहा है। इसमें केवल 17 अनुच्छेद हैं जो अंतरिक्ष के इस्तेमाल के सिद्धांतों को परिभाषित करते हैं।
0: इस संधि का मुख्य सिद्धांत यह है कि चांद समेत पूरा आउटर स्पेस सभी मनुष्यों का है और चांद किसी एक देश की मलकियत नहीं हो सकता। डॉक्टर तान्या बताती हैं, इस संधि में स्पष्ट कर दिया गया है कि अंतरिक्ष का इस्तेमाल केवल खोज और शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए ही किया जा सकता है। सभी देश और उनकी कंपनियां भी इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य हैं।
6: It is prohibited to place nuclear weapons or weapons of mass destruction.
8: इस संधि के तहत अंतरिक्ष में परमाणु हथियार या व्यापक विध्वंस के हथियारों की तैनाती पर भी पाबंदी लगी हुई है। अंतरिक्ष में भेजी जा रही हर चीज को रजिस्टर करना भी अनिवार्य है, ताकि सबको पता रहे कि वहां क्या भेजा जा रहा है। ये संधि अभी तक प्रभावी रही है क्योंकि इससे अंतरिक्ष में टकराव को टाला जा सका है।
0: 1967 के बाद आउटर स्पेस के नियंत्रण के लिए अन्य संधियां भी हुई हैं, मगर अंतरिक्ष से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए कोई विशेष अंतर्राष्ट्रीय अदालत नहीं है। डॉक्टर तान्या इन संधियों के नियमों का अर्थ लगाने के मुद्दे पर भी ध्यान खींचते हुए कहती हैं कि बाहरी अंतरिक्ष पर किसी की मिल्कियत नहीं हो सकती, लेकिन क्या इसका ये मतलब भी है कि उसके संसाधनों पर भी किसी की मिल्कियत नहीं हो सकती? वो कहती है कि 1989 में चांद के इस्तेमाल पर एक विशेष संधि हुई जिसमें इस बात का जिक्र है कि हमें उसके संसाधनों का इस्तेमाल किस तरह से विकास के लिए करना चाहिए, मगर इस संधि पर चंद देशों ने ही हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें अमेरिका और चीन शामिल नहीं है। वहीं अमेरिका समेत कुछ देशों ने उनकी कंपनियों द्वारा चांद के संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग कानून बना रखे हैं। हाल में अमेरिका का आर्टेमिस अभियान इसी की एक मिसाल है, पर कोई सर्वमान्य अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं बना है जो साफ तौर पर इन संसाधनों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाए या उसकी अनुमति दे, और इसीलिए अंतरिक्ष की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई है।
6: Just to give an example, would operations that would be mining on the moon be...
8: कमिटी ये तय कर रही है कि चांद पर खनन के लिए कंपनियां खदानों के गिर्द एक सेफ्टी जोन बना सकती हैं, क्योंकि खनन के दौरान उड़ने वाली धूल से नुकसान हो सकता है। इस मुद्दे पर देशों की सहमति बनानी पड़ेगी। उन्हें खदान क्षेत्र को रजिस्टर करना पड़ेगा ताकि खनन की अवधि और क्षेत्र को सीमित रखा जा सके। इस कमेटी का उद्देश्य गतिविधियों के लिए एक सैद्धांतिक ढांचा तैयार करना है। इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र में चर्चा हो रही है। चांद पर खनन के बारे में संधि होना मुश्किल लगता है, हालांकि चमत्कार भी होते हैं, लेकिन तब तक इस बारे में कुछ दिशा निर्देश जरूर तय किए जा सकते हैं।
0: तो अब लौटते हैं अपने मुख्य प्रश्न पर, क्या हमें चांद से मिनरल हासिल करने चाहिए? चांद के संसाधनों से टेक्नोलॉजी और विकास को होने वाले लाभ को तो हम जान गए, ये भी पता है कि इसके इस्तेमाल से मनुष्य अंतरिक्ष में पहले से कहीं ज्यादा दूर तक जा सकता है। साथ ही चांद पर खनन के नुकसान की विशेषज्ञों ने चर्चा की। इन संसाधनों के दोहन के लिए रेस तो शुरू हो चुकी है, इस समय हम यही सुनिश्चित करने की कोशिश कर सकते हैं कि उसके संसाधनों के इस्तेमाल पर आम सहमति बने और इन गतिविधियों से पैदा होने वाली समस्याओं के हल के बारे में पहले से सोचा जाए। ये भी सुनिश्चित किया जाए कि चांद कुछ देशों या कंपनियों की मिल्कियत वाली खदान बनकर न रह जाए, बल्कि उस पर सभी इंसानों का अधिकार बरकरार रहे।
9: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
10: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
9: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
10: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
11: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
12: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
11: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
12: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
11: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान लिया।
12: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
13: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
11: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
14: इसका मतलब मोहब्बत, मतलब जिंदगी। जोया।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
2: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
3: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
2: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
3: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
2: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
3: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
2: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
2: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
3: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
2: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
3: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। स्टाफ नर्स 1 पद, प्रयोगशाला तकनीशियन 2 पद, तैराकी प्रशिक्षक 1 पद, नेटवर्क प्रशासक 2 पद, कैमरामैन 2 पद और एक्सरे तकनीशियन 1 पद। प्रत्येक पद के लिए वेतन, आवश्यक योग्यताएं, अन्य पात्रता मानदंड संबंधी विवरण और आवेदन प्रपत्र अकादमी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जिसका पता है www.svpnpa.gov.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राजकोट के विभिन्न विभागों में भारत सरकार की रेजिडेंसी योजना के तहत 88 सीनियर रेजिडेंट गैर शैक्षणिक पदों के लिए पात्र और इच्छुक भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख है 8 जून 2026। पूरी जानकारी के लिए विस्तृत विज्ञापन अवश्य देखें, जो संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है www.aimsrajkot.edu.in/recruitment। इस भर्ती से संबंधित आगे की सारी सूचनाएं, यहां तक कि अंतिम तिथि के विस्तार यदि हो तो सिर्फ संस्थान की वेबसाइट पर ही प्रकाशित की जाएंगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में उप प्रबंधक तकनीक 60 पद उपलब्ध हैं। आवेदन करने के लिए विस्तृत जानकारी हेतु देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वेबसाइट www.nhai.gov.in। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख रहेगी 15 जून 2026। वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान देहरादून में कनिष्ठ शोध अध्येता के 1 पद के लिए रिक्ति उपलब्ध है। विस्तृत विज्ञापन जिसमें परियोजना का ब्यौरा, फेलोशिप, शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, वॉक इन इंटरव्यू की तिथि आदि की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.wihg.res.in। निदेशक वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान के पास ये अधिकार सुरक्षित है कि वे बगैर कारण बताए पदों की भर्ती को निरस्त कर सकते हैं। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सैनिकपुरी डाक सिकंदर

0: इस पद के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप, पात्रता और सेवा की शर्तों के बारे में विस्तृत जानकारी इस वेबसाइट पर उपलब्ध है mopng.gov.in तथा pngrb.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714861 64।
4: प्रसाद क्लिनिक,
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
4: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंड स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
5: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
2: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में।
3: क्यों, क्या हुआ है?
2: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
3: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
2: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
4: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।

0: देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा, दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: कोलैबोरेट क्लोजली टू मेंटेन सिक्योरिटी अलोंग एंड यूनिकली ओपन बॉर्डर।
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: छह स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
2: मेट्रो के लिए 60 न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारकोदुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारकोदुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लैवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लैवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लैवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लैवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लैवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
4: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
5: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने 6ठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
9: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
10: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
11: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
12: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
11: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
12: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
11: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
12: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
11: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
12: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
13: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
14: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
11: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
12: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
11: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
12: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
11: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
12: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
11: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
12: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
15: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
16: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
15: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
16: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
17: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में।
18: क्यों, क्या हुआ है?
17: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
18: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
17: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
18: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
19: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका। जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं। श्रृंगार वाटिका,
20: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
21: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल, सासामुसा में भी फर्जी दस्तावेज पर जमीन कब्जाने का मामला आया सामने। हत्या के प्रयास में 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बरौली के अंचलाधिकारी पर भी लग रहा है भ्रष्टाचार का आरोप। धरना प्रदर्शन की तैयारी में जुट गया है राजद। और नाबालिग की पिटाई करने वालों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। सासामुसा में नेशनल हाईवे के किनारे करोड़ों की जमीन का फर्जी दस्तावेज बनाकर भू माफियाओं के कब्जा करने की कोशिश के मामले में अब न्यायालय में केस दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने अब अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई भी की है और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता शारिक इमाम APP रमेश सिंह ने कोर्ट को बताया कि आरोपी मंगल राय के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर राजेंद्र नगर बस स्टैंड की जमीन को सासामुसा के अजय दुबे के हाथों 1980 में बेच दिया। उसकी जांच के बाद नगर परिषद ने नगर थाने में कांड दर्ज कराया है। इस मामले में विजय राय के पिता कृपा राय के नाम पर फर्जी जमीन का दस्तावेज सासामुसा के जमीन 22 मार्च 1947 को बना दिया गया, तब से ना दाखिल खारिज भी नहीं कराए और अब दाखिल खारिज कराने के दावा कर रहे हैं। विजय राय भू माफियाओं के एक बड़े नेटवर्क का सरगना है, जो शहर से लेकर कुचायकोट और अन्य जगहों के महंगे जमीनों का फर्जी कागजात बाप दादा के नाम से तैयार कर अपने रसूख के बल पर जाल फरेब कर कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे राजेंद्र नगर बस स्टैंड में पन्ना जोड़ा गया, उसी तरह से यहां भी पन्ना जोड़ा गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से कुछ दस्तावेज कोर्ट के सामने रखा गया और दावा किया गया कि 1947 में रजिस्ट्रार के साइन भी नहीं मिल रहे हैं। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राम बाबू सिंह ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष के पास कोई कागजात नहीं है, इनका दावा निराधार है, केस भी झूठा दर्ज किया गया है, इसलिए जमानत दिया जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फिलहाल जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर लगातार फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभियान चला रही है। इसी कड़ी में गोपालपुर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में प्राथमिकी अभियुक्त शंकर चौहान, पिता स्वर्गीय नथुनी चौहान जो बड़हरा बरई पट्टी थाना गोपालपुर का निवासी है, उसके घर से पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक दूसरे मामले में पुलिस ने प्राथमिकी अभियुक्त पवन कुमार सिंह को भी गिरफ्तार किया। यह गोपालपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मी चैलवा गाँव के परमात्मा सिंह का पुत्र है। इस पर भी हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। इसको भी आज पुलिस ने गिरफ्तार कर दोनों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर राजद पार्टी ने सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करने की योजना बना ली है। पार्टी का कहना है कि राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तथा अन्य जन समस्याओं को लेकर 9 जून को सभी प्रखंड मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन होगा और अगली कड़ी में 17 जून को जिला मुख्यालय पर भी विशाल धरना दिया जाएगा। इसकी सफलता के लिए राजद के जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह के अध्यक्षता में बैठक की गई और पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए और इस बार धरना प्रदर्शन को जोर शोर से करने की नीति बनाई गई। इधर राजस्व विभाग की कार्रवाई तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि जहां बिहार के 9 अधिकारियों और कर्मियों पर राजस्व विभाग की गाज गिरी है, तो वहीं गोपालगंज तक भी इसकी आंच पहुंच रही है। भ्रष्टाचार, अनियमितता और कर्तव्यहीनता के मामलों में बरौली CO प्रशांत कुमार पर भी आरोप लग रहा है। दाखिल खारिज के मामलों में FIFO नियम उल्लंघन सहित कई गंभीर आरोप, पेंशन कटौती, विभागीय कार्रवाई और बर्खास्तगी की अनुशंसा तक भी सुनने को आ रहा है। अब तक राज्य के 32 अंचल और राजस्व अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जिले के आम जनता विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं। चाहे वो थाना हो या राजस्व विभाग हो, ब्लॉक अंचल हो, आम जनता को जगह जगह भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। आम जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त है। ऐसे में जब किसी भी अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और उन पर कार्रवाई होती है तो जनता को काफी सुकून महसूस होता है। इधर माझा बाजार में एक नाबालिग बच्चे को मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर बंधक बनाकर मार पिटाई करने का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में अब पुलिस ने संज्ञान लिया है। माझा के थाना अध्यक्ष ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल किया और नाबालिग बच्चे को सुरक्षित मुक्त कराते हुए उपचार के लिए सदर अस्पताल में भेजा गया, जहां उसके स्वास्थ्य की स्थिति फिलहाल सामान्य और नियंत्रण में है। इस मामले में एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई, जिसमें चार नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध केस हुआ है। इस कांड का अनुसंधान करते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर अभियुक्त अरमान अली, पिता आलमगीर अंसारी, साकिन माझागढ़ नया बाजार थाना माझा को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस छापेमारी कर रही है। आज गैस को लेकर जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की। उन्होंने बताया कि जिले के कुल 3 गैस कंपनियों के माध्यम से संचालित सभी गैस गोदामों पर पर्याप्त मात्रा में गैस के सिलेंडर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि HPCL, BPCL और IOCL के प्रबंधकों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिले में IOCL के 26 विक्रेता हैं और इनके स्टॉक में 11,899 सिलेंडर उपलब्ध हैं। BPCL के 8 थोक विक्रेता हैं और इनके पास 5,297 गैस सिलेंडर हैं। तो वहीं HPCL के 12 विक्रेता हैं और इनके पास 6,613 गैस सिलेंडर उपलब्ध है। इस प्रकार इस जिले के तीनों एजेंसी IOCL, BPCL और HPCL के विक्रेताओं के पास कुल 23,809 गैस सिलेंडर उपलब्ध है। इधर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मीरगंज थाना की पुलिस ने 18 लीटर देशी शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि सुरवनिया सड़क के पास पुलिस ने छापेमारी की, जहां मोटरसाइकिल से 18 लीटर देशी शराब पकड़ी गई। इस मामले में अमरेंद्र दुबे, पिता माला दुबे, और फतेह कुमार सिंह, पिता चंद्रिका सिंह, ये दोनों साकिन पचफेरा थाना मीरगंज के निवासी हैं। इन्हें गिरफ्तार कर इनकी मोटरसाइकिल और शराब को जब्त करने के बाद पुलिस ने आज इन्हें पूछताछ करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मीरगंज नगर परिषद ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसमें नगर परिषद का कहना है कि अगर नगर परिषद क्षेत्र में किसी भी प्रकार की शिकायत, सुझाव अथवा स्वच्छता, जलापूर्ति या सड़क तथा अन्य कोई भी अगर समस्या है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर मीरगंज नगर परिषद को संपर्क कर सकते हैं। यह टोल फ्री नंबर 18-00-27-080-47 है। इस टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके मीरगंज नगर परिषद की समस्याओं को रख सकते हैं। इधर नगर थाना की पुलिस ने भी चोरी के मामले में 2 अप्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सुसन माझी, पिता रामचंद्र माझी, साकिन बहोरा टोला थाना माझागढ़ जिला गोपालगंज को गिरफ्तार किया, तो वहीं मनीष कुमार, पिता नगीना महतो, साकिन साधु चौक वार्ड नंबर 5 को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हजियापुर चौक से दोनों को गिरफ्तार किया और इन पर चोरी का मामला दर्ज है। गिरफ्तार आरोपियों को आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर माझा थाना की पुलिस ने भी पॉक्सो एक्ट के प्राथमिकी आरोपी को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी मुन्ना सहनी, पिता हरिंदर सहनी, साकिन सहलादपुर नौका टोला थाना माझागढ़ का निवासी है। पुलिस ने इस पर पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज किया था और तभी से यह फरार चल रहा था। अब इसे गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बिहार की बहू श्वेता राज का आर्टिकल रिसर्च इश्यू इन ब्रिजिंग एकेडमिक एंड इंस्टीट्यूट इनोवेशन एंड टू वे अप्रोच, जो ब्लूमबेरी पब्लिकेशन के द्वारा छापा गया है, इसकी काफी चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि इसका ऑफिस न्यू दिल्ली, लंदन, एक्सफोर्ड, न्यू यॉर्क, सिडनी में है, जिसमें आर्टिकल छापना अपने आप में ही बहुत बड़ी कामयाबी है। आज इनके परिजनों ने इसकी जानकारी दी। श्वेता मूल रूप से वाराणसी की रहने वाली है और इनकी शादी 2020 में गोपालगंज के सामाजिक कार्यकर्ता आनंद बिहारी श्रीवास्तव के पुत्र से हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों की तरक्की जबरदस्त तरीके से हो रही है। टैक्सेशन के रूप में राज रंजन इनके पति पूरे भारत में एक अलग पहचान बना रहे हैं, तो वहीं इनकी पत्नी श्वेता राज कोलकाता यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड कॉलेज THK जैन कोलकाता में प्राध्यापक है। अब इनकी आर्टिकल जो इंटरनेशनल लेवल पर छप रही है उसको लेकर काफी उपलब्धि मानी जा रही है। इनके सभी जानने वाले लोगों ने श्वेता को बधाई और शुभकामनाएं दी। और आज बिहार सरकार के कृषि मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा तथा गोपालगंज के बैकुंठपुर से विधायक और बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री मिथिलेश कुमार तिवारी दोनों लोग का गोपालगंज आगमन हुआ था। इस दौरान सर्वप्रथम दोनों नेताओं ने थावे माँ भवानी का दर्शन पूजन कर जिले के सुख समृद्धि की कामना के लिए प्रार्थना की। इसके बाद जिला मुख्यालय पर जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा और तमाम जन प्रतिनिधि तथा पदाधिकारियों के साथ उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। देर शाम तक 20 सूत्री की बैठक चल रही थी। 20 सूत्री की बैठक में जिले के विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए मंत्रियों ने आवश्यक निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि एक एक बिंदुओं पर चर्चा कर जिले में चल रही विकास कार्यों को और गति प्रदान करने की दिशा में एक अच्छी पहल शुरू की गई है। हालांकि इस बैठक की खबर मिलने तक आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई थी। बैठक फिलहाल चल रही है और दो दिवसीय दौरे पर दोनों मंत्री गोपालगंज हैं। रविवार को भी शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और विजय सिन्हा के कुछ कार्यक्रम हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं में शिक्षा मंत्री और विजय सिन्हा कृषि मंत्री के आगमन को लेकर काफी उत्साह है। जगह जगह दोनों ही मंत्रियों का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सासामूसा में भी फर्जी दस्तावेज पर जमीन कब्जाने का मामला आया सामने। हत्या के प्रयास में दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बरौली के अंचलाधिकारी पर भी लग रहा है भ्रष्टाचार का आरोप। धरना प्रदर्शन की तैयारी में जुट गया है राजद। और नाबालिग की पिटाई करने वालों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: ठक ठक
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
22: अच्छा मिला ही नहीं
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
22: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
22: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
23: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
24: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
23: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
25: अब बेटा, बहु घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
26: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
27: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
28: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-75।
29: सुनिए सुनिए सुनिए,
30: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
29: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
30: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
29: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
31: जागे हैं देर तक, हमें कुछ देर सोने दो, थोड़ी सी रात और है, सुबह तो होने दो। आधे अधूरे ख्वाब जो पूरे न हो सके, एक बार फिर से नींद में वो ख्वाब बोने दो। क्या गाना है ना, रहमान ने जैसे मद्रास क्वायर को यूज किया है, जैसे उन्होंने थकान में गाया है, मानो कोई चूर हो रहा हो। चित्रा जी ने जैसे गाने की शुरुआत की है, सो सॉफ्ट, जैसे कोई बहुत फ्रेजाइल चीज को हैंडल कर रही हूँ वो। एंड ऑफ कोर्स गुलजार साहब के बोल, फिल्म गुरु। वैसे सीजन 1 ने भी किया था एक एपिसोड रात जागने के बारे में। तो तीन साल में इंसान क्या एक ही बार रात जागता है? और तब भी कहा था और आज भी कह रही हूँ, मेरी तरह आप भी चमगादड़ हैं, ये मुझे पता है। अब आप रात क्यों जागते हैं ये तो आप जाने, पर नींदों और ख्वाबों के साथ मेरा आजकल रिलेशनशिप स्टेटस कॉम्प्लिकेटेड है।

योगेश सलिल चौधरी का मैजिकल कॉम्बिनेशन फिल्म अन्नदाता, लता जी की आवाज, जिनको हैप्पी बर्थडे नहीं बोला हमने इस साल यहाँ पर यहाँ तो हर हफ्ते लता दी का जश्न मनता ही है ना। और मुझे लगता है कि नींद और ख्वाबों का एक बहुत मजेदार रिश्ता है, मतलब सोने के बाद सपने आते हैं ये तो हम जानते हैं, पर जागी आंखों के सपनों का कितना बड़ा असर पड़ता है नींद पर, है ना। अपनी जिंदगी के लिए या अपनों के लिए जब कोई बहुत बड़ा सपना देखते हैं हम, अ ड्रीम दैट कैन कंज्यूम अस, तब भी रातों की नींद उड़ जाती है। फनी कि ख्वाब की वजह से ही नींद ना आए, इमेजिन, क्योंकि हर वक्त उस सपने को पूरा करने के लिए जगे रहते हैं हम। और कभी ये भी होता है कि किसी सपने के पीछे भागते भागते हम इतना थक जाते हैं कि रात को गहरी नींद आ जाती है। ये तब भी होता है जब अच्छा काम करके एक सेटिस्फैक्शन की नींद सोए हम, और तब भी जब कोई बात ना बन रही हो और नींद एग्जॉशन की हो। दोनों सूरतों में वो ख्वाब ही है जो हमें सुलाता है, कभी जिताकर तो कभी हराकर। मतलब मेन पॉइंट ये है कि पहले नींद हो और बाद में ख्वाब, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। अक्सर इनफैक्ट इसका उल्टा होता है कि पहले ख्वाब आए और उसके बाद नींद, है कि नहीं।

0: ताला फिर से तो।
1: रफी साहब, लता जी, फिल्म तलाश, SD मजरू और उससे पहले भी उन्हीं का बनाया हुआ ख्वाब हो तुम। देव साहब अगेन, पिछले एपिसोड से जैसे पेट ही ना भराओ। आवाज किशोरदा, देवानंद की आवाज कौन थे वैसे? किशोरदा ही कहते हैं सब, पर मेरे ख्याल से 50s में तो दोनों ही थे, किशोर और रफी दोनों। गुड फॉर अस।
2: प्रसाद क्लिनिक।
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
4: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
5: सुनिए सुनिए सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527881 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527881 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: नींद क्यों नहीं आती? नहीं सच बता, ये पंगा क्या है? काम भी करते हैं, जिम भी जाते हैं, फिजिकल एग्जर्शन भी होती है और मेंटल भी। दोस्तों से मिलते हैं, फैमिली के साथ वक्त बिताते हैं, नेटफ्लिक्स भी देखते हैं, एक दो ड्रिंक्स भी हो जाती है कभी कभार, फिर भी नींद नहीं आती। बट व्हाई? क्या है जो जगा कर रखता है? यादें या इरादे, खुद की नीयत या दूसरों की नसीहत?

बीता हुआ कल या आने वाला कल। मैं रिया और आपके ट्वीट्स पढ़ती हूँ मैं @MissRiaMukherjee पर, और वक्त भी नोट करती हूँ, सिर्फ उनके नहीं जो दूसरे देश में रहते हैं और टाइम जोन डिफरेंस है जिनके साथ, पर यहाँ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अंदर ही रहने वालों के भी। सोते बोते हैं आप या यूं ही सारी रात कुछ गाने कुछ बहाने? और फिर सोशल मीडिया तो है ही साथ देने के लिए, तो और मुसीबत। किताब पढ़ लो, म्यूजिक सुन लो, ये सलाह तो कभी समझ ही नहीं आई मुझे। इफ द बुक इज इंटरेस्टिंग तो और जाग कर पढ़ने का मन करता है, और बोरिंग हुई तो बंद करके रख देते हैं ना साइड में। ये किताब पढ़कर नींद कैसे आ सकती है? एंड म्यूजिक, सॉरी बट मैं तो उनमें से हूं ही नहीं जो गाने सुनते सुनते सो सके। आई थिंक मैं कुछ ज्यादा ही ध्यान से सुनती हूँ संगीत को, ऑफ एवरी जॉनर। बैकग्राउंड म्यूजिक क्या होता है मुझे नहीं मालूम, मेरे लिए सब म्यूजिक फोरग्राउंड ही होता है, रेस्टोरेंट और लिफ्ट में जो बजे वो भी। अब रात को कुछ अच्छा बजे तो नींद जो आ भी रही है ना वो भी उड़ जाएगी, और बुरा तो सुनने की काबिलियत ही नहीं। इफ इट्स म्यूजिक आई एम नॉट एंजॉयिंग तो वो स्विच ऑफ हो जाएगा। सो देन एक्सप्लेन टू मी, ये गाने सुनते सुनते कैसे सोते हैं भाई?

देखिए भाई साहब, आई नो यू मीन वेल, पर आप गाते रहिए, मेरे सुने के चांसेस काफी कम हैं, खासकर अगर आप रफी साहब की मखमली आवाज में शैलेंद्र के बोल गाएंगे शंकर जयकिशन की धुन में, तो फिर तो मैं सुनती ही रहूंगी। और उससे पहले चलिए जल्दी से थैंक यू बोल दीजिए मुझे। येसुदास की आवाज फिल्म आलाप, वन ऑफ बच्चन फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस। कोई गाता मैं सो जाता, संगीत जयदेव, और बोल तो नहीं, कविता कहनी चाहिए। संस्कृति के विस्तृत सागर में, सपनों की नौका के अंदर, दुख सुख की लहरों में उठ गिर, बहता जाता मैं सो जाता। आंखों में लेकर प्यार अमर, आशीष हथेली में भरकर, कोई मेरा सर गोदी में रख, सहलाता मैं सो जाता। मेरे जीवन का कारा जल, मेरे जीवन का हालाहल, कोई अपने स्वर में मधुमेह कर, दोहराता मैं सो जाता। कोई गाता मैं सो जाता। अब तक तो आप समझ गए होंगे कौन है कवि जी, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। आपके साथ मैं रिया। वैसे ये बात मैं हर बार क्यों बोलती हूँ, पॉडकास्ट का नाम ही रियाज रेट्रो है, उसका सिग्नेचर भी आप सुनते हैं बार बार, तो मेरा नाम रिया ही होगा ना, रेट्रो तो हो नहीं सकता। फालतू में क्यों दोहराती हूँ, जस्ट अ सिली हैबिट, मेक्स नो सेंस एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट। इंसोम्निया कैन ऑल्सो बिकम अ सिली हैबिट। सिली ही लगने लगता है खुद को जब उल्लू की तरह दीवार निहारते हैं, चुपके से अपने ही फ्रिज से देर रात को चोरों की तरह खाना चुरा कर खाते हैं, फोन पर माइंडलेस स्क्रोलिंग करते ही रहते हैं, या फिर कोई वीडियो या वेब सीरीज देखना शुरू कर देते हैं, और सोचते रहते हैं इधर उधर दुनिया जहान की बातें। फिर हल्की सी झपकी आ जाती है, टेढ़ा मेढ़ा आधा टूटा कोई सपना देखते हैं, और फिर किसी चीज से आंख खुल जाती है। क्या सड़क पे कोई बाइक, पास वाले घर में बच्चा रोया, या देर रात घर लौटते वक्त पड़ोसी जोर जोर से आपस में बात कर रहे हैं। हालांकि मैं सेकंड फ्लोर पर रहती हूँ, मेरी एक दिक्कत है, नींद बड़ी कच्ची है मेरी, और ये रेडियो के कान, रेडियो इयर्स होने का मतलब है कि पिछली गली में भी कोई छींके तो मेरी नींद कम वक्त खुल जाती है। कई बार ऐसी रातों के बाद अगले दिन सुबह उठकर ठीक से समझ ही नहीं आता कि कोई बात, कोई खबर, कोई न्यूज नगेट या कोई किस्सा सच में पढ़ा देखा सुना था या सपने में आया था। मैं तो पूरे पूरे ईमेल्स चेक करके जवाब दे चुकी हूँ सपनों में, और अगले दिन सोचा कि एक्चुअली वो काम हो गया है, जब तक क्लाइंट का कॉल नहीं आया, स्टिल वेटिंग फॉर दैट मेल। सो एम्बैरेसिंग।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
4: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
3: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
4: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
3: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
4: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
5: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
3: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
8: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स।
1: बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
1: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।

कब से इच्छा है मेरी कि ये गाना चलाऊं किसी दिन, पता है आपको? सीजन वन के टाइम से। पर किशोर दा के साथ शमशाद बेगम की आवाज आपको कैसी लगेगी, यही सोचते सोचते रुक जाती हूँ हर बार, वरना सीजन वन के उस रात जागने वाले एपिसोड में ही चला देती। गाना बहुत ही पुराना, पर फिल्म का नाम नया अंदाज, ओपी नैयर, जानिसार अख्तर। और उससे पहले आपने सुना मेरा पर्सनल इंसोम्निया एंथम, ऑफ कोर्स रिटन बाय माय पोएट इन वाइट। जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा, एक पल रात भर नहीं गुजरा। किशोरदा आरडी, फिल्म किनारा। वैसे आप नोट कर रहे हैं या नहीं पता नहीं, पर मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि सीजन वन एपिसोड 9 से कोई गाना रिपीट ना हो। और ये कोई मामूली टास्क नहीं, क्योंकि बहुत बेहतरीन गीत चलाए थे मैंने उसमें। मतलब मेहनत पे गौर फरमाइए जरा। वैसे भी उस बार जागने की बात थी, इस बार मैं ख्वाबों के बारे में भी तो सोच रही हूँ। ख्वाब का ना होना भी जगाए रखता है कई बार, और उस जागने से तन्हा लाचार कोई चीज नहीं होगी। ख्वाबों का होना, उनके पीछे भागना, दिन भर खुली आंखों से सपने देखना, रात को कई बार चैन की नींद इसी से तो आती है, दैट वी डेयर टू ड्रीम। पर कोई ड्रीम ही ना हो अगर, मैं सपनों के टूटने की बात नहीं कर रही, फेलियर की बात नहीं कर रही, वो एक और ही किस्म की एग्नी है, मैं जानती हूँ। पर मैं उस लम्हे की बात कर रही हूँ जब आप खुद को देखते हैं, अंदर एक सन्नाटे को महसूस करते हैं, और ये रियलाइज होता है कि मेरा तो कोई सपना ही नहीं है, कुछ इंस्पायर नहीं कर रहा, अंदर से कोई प्यास नहीं है, कुछ पाने की ख्वाहिश ही नहीं। मिडलाइफ क्राइसिस जिसे कहते हैं शायद, जिसके चलते हम सब मॉल रैट्स बन जाते हैं। और शॉपिंग करो, और सामान खरीदो, बैग्स भरो, और बड़ी गाड़ी लो, लग्जरी वॉच, यूरोप क्रूज, एक्सपेंसिव डिनर्स, एक्सोटिक रेस्टोरेंट्स, भरो भरो भरो, ब्रांडेड कपड़े, महंगे जूते खरीदो, फिर दोस्तों को दिखाओ, फिर उन चीजों को पहनकर कुछ और खरीदने जाओ, बस भरो भरो, भरते जाओ भरते जाओ। पर वो खाली जगह कमबख्त भरती ही नहीं है यार। गुची से नोची सब ट्राई कर लिया, और फिर रात को नींद ही नहीं आती। जब सपने की उम्मीद ही ना हो, तो नींद भी फालतू में अपना टाइम क्यों वेस्ट करें।

आरडी बर्मन आनंद बख्शी जी, ये 70s की फिल्म है, 50s की नहीं। सुहानी चांदनी रातें इज फ्रॉम मुक्ति विद द एवर सो जेंटल मुकेश। और उतनी ही फ्रेजाइल आवाज उससे पहले भूपिंदर फिल्म घरोंदा, जयदेव गुलजार। दिन खाली खाली बर्तन है, रात है जैसे अंधा कुआं, इन सूनी अंधेरी आंखों में आंसू की जगह आता है धुआं। जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है। गॉड, सच में कोई सपना ना हो, कोई ख्वाब ना हो, दिल के टूटने का भी कोई रास्ता अगर ना हो तो आंसू भी नहीं आते। एवरीथिंग गोज ब्लैंक, डेड इनसाइड। उस अनफीलिंग नमनेस से तो एगनी भली, तकलीफ भली, दर्द भला। 100 हार्ट ब्रेक्स गवारा हैं उस हार्ट एक के लिए। दिल में दर्द ही नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा दैट द डैम थिंग एग्जिस्ट्स। थी मैं आपके साथ रिया, और आपकी अपनी नींद की खातिर फिर कहती हूँ, डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: रात के 11 बज चुके हैं और रेडियो रंजन पर समय हो चुका है रात्रि समाचार का। आइए सुनते हैं पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में ये न्यूज।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
3: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
4: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नवन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षो में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikant Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils, including palm oil, palmolin, soybean oil, sunflower oil, mustard oil, groundnut oil, sesame oil and rice bran oil. The approved pack sizes are 200 gram, 500 gram, 1 to 5 kilograms, 15 kilograms and 20 kilograms. The ministry said this will also help consumers make more informed and transparent purchasing decisions. It added that the initiative will benefit the edible oil industry by bringing greater uniformity in packaging practices. Railway Minister Ashwini Vaishnaw has said that resolving long-pending railway projects in West Bengal will usher in a new era of railway infrastructure development in the state. Addressing a joint press conference with Chief Minister Suvendu Adhikari at Nabarna in Kolkata, Mr. Vaishnaw said that 14,205 crore rupees have been allocated to West Bengal in the railway project for 2026-27. He said 10 Amrit Bharat stations have already been completed in the state, while 9 Vande Bharat Express trains and several Amrit Bharat trains are currently in operation.
6: 60 new generation trains we are planning. In coming 4 to 5 years, these trains will be inducted and Kolkata Metro will get a totally new generation of trains. As the work gets completed on Chingrighatta area, other sections, a lot of improvement will happen in the mobility in Kolkata.
5: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said India and Nepal collaborate closely to maintain security along their long and uniquely open border, and the two countries have always stood by each other in times of need. In his opening remarks during a meeting with his Nepalese counterpart Shishir Khanal in New Delhi this evening, Dr. Jaishankar said India and Nepal share a very special relationship. The External Affairs Minister said the bilateral ties have steadily developed in areas like trade, commerce, investments, energy, development, cooperation, education, disaster response and culture. Mr. Khanal said India is Nepal's most important partner and Nepal has placed highest priority to India. He said Nepal and India are not merely two countries but stakeholders of a proud ancient civilization. He thanked India for fuel and fertilizer supply amid the West Asia crisis. Tensions across West Asia escalated sharply on Saturday after Iran launched ballistic missiles toward United States military facilities in Kuwait and Bahrain, prompting a coordinated air defense response by Gulf states and American forces. According to the U.S. Central Command, Iran fired 7 ballistic missiles following U.S. strikes on Iranian coastal surveillance and radar installations at Keshm Island and Goruk near the Strait of Hormuz. Initial assessments indicated that 6 missiles were intercepted while a 7th failed to reach its target. There were no immediate reports of casualties among US personnel. In tennis, Russian eight-seeded Mira Andreeva won her maiden Grand Slam title after getting the better of Maya Szwalanski of Poland in straight sets in the women's singles final of the French Open. And that is the end of this news bulletin.
0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर. आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण. रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से. आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं. सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें. उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर.

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सास पतोह के लड़ाई से बढ़िया बहिमा बॉर्डर के लड़ाई।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: हमार बजरंगी पुलिस बन गई ने।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो।
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
2: जी मैम, मुझे गाना सुनना है।
1: जी गाना सुनाएंगे, नाम बता दे अपना।
2: मुंबई से बोल रहा हूँ, मुझे गाना सुनना है।
1: ओके, और कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
2: मुझे गाना सुनना है जुदा अपने दिल भर को होने लगी है मोहब्बत।
1: अच्छा, और ये गाना आपको किसको सुनाना है?
2: और रुबीना जी, दीप्ति जी, हीना जी, गुड़िया जी, सज्जा जी, शबनम जी और अरिसा, सभी को सुनवाना चाहता हूँ।
1: ओके, चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू मैम।

0: हेलो,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: राजू बोल रहा हूँ
0: जी,
1: हम तो एक गाना सुनना
0: और आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, हम लुधियाना से बोल रहे हैं।
0: अच्छा, कैसे हैं आप?
1: हम ठीक है, आप अपना बताइए।
0: मैं भी ठीक हूँ। फिर बताएं क्या हो रहा है?
1: बस काम हो रहा है, सिलाई कर रहे हैं यहाँ पे।
0: बढ़िया है।
1: आप
0: फिर
1: आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं 5 बजे से। हाँ,
0: जी,
1: 7 बजे तक।
0: फिर बताएं क्या
1: मेरा
0: फरमाइश है आपकी?
1: एक फरमाइश है, कोई राजू प्यार न करियो, दिल छूट गया था।
0: अच्छा जी, फिर ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
1: जी, एक मेरा मंजीत दोस्त है, उसको सुनाना चाहते हैं और आपको सुनाना चाहते हैं। आप जो इतना रेडियो सुन रहा है, सबको सुनाना चाहते।
0: ओके, ठीक है, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैडम।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो,
3: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
2: नमस्ते मैडम।
3: नमस्ते,
2: और बताइए
3: कैसे हैं आप?
2: बहुत बढ़िया, आप ना सुनाइए।
3: मेरा भी ठीक है, क्या हो रहा है अभी?
2: अभी तो पूछ रहे हैं, आपके पास फोन लगा रहा है।
3: अच्छा, फिर बताएं गाना कौन सा सुनना है आपको?
2: गाना सुनना है वो पवन सिंह का।
3: जी, सॉन्ग बता दें।
2: सॉन्ग का नाम है धनी हो सब धन सहारे निभाते।
3: और ये गाना आप किसी को सुनाना चाहते हैं?
2: जितना रेडियो रिमझिम सुनने वाले बंदे हैं सबको, और साथ में आप भी।
3: जी। ओके, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: जी, धरती जी, बहुत आपको नमस्कार।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका? अच्छा,
1: मैं लाल बहादुर प्रसाद नारायण पंचायत कल्याणपुर से।
0: कैसे हैं आप?
1: ठीक है, आपका प्रोग्राम सुने बहुत अच्छा लगा, जो आपकी आवाज बुलंद है।
0: जी धन्यवाद। और सब बताएं क्या हो रहा है?
1: अभी तो गैस लेकर आ रहे थे, टाइम है थोड़ा, देखते हैं, लग रहा है कि
0: तबीयत ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, थोड़ी थोड़ा धूप की।
0: अच्छा जी, क्या फरमाइश है आपकी?
1: स्वास्थ्य अभियान का जाना, मेरे स्वास्थ्य अभियान का,
0: क्या
1: स्वास्थ्य अभियान का सफाई कर्मचारी का,
0: जी, किसी को सुनाना चाहते हैं?
1: जितना भी लगे हैं मेरे स्वास्थ्य अभियान से भारत वर्ष में उनको सारे को।
0: ओके,
1: 4 महीने के पश्चात इंजीनियर स्वास्थ्य टीम का, और जितना ग्रामीण क्षेत्र से लगे हैं सारे को और आपको।
0: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello, hello, hello, hello, hello.
4: Break के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है Hello My Choice के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए

0: बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो, नमस्कार।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: इसके लिए दिल से धन्यवाद है आपको। मैं बहुत अच्छा हूँ, अपना सुनाइए घर परिवार में। रेडियो रंजन पूरा परिवार कैसे हैं आप लोग?
2: हम सब बढ़िया हैं। नाम बता दे अपना।
1: रामविलास प्रसाद कुशवाहा, क्रिस्पुर बगहा, पूर्वी चंपारण से।
2: ओके,
1: तुम कैसा है उधर?
2: मौसम बढ़िया है अभी फिलहाल उधर।
1: जी, यहाँ पर भी सुबह में बारिश हुई है, मौसम बहुत सुहाना बना हुआ है इधर भी।
2: जी चलिए तो बढ़िया है।
1: जी,
2: एंड क्या फरमाइश है आपकी?
1: फिल्म का नाम है जीना तेरी गली में, भोजपुरी सॉन्ग है और गाने का बोल है तू दीवानी हो ताजा।
2: अच्छा, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
1: जी सबसे पहले तो आपको सुनाना चाहता हूँ। और दोस्त में होंगे संजय, साजिद, दीपक कुमार, दादी, रामचंद्र, मुखर्जी, मोहम्मद सलार जी, कंसराज जादू जी, अंचल कुमार जी, पारसनाथ कुशवाहा जी, नगीना प्रसाद कुशवाहा जी, धनलाल प्रसाद कुशवाहा जी, राजा बाबू उस विकास, अभय कुमार, सुदीश कुमार, अजय कुमार, आयुष कुमार, बौली प्रसाद कुशवाहा जी, रविन्द्र प्रसाद कुशवाहा जी और गोपालगंज जिले के संतरा कुशवाहा जी, काजल जी, गुड़िया जी, नेहा जी, मुस्कान जी, उदिता जी, सुजीता जी, सूर्यमोहन जी, नवीन सिंह जी, जितेंद्र जख्मी जी, दिलीप राम जी, राम कुमार पांडे जी और अभी रेडियो रेंजिंग सुन रहे सभी श्रोता बंधु को सुनाना चाहता हूँ।
2: ओके, फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रेंजिंग में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।

0: हेलो
1: रेडियो रिमझिम
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: धन्यवाद बहन। और बहन जी आप कैसे हैं अभी?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: जी बहन जी हम भी बहुत बढ़िया है, स्वस्थ है, मस्त है और व्यस्त है बहन जी।
0: ओके, क्या नाम है आपका?
1: जी मैं ग्राम जुनवानी स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुरित रमेश साहू बोल रहा हूँ बहन जी।
0: ओके, और सब बढ़िया है ना?
1: और सब बढ़िया है बहन जी। इन दिनों क्या है, मैं खेती बाड़ी करता हूँ बहन जी, किसान हूँ।
0: ओके,
1: और इन दिनों मक्का की कटाई चल रही है बहन जी, और धान की कटाई भी हो रही है, और गेहूं धान की कटाई, गेहूं और चने की कटाई पहले से हो गई है।
0: हाँ, फिर बताएं आपको कौन सा गाना सुनना है?
1: जी बहन जी गाना सुनने से पहले बहन जी आप कौन बोल रही है? आपकी आवाज जो है बहुत ही मधुर, मनमोहक, मीठी, प्यारी और लाजवाब पेशकश होती है बहन जी।
0: जी मेरा नाम भारती है और मैं रेडियो रिमझिम से बोल रही हूँ।
1: हाँ तो भारती जी आपके लिए दो पंक्ति है, दो लाइन की पंक्ति है, अगर इजाजत हो तो बोलूं।
0: जी बोलिए।
1: जी जिंदगी एक सफर है, जिंदगी एक सफर है, सफर सभी की चलती रहे। जिंदगी एक कारवा है, कारवा सभी की चलती रहे। जिंदगी एक झरोखा है, झरोखा जो है नदियों की तरह कल कल कल कल छल छल छल छल करके बहती रहे। और रेडियो रिमझिम में आवाज की दुनिया के बुलंद सितारे, प्यारी बहना भारती जी की आवाज जो है स्वर लहरी में, स्वर धारा में हमेशा बहती रहे। और हेलो रिमझिम का यह कारवां का सफर हमेशा चलती रहे, हमेशा चलती रहे, हमेशा चलती रहे बहन जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद बहन जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहन जी, तो मैं कुछ बोल दिया बहन जी।
0: जी
1: और आपके कुछ प्रशंसक श्रोता भाई बहन है बहन जी, इजाजत हो तो दो चार लोगों का नाम ले लूं बहन जी।
0: जी बोलिए।
1: जी हमारे सागर मध्य प्रदेश से हमारे प्रोफेसर चंद्रेश गौहर जी साहब है, जालौन उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव जी है, हमारे विजेंद्र भाई विश्वकर्मा जी है, दुल्हापुर यूपी से मुकेश कुमार कश्यप जी है बहन जी, और हमारे भानवेरम वार्ड से भारत राम पटौती जी है, साकरा सोमनी से नारायण लाल साहू जी है, गणेश धाम परसूली से जितेंद्र दास मानिकपुरी जी है बहन जी, कन्या दमोह बालाघाट से हमारे आदरणीय झुरवा राम साहू गुरु जी है, और डोंगरिया मलाजखंड से मुन्ना लाल पाटले जी है बहन जी।
0: जी
1: और आर्यन रेडियो की बहुत ही प्यारी उद्घोषिका, आरजे उद्घोषिका आप ही की तरह
0: जी,
1: हमारी बहना पूनम गौतम जी है। अगर आप भी सुनते होंगे बहन जी तो आप उसको जानते होंगे।
0: जी जी
1: है ना। तो बहन जी और इन दिनों गर्मी बहुत ही चरम पर है बहन जी।
0: जी गर्मी तो है,
1: और हो सके तो पशु पक्षियों के लिए अपने घर के सामने
0: जी, जी
1: पानी पानी भर के रखना चाहिए, ताकि वो बेजान बेजुबान जानवर जो है बहन जी वो उस पानी को वो पी करके अपना शीतलता प्रदान कर सके।
0: जी बिल्कुल।
1: और अपना सेहत का ख्याल अवश्य रखे बहन जी, क्योंकि जान है तो जहान।
0: जी बिल्कुल। फिर बताएं आपको कौन सा गाना सुनना है?
1: अब गीत तो ऐसा है बहन जी, एक मुकद्दर का

0: भाई बहना है
1: ओके
0: उनको भी हम डेडिकेट करना चाहेंगे भारती बहन जी।
1: ओके तो ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रंजन में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद बहन जी।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो,
6: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
5: नमस्कार मैडम, मैं ललन पास में बोल रहा हूँ।
6: जी जी, बताएं क्या फरमाइश है आपकी।
5: क्रांति फिल्म का सुनना गाना मुझे।
6: जी,
5: क्रांति फिल्म का सुनना मुझे गाना। अब के बरस से मुझे भर दे रानी।
6: अच्छा, पर ये गाना आप किसी को सुनाना चाहते हैं।
5: जी मैं सभी श्रोतागण को सुनाना चाहता हूँ और आपको भी।
6: ओके, तो ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रिंगिंग में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

कदम

0: अब के बरस।
1: हेलो
2: हेलो मैडम,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में।
2: हेलो मैडम,
1: क्या नाम है आपका?
2: प्रीति।
1: और आप कहाँ से हैं?
2: कोन्हा मोड़।
1: फिर बताएं कैसी हैं आप?
2: ठीक है, आप बताइए।
1: मैं भी ठीक हूँ। क्या हो रहा है अभी?
2: सोई हूँ। आपके पास कॉल लगने का इंतजार कर रही थी, सोमवार को, फिर बुधवार को, एकदम दिन याद करके रखी हूँ कि हाँ आपसे बात करना है।
1: फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी, बता दें।
2: आहो राजा।
1: ओके, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
2: आपको, सिर्फ आपको।
1: बिल्कुल, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रंजी में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: The phone ring, de bajte hai to kehte hain hello.
4: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो।
6: हेलो मैडम, नमस्कार।
5: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
6: जी, आपको भी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप गाना सुनवाने की। आज पहला दिन है कि आपका प्रोग्राम सुने हैं रेडियो पे।
5: जी
6: हाँ, बहुत अच्छा लगा। लास्ट में आप जो है अदनान सामी का जो कव्वाली एक सुनवाई है।
5: जी जी,
6: भर दो झोली
5: है
6: ना। और वो जो आप टोन में जो आप टोन में बोलती हो ना,
5: हाँ
6: वो बहुत हमको भाता है, इतना अच्छा भाता है कि अब समय हो चुका है, ब्रेक का टाइम खत्म हो चुका है, ये आप बोलती हो ना तो अच्छा लगता है। मैं अपने टाइम से हाजिर हूँ। ये हमको अच्छा लगा सुन के, है ना। हमको बहुत अच्छा लगा है आपको प्रोग्राम जो बना के आप डाली है रेडियो पे, सुना रही है आप।
5: हाँ,
6: बहुत अच्छा लगा है।
5: बहुत बहुत धन्यवाद।
6: हम मन्नान बोल रहे हैं कपरपुरा से।
5: जी,
6: आज कौन सा गाना सुनाइएगा मैडम?
5: बता दें आप कौन सा गाना सुनेंगे।
6: वो गाना सुना दिए, झूठ बोले कौवा का।
5: जी बिल्कुल सुना देंगे। बताएं ये गाना किसको सुनाना चाहते हैं?
6: पहले तो मैडम आपको, है ना, और एक बाबू नाम का है उनको सुनवाना है, और एक बेनजीर है उनको सुनवाना है, बाबू को सुनवाना है।
5: और सब बढ़िया है ना? आप ठीक है ना?
6: हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ बढ़िया है। आपकी दुआ से बहुत कुछ अच्छा है। अप्पल का बारी है, बकरीद का हम लोग का।
5: जी,
6: और उसी का तैयारी चल रहा है।
5: फिर ठीक है,
6: देखा
5: गाना प्ले करते हैं, सुनते रह सकते साथ रेडियो रिमझिम में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
6: ठीक है, थैंक यू।

0: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, कैसी हैं आप?
1: अच्छा है, बताएं कैसे हैं। कुछ
0: मैं भी ठीक हूँ। फिर बताएं क्या हो रहा है? खाना
1: नहीं, आपका इंतजार हो रहा है, सब रिकॉर्डिंग चालू हो गई।
0: हो गया? ओके,
1: जी मैडम जी,
0: और बताएं क्या फरमाइश है आपकी?
1: बंजारा फिल्म का कभी आएगा मेरे बंजारा।
0: ओके, और ये गाना आप किसको डेडिकेट करना चाहती हैं?
1: सबसे पहले आपको जितना रेडियो आप देना है सब दोस्तों के साथ।
0: ओके ओके, ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी मैडम जी, नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello.
4: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो,
6: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
5: जी नमस्कार।
6: नमस्कार
5: जी मैडम जी, क्या हाल चाल है?
6: मेरा बढ़िया, आप अपना बताएं।
5: हम लोग का तो ठीक ही है
6: जी। क्या फरमाइश है आपकी, बताएं।
5: दिल है बेताब मूवी का गाना है
6: जी।
5: क्या तुम्हें पता है ए गुलशन,

0: और सबसे पहले सुनाना चाहता हूँ आपको, जितने रेडियो रेंजी में सभी लोग सुनेंगे
1: जी जी,
0: और हम लोग धनावा से एक साथ मास्टर भी सुनेंगे, और हम लोग जितने रेडियो रोशन तरह में काम करते हैं, केरल का काम हम लोग सभी लोग सुनते हैं। नौशाद भाई है, गिलानी भाई है, समीम हजाम है, शाहिद मुखिया है, लोग सभी लोग सुनेंगे।
1: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस।
1: थैंक यू। कैसी हैं?
0: अच्छे हैं, आप अपना बताएं।
1: हम भी अच्छा, हम सीमान से बोल रहे हैं, मिली।
0: अच्छा जी, तो बताएं फिर क्या हो रहा है?
1: कुछ नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही बैठे हुए हैं।
0: कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: हमको गाना सुनना है उन्हीं है नया मेहमान जुड़े वाले का गाना, नहीं है करीना पांडे का नया मेहमान जुड़े वाले का।
0: जी,
1: वही वाला सुनना है।
0: और ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
1: आप सभी को, जितने लोग रेडियो रिंगिम सुन रहे हैं उन सब।
0: ओके,
1: मैं हर टीम को सुनाना चाहती हूँ।
0: जी, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रिंगिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो।
6: हेलो, नमस्ते मैडम।
5: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
6: हाँ, मैं मैडम हीरा सानी बोल रहा हूँ, संबलपुर ओडिशा से।
5: जी, कैसे हैं आप?
6: ठीक है मैडम, इधर अभी बहुत गर्मी चल रहा है।
5: अच्छा जी, गर्मी उधर है?
6: बहुत गर्मी है, आपके तरफ गोपालगंज में तो गर्मी नहीं होता होगा।
5: गर्मी होता है लेकिन अभी फिलहाल मौसम ठीक है।
6: अच्छा, इधर तो बहुत 45 डिग्री होता है गर्मी।
5: हाँ, इधर भी बढ़ता है लेकिन अभी ठीक है।
6: ठीक है मैडम, तो
5: फिर बताएं गाना कौन सा सुनना है आपको?
6: 2 आंखें 12 हाथ फिल्म का।
5: जी
6: हाँ, लता मंगेशकर का गाना है, तैया झूठों का बड़ा सरताज निकला है।
5: अच्छा, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
6: अरे अपने दोस्तों लोगों को।
5: अच्छा, हाँ हाँ सुन रहे हैं।
6: मेरे दोस्त लोगों को भी सुनाना चाहता हूँ, और ये मेरा दोस्त है आपका गोपालगंज में ही है, अरविंद जायसवाल।
5: जी
6: हाँ, अरविंद जायसवाल, और यही सचिन तिवारी। ठीक है मैडम, और कहिए।
5: और सब बढ़िया, आप अपना बताएं।
6: बस यही चल रहा है, धंधा पानी मंदा है, अभी गर्मी का मौसम है मैडम।
5: जी
6: हाँ, मेरा इलेक्ट्रिक का दुकान है।
5: हाँ।
6: चल रहा है।
5: हाँ।
6: ऐसे इधर बसर चल रहा है।
5: चलेगा, अच्छे से चलेगा।
6: हाँ, और मैडम, हाँ ये कब सुनवाएंगे ये गीत?
5: रिकॉर्डिंग चालू है, थोड़े वक्त के बाद चला देंगे।
6: ठीक है मैडम, ठीक है,
5: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रिमझिम में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
6: धन्यवाद, धन्यवाद।

0: हेलो
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: मैं रमाल गुप्ता बिंदला खास से बोल रहा हूँ।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बड़ा धूप लगल बा, बड़ा घाम भइल बा, छिया पसल बनी जा।
0: अच्छा जी, धूप भइल बा बहुत ज्यादा,
1: बड़ा घाम भइल बा, हवा बहते नीक है, छिया बैठल बनी है। गीत सुने के बा?
0: जी बताए कौन सा गाना सुने?
1: दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ।
0: अच्छा, और ये गाना क्यों के सुना एक बार?
1: गाना सुनवाएंगे प्रोपराइटर हाफिज अंसारी को
0: जी,
1: और साइकिल दुकान संदापुर सतीश जी को।
0: जी जी
1: जी, इन्हीं लोगों को।
0: ओके, फिर गाना प्ले करते नहीं, सुनत रहे इसके साथ। रेडियो में कॉल करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone ding ding bajte hai to kehte hai hello.
5: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो,
7: नमस्कार भारती जी, दिल से धन्यवाद।
6: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
7: आपको दिल से धन्यवाद मैम।
6: जी शुक्रिया,
7: बहुत दिनों से इंतजार था, आप सब सोचला दिए।
6: जी
7: और सब सुनाइए।
6: और सब बढ़िया, आप अपना बताइए।
7: बस हम भी काम पे हैं।
6: जी
7: टाइम हुआ तो रुक गए, रुक के कॉल लगाए तो दूसरा कॉल लगी है ना।
6: जी
7: और सब कैसा है मौसम?
6: मौसम अभी फिलहाल ठीक है।
7: बारिश हुई है?
6: मौसम कैसा है
7: इधर? तो बहुत गर्मी है, बहुत धूप निकल रही है। और नाश्ता पानी हो गया?
6: जी मेरा हो गया, आपका?
7: हमारा तो 9 बजे ड्यूटी है ना, तो नाश्ता करके तो आते हैं।
6: अच्छा,
7: अब चाय के टाइम हुआ, चाय का होगा।
6: ओके फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी
7: आज? सीमा सरगम के सीमा गुप्ता का है सॉन्ग।
6: जी
7: मारही के बांध तो मार देना जान से, नजरिया के बांध से।
6: जी
7: सीमा गुप्ता का है।
6: हाँ हाँ
7: हाँ, तो वही बजा दीजिए।
6: और ये गाना आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं?
7: पूरे सारे लिसनर जितने सुनने वाले हैं सब सुन लेंगे, हम तो पुराना लिसनर है ना।
6: हाँ जी,
7: बहुत दिनों से इंतजार था कि कब भारती जी का थोड़ा शो सुने कैसा है। तो कल सुने हैं तो हाँ, मैं बोला कि हाँ ठीक है ठीक है, चलिए
6: ठीक है फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहे सबके साथ रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
7: हाँ जी।

0: हेलो
1: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: करिश्मा कुमारी।
0: और कहाँ से हैं आप?
1: पीपल नारायण से
0: जी। कैसी हैं आप?
1: बढ़िया है, अपना बताइए।
0: मेरा भी ठीक है। फिर बताएं क्या हो रहा है?
1: कुछ भी नहीं, आपको फर्स्ट लगा रहे।
0: खाना हो गया?
1: हाँ, आपका हो गया
0: जी। फिर बताएं आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: हमको नीलकमल सिंह के बाद में गिफ्ट सुनना है।
0: और कौन सा सॉन्ग?
1: कोई भी बजा दीजिए।
0: आप अपनी पसंद नहीं बताएंगी?
1: व्यवसाय बजा दीजिए।
0: अच्छा, और ये गाना आप किसी को सुनाना चाहती हैं?
1: हाँ, सबसे पहले आपको और जितना सुन रहे हैं लो रेडियो मुझको, आप मेरे गणेश जी सुनेंगे और हम सुनेंगे।
0: ओके, चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रंजीम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू दीदी।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल कहे सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: भाई

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।